मिर्जापुर केंद्र है। शक संवत 1948 के वैसाख माह की 25वीं तिथि तदनुसार शुक्रवार दिनांक 15 मई 2026 इस समय प्रातः के 5:56 हो रहे हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अम्बे

0: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
2: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने

आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में कल ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एयरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र की आधारशिला रखी जाएगी। आगामी राष्ट्रीय पात्रता

0: जिले के पुट्टपर्ती में कई एयरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैमानिकी विकास एजेंसी के विमान एकीकरण और उड़ान परीक्षण केंद्र की आधारशिला रखी जाएगी। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एनडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई, जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सरकार ने अग्रिम प्राधिकरण योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देता है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है, ताकि उनकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। दोबारा बिना शुल्क सोने के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर कोई सीमा नहीं थी। उत्तर प्रदेश में बारिश, आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में 111 लोगों की मौत और 200 लोगों के घायल होने की खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को घटनास्थल का तत्काल जायजा लेने का निर्देश दिया है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। कल शाम धर्मशाला में मुंबई इंडियंस ने एक गेंद शेष रहते 205 रन बनाकर जीत हासिल की। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। गुजरात में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में अजीत नारायण ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के 71 किलोग्राम वर्ग के क्लीन एंड जर्क और समग्र दोनों स्पर्धाओं में अजीत ने पदक हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में अजीत, कोमल कोहर और ज्ञानेश्वरी यादव के बाद पदक जीतने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। कार्यक्रम आराधना में आइए सुनते हैं ये मातृभूमि वंदना। समूह स्वर में रचना राम प्यारे रसिक की है।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना में लीजिए अब सुनिए सुरेश वाटकर और साथियों के स्वर में ये राम भजन।

अभी आप सुरेश वाडकर और साथियों के स्वर में ये राम भजन सुन रहे थे। कार्यक्रम आराधना में अब प्रस्तुत है लक्ष्मीबाई राठौर के स्वर में ये भक्ति गीत।

लक्ष्मीबाई राठौर के स्वर में अभी आप ये भजन सुन रहे थे। लीजिए आप सुनिए सुधा मल्होत्रा के स्वर में ये भक्ति गीत।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अंबिकापुर से। लीजिए आप सुनिए शब्द गुलाब सिंह और दिलबाग सिंह से।

0: मुबारक बेगम और साथियों द्वारा प्रस्तुत इस रचना के साथ भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विचार बिंदु। कार्यक्रम विचार बिंदु में शीर्षक है संस्कार, आलेख संकलन और वाचन स्वर पद्मनाभ शर्मा का है।
1: संस्कार मनुष्य के व्यक्तित्व का वह सूक्ष्म किंतु अत्यंत प्रभावी आयाम है जो उसके विचार, व्यवहार और निर्णयों को दिशा देता है। ये केवल बाहरी आचरण तक सीमित नहीं होता, बल्कि भीतर की चेतना में बसे उन मूल्यों का समुच्चय है जो सही गलत का बोध कराते हैं। परिवार, समाज, शिक्षा और अनुभव, इन सभी के संयुक्त प्रभाव से संस्कारों का निर्माण होता है। यही कारण है कि एक ही परिस्थिति में अलग अलग व्यक्तियों का आचरण भिन्न भिन्न दिखाई देता है, क्योंकि उनके संस्कार अलग होते हैं। जन्मना जायते शूद्रः, संस्काराद द्विज उच्यते, विद्या याति विप्रत्वम त्रिभिः श्रोत्रिय उच्यते। अर्थात जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र के समान होता है, यानी अशिक्षित या अविकसित होता है। संस्कारों के माध्यम से उसका दूसरा जन्म होता है और वह द्विज कहलाता है। विद्या ग्रहण करने से वह विप्र ज्ञानी बनता है। जब जन्म, संस्कार और विद्या तीनों का संगम होता है, तब वह श्रोत्रिय यानी वेदों का ज्ञाता और परम विद्वान कहलाता है। संस्कारों का महत्व इस तथ्य से समझा जा सकता है कि ये व्यक्ति के चरित्र की नींव होते हैं। शिक्षा ज्ञान दे सकती है, परंतु संस्कार उस ज्ञान को सही दिशा में उपयोग करना सिखाते हैं। यदि ज्ञान बिना संस्कार के हो तो वह विनाशकारी भी बन सकता है। आज के आधुनिक और तकनीकी युग में जहाँ सूचनाओं की प्रचुरता है, वहाँ संस्कारों की भूमिका और भी बढ़ जाती है, क्योंकि वे व्यक्ति को विवेकपूर्ण चयन करने की क्षमता प्रदान करते हैं। संस्कारों का पहला और प्रमुख स्रोत परिवार होता है। बाल्यावस्था में जो बातें, व्यवहार और मूल्य घर में

0: रखे और सीखे जाते हैं वे जीवन भर व्यक्ति के साथ रहते हैं। माता पिता और बड़ों का आचरण बच्चों के लिए प्रत्यक्ष शिक्षा का कार्य करता है। उदाहरण के लिए, यदि घर में सत्य बोलने, बड़ों का सम्मान करने और दूसरों की सहायता करने की आदत है तो बच्चे भी स्वाभाविक रूप से इन गुणों को अपनाते हैं। महात्मा गांधी के जीवन का एक प्रसिद्ध प्रसंग है। बाल्यावस्था में उन्होंने एक छोटी सी चोरी की थी और बाद में उन्हें इसका गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने अपने पिता को एक पत्र लिखकर अपनी गलती स्वीकार की और क्षमा मांगी। उनके पिता ने उन्हें दंड देने के बजाय प्रेम पूर्वक क्षमा कर दिया। इस घटना ने गांधी जी के मन पर गहरा प्रभाव डाला और सत्य के प्रति उनकी निष्ठा जीवन भर बनी रही। ये प्रसंग दर्शाता है कि सही समय पर दिया गया संस्कार और संवेदनशील प्रतिक्रिया व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल सकती है। संस्कार केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं बल्कि सामाजिक स्तर पर भी अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। एक संस्कारित व्यक्ति समाज में शांति, सहयोग और सद्भाव का वातावरण बनाता है। इसके विपरीत, संस्कारहीनता सामाजिक विघटन और अराजकता को जन्म देती है। आज जब भौतिकता और प्रतिस्पर्धा का दबाव बढ़ रहा है, तब नैतिक मूल्यों का ह्रास भी देखने को मिलता है। ऐसे में संस्कारों की आवश्यकता और भी अधिक प्रासंगिक हो जाती है। एक बार एक संत नदी किनारे बैठे थे। उन्होंने देखा कि एक बिच्छू बार बार पानी में गिर रहा है और बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है। संत ने उसे हाथ में उठाकर बाहर निकालने की कोशिश की, परंतु बिच्छू ने उन्हें डंक मार दिया। फिर भी संत ने उसे बचाने का प्रयास जारी रखा। किसी ने उनसे पूछा कि जब वह बार बार डंक मार रहा है तो आप उसे क्यों बचा रहे हैं? संत ने उत्तर दिया, डंक मारना उसका स्वभाव है और बचाना मेरा संस्कार। ये प्रसंग स्पष्ट करता है कि सच्चे संस्कार परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते, बल्कि वे व्यक्तियों के स्वभाव का अभिन्न हिस्सा बन जाते हैं। संस्कारों का विकास केवल उपदेशों से नहीं बल्कि व्यावहारिक जीवन से होता है। विद्यालय और समाज भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षक, मित्र और परिवेश, ये सभी व्यक्तियों के संस्कारों को आकार देते हैं। इसीलिए आवश्यक है कि शिक्षा केवल सूचना देने तक सीमित न रहे, बल्कि उसमें नैतिक शिक्षा और जीवन मूल्यों का समावेश भी हो। संस्कार वह अमूल्य धरोहर है जो व्यक्तियों को केवल सफल ही नहीं बल्कि सार्थक और आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। ये जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि संस्कारों को केवल परंपरा के रूप में न देखा जाए, बल्कि उन्हें जीवन का आधार बनाया जाए, ताकि एक सशक्त, नैतिक और संवेदनशील समाज का निर्माण हो सके।
1: अभी आप कार्यक्रम विचार बिंदु में संस्कार विषय पर विचार सुन रहे थे। आलेख संकलन और वाचन स्वर पद्मनाभ शर्मा का था। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का यह अंबिकापुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस का गायन। मुख्य स्वर महेंद्र कपूर का है। संगीत संयोजक सतीश भाटिया हैं।

कपटी मुनि एक तनु ने राजा प्रताप भानु को ब्राह्मणों को प्रसन्न करने का ये उपाय बताया कि वो एक वर्ष तक नित्य प्रति 100,000 ब्राह्मणों को उनके कुटुंब सहित भोजन कराए। उसी समय वहां कालकेतु नामक राक्षस आया। वो तपस्वी राजा अर्थात कपटी मुनि का गहरा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र तथा 10 भाई थे जो अजेय तथा देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों तथा देवताओं को निर्भय करने के लिए राजा प्रताप भानु ने उन सब की हत्या कर दी थी और इसी कारण बदला लेने के लिए कालकेतु ने कपटी मुनि से मित्रता करके प्रताप भानु का सर्वनाश करने का कुचक्र रचा।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का गायन, मुख्य स्वर था महेंद्र कपूर का, संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बात। कार्यक्रम खेती की बात में आज सामयिक सुझाव का विषय है नाशपाती की खेती।
1: में शीतोष्ण फल में सेब के बाद नाशपाती का दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है। बृहद जलवायु व मृदा अनुकूलता के कारण यह शीतोष्ण के अलावा समशीतोष्ण जलवायु में भी सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। नाशपाती की खेती छत्तीसगढ़ के उत्तरी पहाड़ क्षेत्र जैसे बलरामपुर, जसपुर, सरगुजा के पहाड़ी क्षेत्रों में भी वर्षों से हो रही है। बलरामपुर के शंकरगढ़ में कुसमी विकासखंड में इसकी खेती की प्रबल संभावनाएँ हैं। बलरामपुर के चांगरो गांव में 25 वर्षों से नाशपाती की खेती हो रही है। कुसमी के नटवरपुर उद्यान नर्सरी में 10 एकड़ में नाशपाती का बगीचा विकसित किया जा चुका है। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के कुसमी एवं शंकरगढ़ विकासखंड की जलवायु नाशपाती की समशीतोष्ण प्रजातियों के लिए काफ़ी उपयुक्त है। जिले के डीपाडी, चांगरो, अयारी, जोकापाट, लहसुनपाट, सामरीपाट, कुसमी, जिगनिया आदि क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता युक्त नाशपाती का उत्पादन किया जा सकता है। विगत कई वर्षों से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय व कृषि विज्ञान केंद्र

0: बलरामपुर द्वारा प्रशिक्षण देकर किसानों को समय पर नाशपाती के पौधों को खाद उर्वरक प्रबंधन एवं अन्य तकनीकी जानकारी देकर नाशपाती की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। नाशपाती की प्रमुख प्रजातियों में मध्यम निम्न पहाड़ी व घाटी क्षेत्रों के लिए पत्थरनख, कैफर, चाइना नाशपाती, गोला लिकोंटे प्रजाति अनुशंसित की गई हैं। नाशपाती में साकुर डाली के रूप में सामान्यतः कैथ व सियरा के पौधे उपयोग में लाए जाते हैं। पंजाब में जंगली नाशपाती के जड़ सकर भी साकुर डाली के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। उत्तर भारत के मैदानी भागों में पत्थरनख प्रजाति कलम भी पौधे परिवर्तन साकुर डाली के रूप में प्रयोग में लाए जा रहे हैं। अच्छी फसल वाले नाशपाती वृक्ष के नए वृद्धि वाले प्रदोह से साकुर डाली तैयार किया जाता है। इन प्ररोहों को वृक्ष से अलग करके इसे सौ हार्मोन से उपचारित किया जाता है और 24 घंटे के लिए नम बालू में रखकर इसे उपचारित किया जाता है। इसके पश्चात इन्हें नर्सरी में रोप दिया जाता है। इसके बाद में बडिंग या ग्राफ्टिंग किया जाता है। नाशपाती के पौधों में सामान्यतः अप्रैल सितंबर के मध्य टी बडिंग या दिसंबर जनवरी में जिह्वा ग्राफ्टिंग किया जाता है। नाशपाती की जलवायु अनुकूलता बृहद है। इसकी खेती 26 डिग्री से 45 डिग्री तापमान पर किया जा सकता है। नाशपाती के अधिकांश प्रजातियों को 1200 घंटे के लगभग 7 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान उसकी चिलिंग आवश्यकता पूरी करने के लिए आवश्यक होती है, जबकि कुछ प्रजातियां जैसे पत्थरनख को मात्र 150 घंटे की चिलिंग तापमान की आवश्यकता होती है। यह प्रजाति छत्तीसगढ़ में अपनाने के लिए काफ़ी उत्तम है। इसके अलावा मध्यम चिलिंग आवश्यकता वाली कुछ अन्य किस्में हैं, जिसमें जी कोंटे, कैफर, प्लाइन एप्पल, हुड, गोला प्रजाति भी यहाँ ली जा सकती है। ये प्रजातियाँ ग्रीष्मकाल में उच्च ताप व गर्म हवा को भी सहन कर सकती हैं। नाशपाती का उत्पादन गहरी उचित जल निकासी वाली उपजाऊ मध्यम संरचना वाली तुलनात्मक रूप से अधिक क्ले वाली मृदाओं में अच्छा होता है। यह गीली जमीन के लिए तुलनात्मक रूप से सहनशील है, जबकि यह सूखे की स्थिति को सहन नहीं कर सकती। यह भारी व अधिक जल भराव एवं कम मृदाओं में भी अच्छी तरह हो सकती है। पौधे लगाने के तुरंत बाद पौधों के चारों ओर थाला बना देना चाहिए और पानी देना चाहिए। पौधे के तने के पास मिट्टी ऊंची रखनी चाहिए ताकि तना पानी के संपर्क में ना आ सके। खाद उर्वरक की बात करें तो 10 वर्ष के पौधे में 60 से 100 किलोग्राम गोबर खाद, 700 ग्राम नाइट्रोजन, 350 ग्राम फास्फोरस, 700 ग्राम पोटास प्रति पौधा डालना चाहिए। गोबर खाद, फास्फोरस और पोटास दिसंबर के पहले डालना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा फल लगने के तुरंत बाद देना चाहिए। जिंक और आयरन की कमी होने पर इसकी निर्धारित मात्रा जिंक सल्फेट अप्रैल माह में देना चाहिए। इस समय पौधे लगाने का समय है। किसान भाई इस समय नाशपाती के पौधे लगा सकते हैं ताकि इसका अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे।
1: कार्यक्रम खेती की बात में अभी आप सुन रहे थे नाशपाती की खेती के बारे में जानकारी। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। आइए जानते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा कार्यक्रम विवरण में।

सुबह 7 बजे गूंजी जंगल में आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी और सरगुजिया लोकगीत, सुगम संगीत आप सुन सकेंगे सुबह 7:15 पर। जनसंपर्क से प्राप्त समाचार और पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा लेकर आएंगे सुबह 7:30 पर। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम इनसे मिलिए। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। बातों और गीतों का

0: कार्यक्रम गुंजन पेश करेंगे सुबह 9 बजे। सुबह 11:05 पर आप सुनेंगे श्रोताओं के समीक्षात्मक पत्र और ईमेल पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी पत्री। दिन में 12 बजे आप सुनेंगे NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। एक ही शीर्षक पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम चयन लेकर हाजिर होंगे दिन में 12:30 पर। ग्रामीण बहनों का कार्यक्रम घर गोसाई आप सुनेंगे दिन में 1:10 पर। इसमें आप सुनेंगे सामयिक चर्चा, कथा कहने और लोकगीत। ईमेल फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम ईमेल की गूंज आप सुनेंगे दिन में 1:40 पर और रात्रि 9:30 पर। गैर फिल्मी गीत और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा पेश करेंगे दिन में 2:30 पर। हमारी शाम की सभा की शुरुआत होगी शाम 5 बजे। आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी पेश करेंगे शाम 5:30 पर। इसमें आप सुनेंगे क्रम हेलो फ्रेंड्स। शाम 6:20 पर आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम गोधुली। इसमें आप सरगुजिया और छत्तीसगढ़ी गीत सुनेंगे। कलाकार होंगे राम आधार और साथी और ममता सिंह और साथी। सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा पेश करेंगे शाम 7:05 पर। 7:20 पर आप सुनेंगे ग्रामीण भाई बहनों का कार्यक्रम चौपाल। इसमें आप सुनेंगे सामयिक चर्चा, क्रम आजकल, लोक संगीत, श्रेयन समृद्ध अन्न पर चर्चा। साथ ही जानेंगे मंडी भाव, मौसम की जानकारी और मौसम आधारित कृषि परामर्श। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश और रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम राग प्रधान और रात्रि 10:30 पर फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। कुछ ही पलों में संस्कृत समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले करते हैं।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचक डॉक्टर गणेश हेगड़े। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अद्यारभ्य UAE, नेदरलैंड, स्वीडन, नार्वे, इटली इति देशानां 6-दिवसीय यात्रायां भविष्यति। पञ्चदेशयात्रायाः प्रथमपदे अद्य श्रीमोदी UAE देशं गमिष्यति, यत्र सः राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान इत्यनेन सह मिलिष्यति। द्विपक्षीय विषयेषु विशेषतः ऊर्जा सहकार्ये तथैव परस्पर हितस्य क्षेत्रीय अन्ताराष्ट्रिय विषयेषु च द्वौ नेतारौ विचाराणाम् आदान प्रदानं करिष्यतः। मेलनमिदं ऊर्जा सुरक्षा विषये केन्द्रीकृतं भविष्यति इत्यपेक्षा वर्तते। प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना प्रोक्तं यत् अस्मिन् वर्षे भारतस्य अध्यक्षतायां ब्रिक्स इति बहुदेशीय संघः बहुपक्षीयतां सुदृढं कर्तुं, सतत विकासं प्रवर्धयितुं, आर्थिक शक्तिं प्रवर्धयितुं, अधिक समावेशीय विश्वव्यवस्थायाः निर्माणार्थं च मिलित्वा कार्यं करिष्यति। ह्यः नवदिल्ल्यां ब्रिक्स देशानां विदेशमन्त्रिभिः प्रतिनिधिमण्डलप्रमुखैः सह संवादं कुर्वन् श्रीमोदी अवदत् यत् उदयमानानां अर्थव्यवस्थानां मध्ये सहकार्यं प्रवर्तयितुं वैश्विक दक्षिणस्य आकांक्षाणां विकासाय च ब्रिक्स संघः महत्वपूर्ण मञ्चरूपेण उद्भूतः वर्तते। केन्द्र सर्वकारेण उक्तं यत् देशे पर्याप्तं असंस्कृत तैलस्य LPG इति द्रवीकृत अनिल इंधनस्य प्राकृतिक अनिल इंधनस्य च उपलब्धतां सुनिश्चेतुं प्रभावी पदानि गृहीतानि सन्ति। ह्यः नवदिल्ल्यां अन्तर्मन्त्रालयस्य वृत्तान्तस्य समये पेट्रोलियम प्राकृतिक अनिल मन्त्रालयस्य संयुक्त सचिव पदासीना सुजाता शर्मा अवदत् यत् देशे सर्वत्र गृहोपयोगी

0: एलपीजी इति द्रवीकृत अनिल इंधनस्य आपूर्तिः सुचारुरूपेण प्रचलति। नीट इति आगामी राष्ट्रीय पात्रता सहित प्रवेश परीक्षायाः सज्जतायाः समीक्षां कर्तुं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधानस्य निवासस्थाने उच्चस्तरीय सभा आयोजिता। सभायां नीट परीक्षायाः सुचारुतया कुशलतया च संचालनस्य विविध पक्षेषु विस्तृत विमर्शाः कृताः। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह अद्य आंध्र प्रदेश से श्री सत्यसाई मंडलस्य पुट्टपर्ति इत्यत्र अनेक वैमानिक रक्षा परियोजनानां आधारशिला स्थापन कार्यक्रमे भागं ग्रहीष्यति। रक्षा मंत्रालयेन उक्तं यत् विमान विकास संस्थायाः विमान समायोजनस्य उड्डयन परीक्षण केन्द्रस्य च शिलान्यासः भविष्यति। विमानस्य एकीकरणस्य परीक्षणस्य प्रमाणीकरणस्य च एषा परियोजना उन्नत मध्यम युद्ध विमान कार्यस्य विकासं त्वरयिष्यति। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान अद्य महाराष्ट्रस्य सतारा इत्यत्र प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनायाः लाभार्थी सम्मेलने एवं महाराष्ट्र आवास अभियान राज्यस्तरीय पुरस्कार वितरण समारोहे च भागं ग्रहीष्यति। उत्तर प्रदेशे विगत 37 होरासु झंझावात चक्रवात विद्युत्पातादिभिस्सह अतिवृष्टिकारणात् न्यूनातिन्यूनम् 11,100 जनाः मृताः 200+ जनाः वृणिताः सन्ति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः जिलाधिकारीं तथा संबंधित अधिकारिणः शीघ्रतया घटनास्थलं गत्वा सर्वेक्षणं कर्तुं निर्देशं दत्तवान्। उधमपुरा मंडलस्य शिवपार्वती तीर्थे ऐतिहासिकः त्रिदिवसीया शिवपार्वती मेला इति प्रसिद्धा वार्षिक मौंगरी मेला अद्य आरभ्यते। धार्मिकोत्साहस्य उत्सवस्य च भावनायाः मध्ये उधमपुरा मंडल प्रशासनेन मौंगरी इत्यत्र सर दब्बर क्षेत्रे भव्य ऐतिहासिक मेलायाः सज्जता कृता वर्तते। केंद्र सर्वकारेण सुवर्णस्य आयातस्य कृते 100 किलोग्राम परिमितस्य सीमायाः निर्धारणं कृतमस्ति। अग्रिम प्राधिकरण योजनायाः अंतर्गतं आभूषण निर्यातकाः शून्य शुल्केन असंस्कृत वस्तूनां अथवा निवेश सामग्रीणां आयातं कर्तुं शक्नुवन्ति। आईपीएल इति 20-20 क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ मुंबई इंडियंस दलेन पंजाब किंग्स दलं 6 पराजितम्। अद्य सायं 7:30 लखनऊ सुपर जायंट्स दलं लखनऊ नगरे चेन्नई सुपर किंग्स दलं सम्मुखी करिष्यति इति वार्ताः।
1: संस्कृत समाचार बुलेटिन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 7 हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम गूंजे जंगल। कार्यक्रम गूंजे जंगल में लीजिए सुनिए छत्तीसगढ़ी लोकगीत गुलाब सिंह पैकरा और साथियों से।

अभी आप भोजपुरी लोकगीत सुन रहे थे रामलोचन यादव और साथियों से। कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनिए सरगुजिया लोकगीत एतवारदास और साथियों से।

अभी आप ये बायर गीत सुन रहे थे एतवार दास और साथियों से, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम गूंजे जंगल अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:15 हुए हैं। अब पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत।

का दिल राजस्थानी का कलाम सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाज में। लीजिए अब सुनिए नसीम अजमेरी का कलाम मिताली सिंह की आवाज में, ये गजल।

हर मुलाकात पे महसूस यही होता है, मुझसे कुछ तेरी नज़र पूछ रही हो, जैसे राह चलते हुए अक्सर ही गुमा होता है, ये नज़र छुप के मुझे देख रही हो जैसे।

0: मिताली सिंह के गाए इस गजल के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।
0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा के आज के अंक के साथ मैं हूं रैना। सबसे पहले सूचना जंगली हाथियों के संदर्भ में। जंगली हाथियों की गतिविधियों और उनके संभावित विचरण क्षेत्रों की सटीक जानकारी देने वाला विशेष कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ प्रतिदिन शाम 5 बजे आपके अपने 4 आकाशवाणी केंद्रों अंबिकापुर, रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ से प्रसारित हो रहा है। ये कार्यक्रम एफएम रेडियो चैनलों पर भी उपलब्ध है, जिसे आप आसानी से रेडियो सेट, मोबाइल फोन या गाड़ियों में चलते फिरते भी सुन सकते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर भी इसकी पहुंच है, ताकि हर जानकारी हो आपके हाथ में। इस कार्यक्रम से मिली जानकारी के कारण हाथी प्रभावित क्षेत्रों के लोग सुरक्षित रास्ते अपनाकर अपने घर सुरक्षित लौट रहे हैं। अब जंगल या गांव किसी भी हिस्से में निकलने से पहले हाथियों की सही स्थिति जानने का भरोसेमंद माध्यम है कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। सुनते रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। हमर हाथी हमर गोठ, जहां हर सूचना है आपकी सुरक्षा के लिए। और इस सूचना के बाद आइए सुनते हैं आशा भोसले की आवाज में फिल्म हावड़ा ब्रिज का गीत। गीतकार हैं कमर जलालाबादी और संगीत ओपी नैयर का है।

सूचना अब बलरामपुर जिले से आम जन से प्राप्त विभिन्न विभागीय शिकायतों के त्वरित गुणवत्तापूर्ण और समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित किए जाने के उद्देश्य से सीएम हेल्पलाइन योजना अंतर्गत शिकायत निवारण हेतु नामांकित जिला और विकासखंड स्तरीय अधिकारियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन 15 मई 2026 प्रातः 11:30 से 2 बजे तक संयुक्त जिला कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित है। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। प्रशिक्षण में सीएम हेल्पलाइन अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के प्रभावी निराकरण, समय सीमा का पालन, शिकायतों की मॉनिटरिंग और गुणवत्तापूर्ण समाधान से संबंधित आवश्यक जानकारी प्रदान की जाएगी। कलेक्टर द्वारा जिले में सीएम हेल्पलाइन योजना के क्रियान्वयन के लिए अपर कलेक्टर

को जिला स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। और इस सूचना के बाद आइए सुनते हैं फिल्म फागुन का गीत, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाज में। शब्द रचना कमर जलालाबादी की है, संगीत ओपी नैयर का है।

0: रेखा जल्दी रेडियो लगा, मंगलवार है, घर आंगन मेल में मेरी चिट्ठी आने वाली है।
1: अरे पर दीदी, मुझे तो फोन पर बात करनी थी, क्या आज फोन नहीं लगेगा?
2: अरे नहीं रेखा, फोन के लिए शनिवार सुबह 10:30 पर नंबर मिलाना है। फोन इन का प्रसारण तो रविवार दोपहर 1:10 पर ही होगा। आज मंगलवार को सिर्फ पत्र और ईमेल वाला मेल ही आएगा।
0: पर आरती, रेडियो ठीक से सेट तो कर दे।
2: रेडियो एकदम सही सेट है, मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर।
1: अच्छा, और फोन नंबर क्या है?
2: नंबर है 231-917 और 231-918। कोड लगाओ 07774। और पत्रों के लिए ईमेल याद है ना? gharangan@gmail.com।
3: समझ गए, मंगलवार को मेल और रविवार को फोन।
2: आकाशवाणी अंबिकापुर, घर आंगन। मंगलवार घर आंगन मेल, रविवार फोन इन। बात करें, गीत सुनें

0: सुनिए मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर।
1: घर आंगन आपकी आवाज आपकी पहचान।
2: अब समाचार मनेंद्रगढ़ चिरमिरी और भरतपुर जिले से। त्रिस्तरीय पंचायत उपनिर्वाचन मई जून 2026 मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में निर्वाचन तैयारियां तेज। रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन मई जून 2026 की सफल निष्पक्ष और सुव्यवस्थित संचालन हेतु प्रशासनिक तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन संबंधी समस्त कृतियों के निर्वहन के लिए संबंधित जनपद पंचायत के क्षेत्रों में रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर्स की नियुक्ति कर दी गई है। और इस सूचना के बाद आइए सुनते हैं फिल्म बैजू बावरा का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की युगल स्वरों में। गीत के बोल लिखे हैं शकील बदायूनी ने, संगीत नौशाद अली का है।

कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अंबिकापुर से। और अब सूचना, मनिंद्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी जिले से कलेक्टर ने चिरमिरी और खड़गवा क्षेत्र का किया व्यापक दौरा। विकास कार्यों, जल संरक्षण, जन सुविधाओं की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। कलेक्टर ने विगत दिवस चिरमिरी और खड़गवा के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्थलों, संस्थानों और ग्राम पंचायतों का व्यापक दौरा कर विकास कार्यों, आधारभूत सुविधाओं, जन सुविधाओं की व्यवस्थाओं का गहन निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। दौरे की शुरुआत कलेक्टर द्वारा चिरमिरी स्थित मंगल भवन के निरीक्षण से हुई। यहां उन्होंने भवन में आयोजित होने वाले सामाजिक, सांस्कृतिक और सार्वजनिक आयोजनों की जानकारी लेते हुए उपलब्ध व्यवस्थाओं की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान साउंड सिस्टम की स्थिति पर विशेष ध्यान देते हुए उसे शीघ्र दुरुस्त कराने के निर्देश दिए गए। और इस सूचना के बाद सुनते हैं फिल्म दिल ने फिर याद किया का गीत मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में। गीतकार हैं जी एस रावल और संगीत सोनिक ओमी का है।

अब सूचना अंबिकापुर से। राज्य शासन के निर्देशानुसार संचालित सुशासन त्यौहार 2026 के तहत नगरपालिक निगम अंबिकापुर क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न वार्डों के क्लस्टर अनुसार अलग अलग स्थलों पर जन समस्या निवारण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में नागरिकों के मांग और शिकायत संबंधी आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं और यथासंभव समस्याओं का मौके पर ही निराकरण भी किया जा रहा है। इसी क्रम में आज सामुदायिक भवन मुक्तिपारा में आयोजित जन समस्या निवारण शिविर का कलेक्टर ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने शिविर में पहुंचे आम नागरिकों से चर्चा कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली और संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्राप्त आवेदनों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निराकरण के निर्देश दिए। नगर निगम क्षेत्र में अब तक आयोजित कुल 570 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 455 मांग और 115 शिकायत संबंधी आवेदन शामिल हैं। पूर्व में आयोजित शिविरों में 12 मांग और 5 शिकायतों का निराकरण शिविर स्थल पर निराकरण किया जा चुका है और शेष आवेदनों के निराकरण की कार्यवाही संबंधित विभागों द्वारा की जा रही है। और अब इन बातों के बाद आइए सुनते हैं शमशाद बेगम और आशा भोसले की आवाज़ों में फिल्म नया दौर का गीत। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीत ओपी नैयर का है।

0: आशा भोसले और शमशाद बेगम के गाए इस गीत के साथ कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा का आज का अंक यहीं तक।
1: जनसंपर्क से प्राप्त सूचना
2: और पुराने फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम
3: नमस्कार सरगुजा।
4: नमस्कार सरगुजा।
0: अभी आप सुन रहे थे स्थानीय समाचार और पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा। मीडियम वेव पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार प्रभात हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक साझेदारी मजबूत होने की उम्मीद है।
6: इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब सिर्फ क्रूड ऑयल तक सीमित नहीं रही। यूएई अभी भी इंडिया का एक महत्वपूर्ण क्रूड ऑयल आपूर्ति करता है, लेकिन ये संबंध अब नेचुरल गैस तक भी विकसित हो चुका है। इस वर्ष के आरंभ में हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अबुधाबी नेशनल ऑयल कंपनी के साथ एक 10 वर्षीय समझौता किया, जिसके अंतर्गत 2028 से प्रतिवर्ष 5 लाख टन एलएनजी की आपूर्ति होगी, जिससे इंडिया को अस्थिर बाजार मूल्यों से कुछ राहत मिलने की संभावना है। रिन्यूएबल एनर्जी और सिविल न्यूक्लियर क्षेत्र में भी सहयोग तेजी से बढ़ रहा है। यूएई के सॉवरेन वेल्थ फंड्स भारत के सोलर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्टिवली निवेश कर रहे हैं। साथ ही भारत का शांति एक्ट न्यूक्लियर सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए खोल रहा है। क्रूड ऑयल से एलएनजी तक, परंपरागत ऊर्जा से स्वच्छ ऊर्जा, इंडिया और यूएई की ऊर्जा सुरक्षा साझेदारी अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीला

0: अकेलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों से बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि ब्रिक्स विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि हाल के संघर्षों ने संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया है।
1: हम ऐसे समय में मिल रहे हैं जब दुनिया तेजी से बदल रही है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव, संघर्ष, आर्थिक अनिश्चितता और व्यापार, तकनीक तथा जलवायु से जुड़ी चुनौतियां वैश्विक स्थिति को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र

0: कर रही हैं। ऐसे समय में ब्रिक्स से सकारात्मक और स्थिर भूमिका निभाने की उम्मीद बढ़ी है। आज कई देश ऊर्जा, भोजन, उर्वरक, स्वास्थ्य सुरक्षा और वित्तीय सहायता जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ब्रिक्स उन्हें इन समस्याओं से बेहतर तरीके से निपटने में सहायता कर सकता है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्ती में कई एरोस्पेस और रक्षा परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्री सिंह उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम सुविधा की भी आधारशिला रखेंगे। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 106.68 रुपए और डीजल 93.14 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। कोलकाता में पेट्रोल 108.74 रुपए और डीजल 95.13 रुपए प्रति लीटर पर उपलब्ध होगा। चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 103.77 रुपए और डीजल का मूल्य 95.35 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। एक रिपोर्ट।
2: ये योजना आभूषण निर्यातकों को शून्य शुल्क पर कच्चे माल का आयात करने की अनुमति देती है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक सार्वजनिक सूचना में कहा है कि इस योजना के अंतर्गत निर्यातक एक बार में अधिकतम 100 किलोग्राम सोना ही बिना किसी शुल्क के मंगा सकते हैं। महानिदेशालय ने पहली बार आवेदन करने वालों के लिए विनिर्माण संयंत्रों का भौतिक निरीक्षण अनिवार्य कर दिया है ताकि उसकी परिचालन स्थिति और क्षमता का पता लगाया जा सके। इसमें यह भी कहा गया है कि दोबारा बिना शुल्क के आयात के लिए कंपनी को अपने पिछले टारगेट का कम से कम 50% निर्यात पूरा करना होगा। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप और धनशोधन मामले में कोलकाता पुलिस के उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया है। कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में कल शांतनु से 10 घंटे से अधिक की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। शांतनु सिन्हा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय ने कालीघाट पुलिस स्टेशन के पूर्व प्रभारी शांतनु को सोना पप्पू उर्फ विश्वजीत पोद्दार द्वारा चलाए जा रहे कथित आपराधिक गिरोह से जुड़े धनशोधन मामले में कई बार पूछताछ के लिए तलब किया था। सूत्रों के अनुसार ईडी को शांतनु बिस्वास से जुड़े कुछ संदिग्ध वित्तीय लेनदेन मिले हैं, जिनमें सोना पप्पू और उनके करीबी सहयोगी भी शामिल हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अनिल धीरूभाई अंबानी एडीए समूह की कंपनियों में से एक रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के विरुद्ध दर्ज मामले में मुंबई, गुरुग्राम और बेंगलुरु स्थित 7 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी कंपनी के तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और निदेशकों के आवासों पर की गई।

0: है जो वर्ष 2015 से 2017 के दौरान कंपनी में कार्यरत थे। सीबीआई ने बताया कि पिछले कुछ महीनों में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस समूह के विरुद्ध विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और LIC द्वारा हजारों करोड़ रुपए के कथित धोखाधड़ी के 7 मामले दर्ज किए गए हैं। आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल शाम शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें नीट परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से संचालित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। केरलम में सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। सोमवार को नए UDF मंत्रालय का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इस बीच नए मंत्रालय के सदस्यों को लेकर चर्चा जारी है। ब्यूरो हमारे संवाददाता से।
1: VD सतीशन सोमवार को केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। UDF सूत्रों ने तिरुवनंतपुरम में बताया कि मुख्यमंत्री के साथ पूरी मंत्री परिषद भी शपथ लेगी। वहीं नए मंत्रियों और उनके विभागों को लेकर UDF के घटक दलों के बीच गहन चर्चा जारी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के नाम पर फैसला 4 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद तिरुवनंतपुरम और नई दिल्ली में 10 दिन तक चली लगातार बैठकों और विचार विमर्श के बाद लिया गया। कांग्रेस और UDF के अन्य सहयोगी दल कल तक नई मंत्री परिषद को रूप देने की कोशिश में जुटे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी S. पुल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केरलम के शबरीमला मंदिर में कल शाम से मासिक पूजा एडवम शुरू हो गई है। मंदिर में दर्शन सुबह 5 बजे से किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा उपलब्ध है। उधमपुर जिले के शिव पार्वती मंदिर में आयोजित होने वाला ऐतिहासिक 3 दिवसीय वार्षिक मोंगरी मेला आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसे शिव पार्वती मेले के नाम से भी जाना जाता है।
2: मेले में मोंगरी, पंचैरी, उधमपुर और जम्मू कश्मीर के अन्य क्षेत्रों तथा बाहर से भी भारी संख्या में लोग सरदब्बड़ आते हैं। वे यहाँ कुदरती गुफाओं में विराजमान भगवान शिव, देवी पार्वती और अन्य देवी देवताओं को नमन करते हैं। इन गुफाओं में प्राकृतिक रूप से बना 9.5 फीट का शिवलिंग है। युवा सेवा और खेल विभाग के सहयोग से कबड्डी, रस्साकशी, पत्थर उठाना और अन्य मनोरंजक गतिविधियों का भी आयोजन किया जाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए जम्मू से मैं N. गुलशन रैन।
0: महाराष्ट्र के सतारा में आज प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों और महाआवास अभियान के राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान लाभार्थियों के लिए निर्मित 5 लाख घरों का आवंटन किया जाएगा। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह के हिस्से के रूप में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर स्थित आकाशवाणी केंद्र द्वारा एक वॉकथन का आयोजन किया गया। ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया जा रहा है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर कल रात नामची जिला पहुंचे। आज वे प्रस्तावित नामची पर्यटन सर्किट PM डिवाइन के तहत भालिंडुगा में स्काईवॉक परियोजना और गंगटोक के आर्किडियम जैसी कई पर्यटन स्थलों और विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरलम, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने केरलम में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। राज्य के तटवर्ती इलाकों में आज 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। खेलों में भारत की वुशु खिलाड़ी अपर्णा दहिया ने कल मकाऊ में आयोजित 11वें सांडा विश्व कप में महिलाओं के 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अपर्णा ने फाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन वियतनाम की थी फुआंग गांगू को हराया। प्रतिस्पर्धी वुशु को ताउलू और सांडा में 2 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे से चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
3: फरद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सवाल उठाए जाने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला लिखता है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति समिति में मंत्री क्यों, तटस्थ हो तीसरा सदस्य। जनसत्ता के शब्द हैं ये बहुमत की तानाशाही, चयन समिति में निष्पक्ष व्यक्ति क्यों नहीं। निर्वाचन आयोग ने

0: 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम घोषित किया। अब दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब में भी SIR, दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है। दिल्ली सरकार ने ईंधन बचाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए। सरकारी दफ्तरों का समय बदला, 2 दिन घर से काम, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की खबर है। नव भारत टाइम्स ने CUET UG में सुधार लाने पर लेख प्रकाशित किया है। अपने संपादकीय पन्ने पर पत्र लिखता है, एग्जाम पैटर्न में लगातार बदलाव और दूर सेंटर होने की वजह से परेशानी में स्टूडेंट्स, NTA का बोझ हट बांटा जाए। वहीं राजस्थान पत्रिका ने आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर एक शोध प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, समय बदला, दूरियां बढ़ी, लेकिन परिवार अब भी सबसे मजबूत सहारा। 1993 में संयुक्त राष्ट्र ने की थी इस दिवस की शुरुआत।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। सरकार ने अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत शुल्क मुक्त सोने के आयात की सीमा 100 किलोग्राम तय की। प्रवर्तन निदेशालय ने जबरन वसूली गिरोह चलाने के आरोप में कोलकाता पुलिस उपायुक्त शांतनु सिन्हा बिस्वास को गिरफ्तार किया। और वुशु में अपर्णा दहिया ने मकाऊ में सांडा विश्व कप में महिला वर्ग के 52 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to embark on a 6-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. Prime Minister says BRICS under India's chairmanship will work together to build a more inclusive world order. Oil marketing companies hike petrol and diesel prices by 3 rupees per litre. Government caps duty-free gold imports at 100 kg under advance authorization scheme. ED arrests Kolkata Police DCP Shantanu Sinha Biswas for running an extortion syndicate. And in Wushu, Aparna Dahiya clinches gold medal in women's 52 kg category in Sanda World Cup in Macau. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 6-day visit to UAE, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy today. On the first leg of his 5-nation visit, Mr. Modi will reach UAE today, where he will meet President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. The two leaders will exchange views on bilateral issues, in particular energy cooperation, as well as regional and international issues of mutual interest. They will also discuss ways to advance the bilateral comprehensive strategic partnership, underpinned by strong political, cultural, economic and people-to-people links. Energy security is expected to remain a central theme of the engagement. Briefing media prior to the visit, Additional Secretary West in the Ministry of External Affairs, Asim Mahajan, said, energy remains a key pillar of the relationship. He noted that the UAE was India's fourth largest source of crude oil last year, meeting around 11% of India's requirement. According to him, India is now the largest buyer of LNG from the UAE. The UAE also supplies nearly 40% of India's liquefied petroleum gas imports and remains a significant destination for Indian petroleum exports. Our correspondent has filed this report.
3: India and the UAE have moved far beyond the traditional crude oil trade that once defined their energy relationship. The UAE remains a key oil supply to India, but the partnership has now expanded into natural gas, renewable energy and civil nuclear cooperation. Earlier this year, Hindustan Petroleum signed a 10-year deal with Abu Dhabi National Oil Company for 500,000 tons of LNG annually beginning 2028, giving India greater price stability by reducing its reliance on spot markets. Renewable energy and civil nuclear cooperation are also gaining ground. UAE so Sovereign wealth funds are actively investing in India's solar infrastructure, while India's Shanti Act, which opens the nuclear sector to private players, has created fresh scope for collaboration in reactors, including small modular reactors. Both sides are pushing to settle energy transactions in rupees and dirhams, reducing dollar dependencies in bilateral trade. From oil to LNG, clean energy to nuclear, the India-UAE energy partnership is being redrawn for a decarbonizing world. Vinod Kumar for Akashwani News from Abu Dhabi.
2: On the occasion of the Prime Minister's 8th visit to the Emirates, Indian Ambassador to the

0: इनसे मिले कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को दीपक हटवार का नमस्कार। श्रोताओं, किसी भी समाज और राष्ट्र की प्रगति की बुनियादी जरूरत शिक्षा होती है, और जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो हमारे देश के अनेक राज्य आज शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुके हैं जहां तक साक्षरता और शिक्षा की बात है। हमारे प्रदेश ने भी शिक्षा के क्षेत्र में विगत कुछ वर्षों में देश के अन्य राज्यों की तरह अपना एक स्थान बनाया है। अगर अतीत की बात करें तो हमारे प्रदेश का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा साक्षरता और शिक्षा की दृष्टि से काफी पीछे चल रहा था, लेकिन आज विभिन्न प्रयासों के साथ इस रेस में हम भी काफी आगे बढ़ चुके हैं। तो हमारे प्रदेश में वर्तमान में साक्षरता और शिक्षा की क्या स्थिति है और इस क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने आमंत्रित किया है अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक राज्य शिक्षा एवं साक्षरता फोरम छत्तीसगढ़ श्री प्रशांत कुमार पांडे को इस कार्यक्रम में। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद जी।
0: प्रशांत जी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि आपका जन्म और प्रारंभिक शिक्षा कहाँ की रही है।
1: मेरा जन्म रायपुर में हुआ है और उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा में मेरे पिताजी चूंकि शासकीय सेवा में रहे हैं तो उनका ट्रांसफर जहाँ जहाँ होता था वहाँ वहाँ हम रहे। जैसे पहले प्रारंभिक शिक्षा मेरी बस्तर में हुई, रायपुर ज़िले में हुई, फिर बालोद जो अब अलग ज़िला बन गया, पहले विभाजित दुर्ग ज़िला हुआ करता था, वहाँ पर हमारी प्रारंभिक शिक्षा हुई।
0: उसके बाद फिर उच्च शिक्षा आपकी कहाँ की रही?
1: उच्च शिक्षा भी हमारी ज़्यादातर शुरुआत जो है वो रायपुर की रही और उसके बाद फिर बालोद में ही हमारी उच्च शिक्षा हुई।
0: आपकी उच्च शिक्षा जब पूर्ण हुई तब आपने सोचा होगा कि किस क्षेत्र में जाया जाए?
1: जब मैं शासकीय महाविद्यालय बालोद में अध्ययनरत था उस समय रविशंकर विश्वविद्यालय की ओर से एक प्रोग्राम चलता था, प्रौढ़ सतत शिक्षा एवं विस्तार कार्यक्रम। उसमें 10 केंद्र जो असाक्षरों को साक्षर करने के लिए पढ़ाए किए जाते थे, जन शिक्षण नियम ये बनाया गया था। उस समय वहाँ पर जो भी प्रभारी प्रोफेसर थे उन्होंने मुझे मेरी रुचि को देखते हुए, NSS राष्ट्रीय सेवा योजना NCC इत्यादि की रुचि को देखते हुए

0: मुझे कहा कि आपके लिए एक बहुत अच्छा काम है, तो आप ये करेंगे? तो मुझे लगा कि एक बहुत अच्छा अवसर मिल रहा है कि साक्षरों को साक्षर करना है अपनी पढ़ाई के साथ साथ। तो उन 10 केंद्रों के सुपरविजन का काम मुझे सबसे पहले सौंपा गया था। ये 1986 की बात है लगभग। तो पहली शुरुआत मैंने वहाँ से जब की, तो धीरे धीरे मेरे मन में ये महसूस हुआ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भी शिक्षा से वंचित हैं, तो ऐसे लोगों को ही साक्षर किए जाने की दिशा में कार्य करना चाहिए।
1: प्रशांत जी, जब इस कार्य की शुरुआत आपने अपने जीवन में की, तो ये कितने बरस पहले की बात होगी?
0: ये लगभग 35 वर्ष पूर्व की बात है, क्योंकि 86 से 1990 के दरमियान मैं कॉलेज में ही था, और उस समय मैंने ये कार्य वहाँ पर किया। और उसी समय जब मैं कॉलेज में की पूरा करने के बाद जब अपनी पढ़ाई मेरी समाप्त हो रही थी, उसी समय अविभाजित मध्य प्रदेश में साक्षरता आंदोलन चला। मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल से चलकर ये अभियान हमारे अविभाजित दुर्ग जिले तक पहुंचा, और उस आंदोलन से मैं जुड़ गया। और पहले ब्लॉक स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, धीरे धीरे से मैंने राज्य स्तर और नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचा।
1: प्रशांत जी, जिस वक्त साक्षरता अभियान चला था, उस वक्त तो हम अविभाजित मध्य प्रदेश में थे, लेकिन फिर भी अगर हम अपने छत्तीसगढ़ क्षेत्र की बात करें, तो छत्तीसगढ़ की स्थिति उस समय कैसी थी, फिर बाद में इसमें किस तरह का परिवर्तन आपने देखा?
0: पहले तो लगभग 1/4 लोग असाक्षर उस समय थे जब राज्य बना था 25 वर्ष पहले। अब तो 26वें वर्ष में हम प्रवेश कर लिए हैं, और आज स्थिति आ गई कि हम अब 1/3 और उससे भी कम हमारे अब असाक्षर रह गए हैं। लगभग ये हम यदि थोड़ा सा भी यदि प्रयास करेंगे तो हम लोग 100% साक्षरता की ओर एक निश्चित कार्य योजना जो हमारी बनी है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि हम 47 के पहले तक हम 100% लिटरेसी को प्राप्त कर ले, तो उसके पहले भी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं।
1: अगर अभी हम पूरे देश में राज्यों की एक लिस्ट बनाते हैं, तो साक्षरता की अगर हम बात करें, तो छत्तीसगढ़ को आप कहाँ पाते हैं?
0: साक्षरता की हम बात करें तो छत्तीसगढ़ अभी का जो पायदान है वो काफ़ी नीचे, 10 से नीचे अभी आ गया है वो।
1: आपने 2003 के बाद जब यहाँ पर साक्षरता अभियान चलाया, तो उसके बाद की और आज की स्थिति में आपको जो फर्क दिखाई दे रहा है, तो उसमें अब कितना बाकी है, क्यों बाकी है, क्या कारण है, कि क्या लगातार ये चल नहीं रहा है, या इसे और अधिक तेजी से चलाने की जरूरत है अभियान को?
0: ऐसी बात नहीं कि नहीं चल रहा है, इसमें कुछ फैक्टर वो काम करते हैं। देखिए, असाक्षर कौन होता है? हमारी जो प्राथमिक शिक्षा में जो बच्चे स्कूल आते हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जो शाला त्यागी हो जाते हैं, अपने घर में खेत में काम करने की वजह से, या परिवार में कोई कमाने खाने वाला नहीं होता, वो जानवर चराने के लिए, बकरी चराने के लिए, गाय भैंस चराने के लिए, या अन्य कामों में वो यदि व्यस्त हो जाता है, इसलिए वो स्कूल से बाहर हो जाता है। बहुत हम प्रयास करते हैं, उसके बावजूद भी वो धीरे धीरे पढ़ाई छोड़ देता है, और जो पढ़ा भी होता है तो जाके आगे जाके वो भूल जाता है, और वही व्यक्ति हमारे जो है असाक्षरों के टारगेट में आ जाता है, और वो भले ही 5वीं पढ़ा हो, 8वीं पढ़ा हो, लेकिन फिर से वो असाक्षर हो जाता है। तो निश्चित रूप से हमको सबसे पहले ये करना होगा कि हम, एक तरह से ऐसा है कि ये जो कमरा है इसमें यदि हम नल चालू कर दें और पानी आ रहा है लगातार, और हम अभी क्या कर रहे हैं कि हम इस कमरे से पानी को खाली करने के लिए हम एक बर्तन से पानी निकालते जा रहे हैं और बाहर हम करते जा रहे हैं। हमको यदि इसको 100% बंद करना होगा, मेरी ये मान्यता है कि साक्षरता अभियान तो चलना ही नहीं चाहिए, इसका स्वरूप बदलना चाहिए। यानी हम पहले नल को बंद कर दें, फिर हम पूरे असाक्षरों को साक्षर कर दें। हमारा प्रयास होना चाहिए कि लोग फिर से असाक्षर न बने, जो हमारे स्कूल में जो लोग एडमिशन ले लिए हैं। सबसे पहले तो 100% हम एडमिट लोगों को करें, और हम यदि उनको एडमिट कर लिए हैं तो ऐसा कोई कारण न हो, स्कूल का वातावरण हम ऐसा बनाएं जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी कहती कि इस तरह से हम लोगों को पढ़ाएं रोचक तरीके से, कि वो लोग स्कूल से बाहर न जाएं, और किसी भी कारण से, चाहे कोई भी परिस्थितियां हो, हम वो परिस्थितियां निर्मित न होने दें कि वो स्कूल से बाहर जाएं, उनको इस तरह से सपोर्ट किया जाए, तब हम 100% ये टारगेट अचीव

0: कर सकते हैं और शत प्रतिशत साक्षर कर सकते हैं।
1: प्रशांत जी, इसमें जन जागरूकता भी एक बहुत बड़ा पक्ष है। आमतौर पर ये होता है कि शासन की ओर से प्रयास किए जाते हैं कि गांव के सारे ही सारे बच्चे स्कूल में आए, लेकिन कई बार परिस्थितियां कुछ ऐसे निर्मित होती हैं कि उसकी वजह से बहुत से परिवार वाले जो हैं अपने बच्चों को पूरी तरह से स्कूल भेजने की स्थिति में नहीं होते हैं, या फिर कई बार ड्रॉप करना पड़ता है उनको। तो लोगों को जागरूक करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, जन जागरूकता के आजकल बहुत सारे उपाय हैं। मीडिया तो बहुत बड़ा प्रभाव डालता ही है, और इसके साथ साथ हमको ऐसे लोगों को छांटना पड़ेगा, ऐसे लोगों का चयन करना पड़ेगा जिनके मन में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो, यानी जो सेवाभावी व्यक्ति हैं, जो देश के लिए अच्छा सोचते हैं। देखिए, यहाँ पर आपने देखा होगा कि आजकल लोग सबसे पहले अपने बारे में सोचते हैं, अपने फायदे के बारे में। गलत नहीं है कि अपने फायदे के बारे में सोचें, लेकिन यदि आप देश के बारे में सोचेंगे, दूसरों के फायदे में के बारे में सोचेंगे, तो निश्चित रूप से ऊपर वाला आपके आपके बारे में, आपके फायदे के बारे में सोचेगा। यह दृष्टिकोण यदि हमारे मन में हो जाए तो हमको टॉप टू बॉटम, मतलब उच्च शिखर से लेकर हमारे जो वार्ड तक के, घर तक के है, वहाँ पर हमको ऐसे सेवाभावी व्यक्तियों का चयन करना पड़ेगा, नंबर एक, और उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। उनके साथ साथ जितने नेतृत्वकारी लोग हैं उनको विश्वास में लेना पड़ेगा, उनको इस अभियान की जिम्मेदारी देनी होगी कि आपको अपने क्षेत्र को पूर्ण रूप से शिक्षित करना है, साक्षर करना है, 100% बच्चे स्कूल जाएं, 100% बच्चे बाहर बिल्कुल ना जा पाएं। यदि कोई बाहर जाता है उनके लिए उचित शिक्षकों की व्यवस्था हो, शिक्षक न केवल शिक्षकों की व्यवस्था है बल्कि वो पूरी दक्षता से, पूरी क्षमता से उनको परिणाममूलक तरीके से पढ़ाएं, अध्ययन अध्यापन करें जिनका उनका मन लगे और रिजल्ट भी अच्छा है, परिणाम भी अच्छा है। और कोई भी यदि स्थितियां ऐसी निर्मित होती, कोई परेशानी आती है, तो वो परेशानियों को दूर करें। और सामाजिक लोगों को भी आप विश्वास में लो, जो समाज में बैठे हुए हैं, जो केवल अभी अन्य कार्यों में, यदि खाली दिमाग शैतान का होता है, उनको अच्छे कामों में यदि व्यस्त कर देंगे ना, तो आपको दुर्घटना भी नहीं होंगी और उनका भी मन लगेगा। जब वातावरण बनाए जाने की ज़रूरत है, और इसके लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। यदि अच्छी इच्छा शक्ति आपकी होगी तो हम बहुत बेहतर परिणाम दे सकते हैं। और आपको बताना चाहूँगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो आया है, अभी जो मुझे नई जिम्मेदारी मिली है, वो इसीलिए मिली है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो बाल्यकाल से लेकर उच्चतर शिक्षा के लिए जो नीति बनाई गई है, उन नीति का बेहतर तरीके से कैसे क्रियान्वयन हो, ये बहुत जरूरी।
1: श्रोताओं, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े श्री प्रशांत कुमार पांडे, और इनसे हम विस्तार से आगे और बातचीत करेंगे। तो उससे पहले प्रशांत जी, इस बातचीत को थोड़ा सा हम मनोरंजन की ओर मोड़ना चाहेंगे और आपकी पसंद का कोई फिल्मी गीत हमारे श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे।
0: वाह वाह वाह, फिल्म और ये सब तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन गाने के बोल जरूर
1: बिल्कुल बताएं।
0: जब कोई बात बिगड़ जाए,
1: बिल्कुल,
0: जब कोई मुश्किल, हाँ, मुश्किल पड़ जाए,
1: हाँ, तो सुनते हैं आपकी पसंद पर फिल्म जुर्म का ये गीत।

0: क्या बात है प्रशांत जी, बहुत अच्छा गीत आपने सुनवाया। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, और मुश्किल की घड़ी तब होती है जब इंसान के जीवन में अशिक्षा का अंधकार होता है, और आप उसी अंधकार को दूर करने के लिए चल पड़े हैं। प्रशांत जी, हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर आपको जो एक जिम्मेदारी सौंपी गई है शिक्षा के क्षेत्र में, उसके बारे में बताएं।
1: देखिए, मैंने पहले महाविद्यालय में 1990 तक और उसके बाद 1990 से 2003 तक ज़िले में, 2003 से 2025 तक राज्य में काम किया, और इस दौरान अलग अलग क्षेत्रों में जब मैं गया तो मेरा जुड़ाव राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब हुआ तो ये महसूस किया गया कि अब पूरे प्रदेश में कुछ नया किया जाए, और संभवतः जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के लोग हैं उन्होंने महसूस किया कि छत्तीसगढ़ में एक ऐसे व्यक्ति की उनको तलाश थी कि जो व्यक्ति लंबे समय से जुड़ा हुआ हो, जिसमें कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो, और जो परिणाम मूलक कार्य करता हो, यानी परिणाम दे सकता हो। उनको जब ये पता चला कि 25 जो साल हुए हैं और 25 साल में हमको 25 राष्ट्रीय अवार्ड मिले हैं, उसमें से हम जिस विभाग में कार्य किया है उसमें 2 और बाकी ज़िलों को मिले हैं, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा ये दायित्व होगा। उनके पीछे उद्देश्य ये है, इस जो स्वायत्त शासी जो संस्थान है उसका उद्देश्य ये है कि हम इस कार्य के लिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी जो लागू है उसका कैसे बेहतर तरीके से हम क्रियान्वयन कर सकें, इसमें हम माननीय जनप्रतिनिधियों को कैसे कन्विंस कर सकें, हम इसमें सामाजिक क्षेत्र के लोगों को कैसे जोड़ सकें, हम इसमें जो अभी वर्तमान में सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये सारे मीडिया का कैसे हम समावेश इसमें कर सकें, और सबसे बड़ी बात है शिक्षा गुणवत्ता पर इसमें फोकस किया गया है। शिक्षा गुणवत्ता भी यदि हम बोलेंगे तो टॉप टू बॉटम, और उसमें ऐसी शिक्षा नहीं जो केवल हमें नौकरी तक पहुंचाती हो, बल्कि ऐसी शिक्षा जो एक बेहतर इंसान बनाती हो। इसमें मूल रूप से भारतीय ज्ञान परंपरा को विशेष रूप से हमें जोड़ा जाना होगा, क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा के बिना कोई भी यदि

0: शिक्षा दी जाए वो अधूरी है। उसको जब तक हम नहीं डालेंगे तब तक के यह हम उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये सारी चीज़ें इसमें डालनी होंगी। नैतिकता की बातें तो छूटी गई हैं आजकल, और जो गंभीर उसके दुष्परिणाम निकल रहे हैं उसको भी इसमें शामिल करना होगा। तो शिक्षा गुणवत्ता मेन है। शिक्षा गुणवत्ता तभी हो सकती है जब बालक, पालक, शिक्षक ये तीनों मिलकर शिक्षा पर पर्याप्त ध्यान दें। हम क्या करते हैं, हम बच्चों के स्कूल में डाल देते हैं और उनको शिक्षक के भरोसे छोड़ सकते हैं। शिक्षक पालक के भरोसे रहते हैं, वो तो पढ़ के आए गई, वो किसी अन्य कार्य में बिजी रहते थे। ये देखना होगा कि वो शिक्षकों को शिक्षकीय कार्य में ही रखा जाए, ये प्रयास होना चाहिए। और घर में भी शिक्षा के लिए वातावरण हो, माता पिता हों, बाप भाई हों, और जो उसके सारे जो रिश्तेदार हैं वो घर पे भी उसको एक वातावरण हो, ये हम प्रयास करेंगे। और दूसरा उसकी पेरेंटिंग अच्छी हो, गुड पेरेंटिंग भी एक सब्जेक्ट होगा इसमें कि कैसे पेरेंटिंग हो बचपन से लेकर उसको, और उसको उस पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए उसको पढ़ाई के लिए। सबसे बड़ा दबाव जो बहुत सारी घटनाएँ घटती हैं कि अभी रिज़ल्ट का दौर चल रहा है और रिज़ल्ट में आपने देखा होगा हम अपने बच्चों पर दबाव डालते हैं कि इतने परसेंट लाना, इतने परसेंट लाना। आप बहुत सारे लोगों का उदाहरण देखिए देश में या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सफल हुए हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा अंक पाए हों, गढ़ना ज़रूरी है। और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देंगे, जब तक प्रशिक्षण में ध्यान नहीं देंगे तब तक कक्षा का वातावरण नहीं बदल सकता।
1: प्रशांत जी, आपको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है हमारे पूरे प्रदेश के लिए, अगर हम आपकी इस जिम्मेदारी के साथ में हमारे प्रदेश में शासन की ओर से स्कूल स्तर की शिक्षा की अभी जो व्यवस्था है उसको अगर देखा जाए तो उसमें उसको सुधार करने के लिए आपकी उपस्थिति कितनी महत्वपूर्ण है?
0: देखिए, हम तो अभी पूरे प्रदेश में संभागीय स्तर पर, जिला स्तर पर, आपके ब्लॉक स्तर पर, ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर हम अपनी इकाई का गठन करेंगे। उसमें हमको ये स्वायत्तता दी गई है सेंट्रल के द्वारा, केंद्र के द्वारा, कि हम इसमें शासकीय और अशासकीय दोनों लोगों को इसमें शामिल कर सकें। और इनको जब हम जोड़ लेंगे, एक हमारी कमेटी गठित हो जाएगी, तो फिर हम माननीय जनप्रतिनिधियों के लिए, पंचायती राज प्रतिनिधियों के लिए जिसमें नगरीय निकाय के जो प्रतिनिधि हैं उनको, और जो हमारे सामाजिक क्षेत्र के लोग हैं ऐसे लोगों को प्रशिक्षित करेंगे, और फिर टॉप टू बॉटम हमारे जो ऑफिशियल्स हैं उनको प्रशिक्षित करेंगे। फिर हम गांव-गांव में स्वयंसेवी व्यक्ति तैयार करेंगे। वो स्वयंसेवी व्यक्ति जो है वो न केवल बच्चों की शिक्षा से लेकर बड़ों की शिक्षा तक ध्यान देगा। यही न केवल ये प्रक्रिया हमारी स्कूली शिक्षा में होगी बल्कि यह प्रक्रिया हमारी उच्च शिक्षा के लिए भी रहेगी। तो बहुत व्यापक क्षेत्र है। पहले तो हमने केवल शिक्षा नीति के चैप्टर नंबर 21 जो प्रौढ़ शिक्षा थे उस पर काम किया था, और ये जो दायित्व बहुत बड़ा दायित्व है, इसमें हमको बच्चों की शिक्षा से, बाल्यावस्था की शिक्षा से, आंगनबाड़ी और बालवाड़ी और बालवाटिका आपने सुना होगा, वहाँ से उनकी शिक्षा से लेकर हायर एजुकेशन तक की शिक्षा पर हमको काम करना होगा। और केंद्र और राज्य के सारे लोग हम रिसर्च भी करेंगे, सर्वे भी करेंगे और रिपोर्ट सेंट्रल को और स्टेट को देंगे, और उसके साथ सबके साथ समन्वय के साथ काम करेंगे।
1: हमने सुना है कि आपने विदेश की भी यात्राएं की हैं। विदेश की यात्राओं में क्या शिक्षा ही आपकी यात्रा का उद्देश्य रहा है, या विदेश की शिक्षा और भारत की शिक्षा को आपने नज़दीक से देखा है, तो उसमें आपका अनुभव कैसा रहा है?
0: निश्चित रूप से मुझे कई बार विदेश यात्रा अल्प समय के लिए जाने का मौका मिला, लेकिन मैं ज़्यादा समय के लिए जो मैं गया हूँ वो लंबे समय के लिए बोलना चाहिए, वो मैं गया हूँ थाईलैंड और जापान। पहले स्टडी टूर में मैं थाईलैंड गया और उसके बाद मैं जापान गया। जापान में मैंने महसूस किया यूनेस्को और जाइका, मतलब जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन सोसाइटी, इसके सहयोग से हमारा वहाँ जाना हुआ था। एशियाई कंट्रीज़ के जो लोग हैं, 11 लोग 11 देश से चयन किए गए थे। हमारे यहाँ भी मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हुई थी कि हर राज्यों से पहले तो नाम का चयन हुआ था, फिर अंत में पूरे देश से एक व्यक्ति का चयन हुआ, और संयोग से उस एक व्यक्ति में मुझे अवसर मिला। मैं वहाँ पर जब गया तो मैंने देखा कि शिक्षा ही वहाँ के विकास का मूल मंत्र है, लेकिन शिक्षा को वो लोग बहुत ज़्यादा बेसिक शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। वहाँ की शिक्षा में मुझे महसूस किया, सबसे ज़्यादा मैंने जो उस देश में महसूस किया जापान में खासतौर पर, मुझे अनुशासन बहुत देखने को मिला। सबसे ज़्यादा वो अनुशासन पर ध्यान देते हैं, पंक्चुअलिटी जिसको बोलते हैं।

0: टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बढ़िया वहाँ पर मैंने को देखने को मिला। जैसे हम तो कोई डेलीगेशन कहीं पर जाता है तो हम लोग उनके लिए VIP व्यवस्था करते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और वो आगे आने, उन लोगों ने भी हमारे शहर से दूर जाने के लिए स्पेशली जैसे यहाँ पर स्पेशल प्लेन होते हैं तो हम लोग जितने लोग थे उतने सीटर, 25 सीटर हमको एक प्लेन दी गई थी इधर वो जाने के लिए, वो हमारे लिए खड़े रहती थे हमेशा जैसे जो सुविधाएँ मिलती। लेकिन ट्रेन में भी, बुलेट ट्रेन में भी हम लोग को उन्होंने कराया। मैं, मेरे को बताने का मतलब ये नहीं कि मैं वहाँ स्पेशल प्लेन या बुलेट ट्रेन और इसमें बैठा, बल्कि वो सब में सिखाते हैं। ऐसा नहीं कि बुलेट ट्रेन में बैठे हैं और हम आनंद लेने जा रहे हैं, वहाँ पर वो, वहाँ पर भी क्लास हमारी चलती थी, क्या सीख रहे हैं, क्या दिख रहा है आपको, कैसा महसूस कर रहे हैं। और खाली वही नहीं, साइकिल भी चलवाते हैं उनको और पैदल भी चलवाते हैं। ऐसा नहीं कि हमने उतरे ट्रेन से और बस तक के हमको कोई ऑटो रिक्शा या वाइक, वहाँ से पैदल चलना है आपको, यानी पैदल भी। जितना आपने खाना खाया है वो आपको पचाना भी, और हेल्थ के लिए जितने कदम चलना जरूरी है उतना कदम चलना। तो अनुशासन, टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें हमको सीखने को मिली। और एक क्लास में मैंने एक बहुत अच्छा वातावरण वहाँ पर देखा। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि क्लास में हम पढ़ा रहे हैं, एक टीचर पढ़ा रहे हैं, सारे लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। वहाँ जैसे हम लोग एक टेबल पर बैठे हैं, वहाँ गोल में अलग अलग टेबल पर, जैसे आज कॉन्फ्रेंस होती है नेशनल इंटरनेशनल, हम लोग भी वर्कशॉप करते हैं, टेबल गोल मेज कॉन्फ्रेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, अलग अलग टेबल पर ग्रुप बैठते हैं, पीयर लर्निंग जिसको बोलते हैं। आपने कई बार इंटरव्यू लिया है तो उसमें आपने देखा होगा, सुना होगा। तो उस तरह के ग्रुप एक्टिविटी वहाँ पर होती है, एक्टिविटी बेस्ड। आपको क्लासरूम लगेगा ही नहीं जब क्लास आप जाएंगे तो। और एक क्लास में एक टीचर नहीं होता, दो टीचर होता है, एक पढ़ाता है और एक ऑब्जर्व करता है। और जैसे ये स्टूडियो बना हुआ है, स्टूडियो में बाजू में रिकॉर्डिंग के लिए एक रूम बना हुआ है, वैसा ही वहाँ पर एक दूसरा कमरा होता है। वहाँ से, वहाँ पर उन ऐसे बच्चे जो पढ़ाई से थोड़े पीछे जा रहे हैं, कभी फिल्म पहले आई थी आपको याद होगा तारे ज़मीन, तो तारे ज़मीन पर में जिस तरह से टीचर ऑब्जर्व करता है, उस तरह से वो टीचर ऑब्जर्व करते हैं। और वो टीचर ऑब्जर्व करने के बाद उनको अलग कमरे में रखा जाता है और उनके लिए वो जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उपकरण होते हैं, लर्निंग उनके मटेरियल होते हैं, वो वहाँ उनके लिए उस तरीके से रखे जाते हैं। और जब वो उस लेवल को अचीव कर लेते हैं तब उनको इसमें शामिल कर दिया जाता है। तो जो देश जो कंट्री एक एक बच्चे के लिए ध्यान देता है। और जैसे हम स्टूडियो में अपने जूते चप्पल बाहर रख के आते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं या मंदिर जाते हैं तो हम जूते चप्पल बाहर रखते हैं, वैसा ही सिस्टम वहाँ स्कूलों में है कि वहाँ आप जाइए और जूते चप्पल सब बाहर रखने का सिस्टम है। शिक्षा एक मंदिर की तरह है, ये बड़ी बात हमने देखी वहाँ पर। और टाइम मैनेजमेंट और पढ़ाने का तरीका और दिखाने का तरीका, अभी तक क्या होता है आपको हम यदि पढ़ा रहे हैं, जैसे यहाँ पर बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, पोस्ट ऑफिस है, ये अस्पताल है, ये बैंक है, ये ऑल इंडिया रेडियो है, ये दूरदर्शन है, या हम इस तरह से बताएंगे तो वहाँ का सिस्टम क्या है वो उनको वहाँ ले जाकर दिखाते हैं, वहाँ है ये अंदर ले जाकर दिखाएंगे बच्चों को। यहाँ तो कभी कभी हम किसी किसी जगह दिखाते हैं ना, आपने देखा होगा विधानसभा लोकसभा बच्चों को दिखाया जाता है, लेकिन वहाँ तो अनिवार्य है ये सब चीज़ें कि पोस्ट ऑफिस है, ये बैंक है, ये एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है ना, ये आकाशवाणी है, ये दूरदर्शन है, ये सारी चीज़ें ले जाके कंपलसरी दिखाने का, ये बहुत अच्छा हमको सीखने को मिला। और उसको हमने यहाँ पर आने के बाद अपने प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लागू किया और उसका ही परिणाम है कि हमको जो अवार्ड मिला है, यदि छत्तीसगढ़ की द्वारा या वहाँ से हमको चयन नहीं होता तो ये उसके परिणाम भी हमने दिखाए, परिणाम भी हमने दिया कि कई लोग तो विदेश घूम के आ जाते हैं और स्टडी तक रह जाती है।
1: तो प्रशांत जी, आपने अवार्ड का जिक्र किया तो हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि इसी क्षेत्र में कौन कौन से अवार्ड हैं जो आपके हिस्से में आए हैं।
0: बहुत अच्छा प्रश्न किया कि जब शुरू में हम यहाँ पर आए थे तो छत्तीसगढ़ के ज़िलों की स्थिति अच्छी नहीं थी, सभी ज़िले अलग अलग तरीके से परेशानियों में व्यस्त थे, उनके अकाउंट सब बंद थे और उनको ऐड मतलब वहाँ से अनुदान नहीं मिल रहा था, उसके बहुत सारे कारण थे। उन सब कारणों को हमने ठीक किया, ज़िलों में जा जा के दौरा किया, ज़िलों के जो कलेक्टर्स थे जो अध्यक्ष हुआ करते थे उनसे सौजन्य भेंट करके उनसे रिक्वेस्ट की, उनके TL की जो मीटिंग है उसमें शामिल हुए, अपने प्रोग्राम को हमने दिखाया पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए। जब एक एक को जा जा के हमने सबसे बात की, पूरे उस समय जो 18 ज़िले थे जब शुरुआती दौर पर, तो उन सारे ज़िलों में जाके हमने बताया, धीरे धीरे चीज़ों को ठीक करते गए। तो हमने देखा कि नेशनल लेवल पर बहुत सारे, पहले सत्येंद्र मेहता साक्षरता पुरस्कार मिलता था, उससे हम लोगों ने शुरुआत की। जो भी हम करते गए नया चीज़, हम जो भी नया नवाचारी हम कार्यक्रम करते गए, जो हमने बाहर से जाके सीखा था, तो वो दूसरे राज्यों का पहले हमने दौरा किया, दूसरे राज्यों का

0: देखा ये क्या अच्छा कर रहे हैं, तो हमने लगा कि छत्तीसगढ़ में हम बहुत अच्छा कर सकते। हमने कलाकारों को जोड़ा, हमने यहाँ साहित्यकारों को जोड़ा, हमने यहाँ पर कुछ नवाचारी शिक्षकों को जोड़ा। इस तरह से हम लोगों को हम जोड़ते गए और हर जगह की साक्षरता की बात हम करते गए। तो एक सत्येंद्र मेहता अवार्ड उस समय मिला, फिर आगे जाके सतत शिक्षा में अवार्ड मिला, फिर साक्षर भारत पुरस्कार को बताना चाहूँगा। 2013 में हमें हमारे जो हमारा जो यहाँ स्टेट लेवल की जो बॉडी है उसको केवल सेवाभावी बहुत कम लोग थे, सीमित संसाधन में हमने उस काम को शुरू किया था, तो उसको राष्ट्रपति अवार्ड मिला था साक्षर भारत का पुरस्कार। और उसके बाद 2016 में भी हमें पुरस्कार मिला राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। और ऐसे ही ज़िलों को, ग्राम पंचायतों को मिलाकर कई ज़िलों को मैं यहाँ पर नाम लूँगा तो लंबी फहरिस्त है इसकी। तो 25 वर्ष में 25 अवार्ड, 25 से अधिक अवार्ड हमको अब तक राष्ट्रीय स्तर के मिल चुके हैं, जो राष्ट्रपति महोदय द्वारा केंद्रीय मंत्री की उपस्थिति में दिए।
1: तो प्रशांत जी, ये हमारे लिए, प्रदेशवासियों के लिए भी बड़े गर्व की बात है कि आपके द्वारा किए जा रहे प्रयासों को इस स्तर पर इसका आकलन किया गया। तो प्रशांत जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि शिक्षा को लेकर आपका जो स्वप्न है और आपके जो प्रयास हैं उन प्रयासों को सफलता मिले और हमारा प्रदेश इस क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति करे और हम भी भारत के नक्शे में एक पूर्ण साक्षर, पूर्ण शिक्षित और विकसित राज्यों की श्रेणी में दिखाई दें। इस बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: इनसे मिलिए इस कार्यक्रम में अभी आप अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक राज्य शिक्षा एवं साक्षरता फोरम छत्तीसगढ़ श्री प्रशांत कुमार पांडे से ली गई भेंटवार्ता सुन रहे थे। भेंटकर्ता थे दीपक हटवार। हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इनसे मिलिए। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। अब पेश है बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन।

घर सिर्फ ईंटों और दीवारों से बना मकान नहीं होता, घर वो जगह है जहाँ थके हुए कदमों को सुकून मिलता है, जहाँ बिना कहे मन की बात समझ ली जाती है, जहाँ माँ की ममता, पिता का विश्वास, बुजुर्गों का आशीर्वाद और भाई बहनों की शरारतें जीवन को रंगों से भर देती हैं। स्वागत है साथियों, नमस्कार। आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रिय कार्यक्रम गुंजन, अपने रेडियो हम सफ़र रैना के साथ। आज का ये विशेष अंक समर्पित है उस अनमोल रिश्ते को जो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है, हमारा परिवार। हर वर्ष 15 मई को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित इस दिन का उद्देश्य लोगों को परिवार के महत्व, उसकी एकता, प्रेम, सहयोग और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करना। लेकिन सच पूछिए तो हमारे देश में परिवार को किसी दिवस विशेष तक सीमित करने की

जरूरत नहीं है। यहाँ तो परिवार ही जीवन का दिवस है, सुबह भी, शाम भी और रात को सोते वक्त भी। हम सबसे ज़्यादा खुश अपने परिवार के साथ रहते हुए महसूस करते हैं।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, जब जीवन की राहें कठिन होती हैं, तब परिवार ही वो हाथ होता है, वो सहारा होता है जो हमें गिरने नहीं देता। जब दुनिया साथ छोड़ देती है, तब परिवार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनकर खड़ा रहता है। कहा भी गया है कि रिश्तों की खुशबू से महकता है जीवन, परिवार से ही सजता है घर घर आंगन। परिवार केवल खून के रिश्तों का नाम नहीं, ये विश्वास, अपनापन, त्याग, सम्मान और प्रेम की वो डोर है जो हर परिस्थिति में हमें बांधे रखती है। आप श्रोता साथी भी तो हमारे आकाशवाणी परिवार के सदस्य हैं। कार्यक्रमों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से हम एक मजबूत डोर से बंधे हुए हैं। तभी तो आप अपनी बातें, शिकायतें, फरमाइशें, सारी चीज़ें हम तक पहुंचाते हैं।
4: चिक बम बम बम, चिक चिक बम।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230, 600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230, 600।
0: अरे वाह, 07774, 230, 600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर, मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: आकाशवाणी अंबिकापुर से आप सुन रहे हैं बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन, और आज कार्यक्रम गुंजन में बातें हो रही हैं अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर। आज के समय में हम सब अपने अपने कामों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि परिवार के साथ बैठकर दो पल बात करने का समय भी कम होता जा रहा है। मोबाइल की स्क्रीन बड़ी होती जा रही है, लेकिन दिलों के बीच दूरी भी कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। ऐसे समय में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हमें ये याद दिलाता है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि अपने लोगों का साथ है।

श्रोताओं, हमारे देश की पहचान हमेशा से संयुक्त परिवारों की संस्कृति रही है। हम भारतीयों के संतोष और सुकून का केंद्र परिवार ही है। संयुक्त परिवार व्यवस्था भले ही शहरों में छीण हो रही हो, लेकिन वो अब भी एक केंद्रीय संस्था बनी हुई है। एक बच्चा यहाँ किसी पृथक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि रिश्तों की एक जीवंत तारामंडल यानी

दादा दादी, चचेरे ममेरे भाई बहन, चाचा चाची, मामा मामी के बीच बड़ा होता है। इनमें से हर कोई उसे स्नेह, अनुशासन, निरंतरता देता रहता है। विपत्ति के समय रिश्तों की यही संजाल भावनात्मक सांत्वना का काम करता है। यहाँ व्यक्ति अकेले नहीं गिरता, उसे थाम लिया जाता है और यही भाव समुदाय तक विस्तृत होता है, जहाँ सामाजिक जीवन शायद ही कभी विखंडित होता है। अगर हम देखें तो पश्चिमी देशों में अकेले रहने को महामारी कहा गया है, लेकिन हमारे देश में एकांत विलास है और बहुत कम लोगों को उपलब्ध होता है और बहुत लोगों को तो इसकी चाह भी नहीं होती।

0: राम राम हो विष्णु भैया,
1: राम राम विष्णु भैया।
0: ए दे भाई नगद, ए दे फट फट फट फट ट्रैक्टर में, ए दे राउर भीड़े ही।
1: कैसे कहिया विष्णु भैया, ए दे आगु तो ए दे वर्धमान ले खेत ला जोतत रहे।
0: हाँ
1: है नहीं।
0: हाँ।
1: बेरा हर ज्यादा लगे।
0: हाँ
1: मैं दे रेडियो कर कार्यक्रम ला सुने।
0: कौन कार्यक्रम ला?
1: ए दे किसान वाणी।
0: हाँ
1: तेकर में यदि जानकारी भेटाइस नहीं।
0: हाँ।
1: ये दे राउत ला हालू हालू बढ़िया लेहन खेती करना है नहीं तो नवा तकनीक ले खेती करी। अब यदि विशेषज्ञ मन कर जानकारी ला सुन पारे में।
0: हाँ।
1: आए?
0: हाँ।
1: तेकर में कहन की दे ट्रैक्टर ला बिसोहू बने राउर बिसोए के तो देखी राउर कर उपज नहीं बढ़ी नहीं।
0: हाँ।
1: ताहा
0: तो राउर ऐसे कहा थी कि ये दे सांझा 7:30 बजे रोज जे कार्यक्रम आयल किसान वाड़ी तेला सुन के
1: हो
0: ये दे बढ़िया बढ़िया तकनीक ला सीखे ही। ये तो महू तो सुनू भाई, ये दे आकाशवाणी अंबिकापुर कर ये सुघर कार्यक्रम किसान वाड़ी ला रोज 7:30 बजे ले 8 बजे कर बीच और मीडियम वेव 238.09 मीटर चाहे कही तो 1260 किलोहर्ट्ज पर नहीं। अब आज कर तो भाई कहता है कि ये दे FM में भी 100.2 मेगाहर्ट्ज में भी एला है दे सुन सकते
1: हैं। हाँ, अबे दे शुरू है कि साहेब।
0: हाँ तो नागा तो देखी भाई अब माहू सुनू आकाशवाणी अंबिकापुर ले आए वाला कार्यक्रम खेती पाती ले जुड़ल कार्यक्रम
1: किसान वाणी।

बातों और गीतों के सफर, गुंजन के सफर में बातें हो रही हैं अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस पर। श्रोताओं, परिवार हमें संस्कार देता है, बड़ों का सम्मान करना सिखाता है, त्याग धैर्य प्रेम का महत्व समझाता है। और देखिए, हमारा वार्षिक कैलेंडर भी हमें आपस में जुड़े रखने में अहम भूमिका निभाता है। होली के रंगों से लेकर दिवाली की आलोकमयी रात्रि तक, पोंगल के फसल उत्सव से लेकर ईद उल फितर के सामुदायिक भोज तक, पूरा वर्ष इस स्मरण से भरा हुआ रहता है कि जीवन को साथ मिलकर उत्सव की तरह जीना चाहिए। यहाँ तक कि जन्म, उपनयन संस्कार, विदाई आदि संस्कार भी हमारे यहाँ सामूहिक सहभागिता के अवसर बन जाते हैं।

श्रोताओं, हमारी संस्कृति हमें सिखाती है वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरी दुनिया एक परिवार है। और आज के समय में बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं और इस बदलते समय के साथ परिवार के साथ भी संतुलन ज़रूरी है। एक साथ भोजन करना, बड़ों का हालचाल पूछना, बच्चों के साथ कुछ पल बिताना, ये छोटी छोटी बातें ही रिश्तों को मजबूत बनाती हैं, गहरी बनाती हैं। इन्हीं बातों के साथ आज अंतर्राष्ट्रीय परिवार की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।

0: रेखा जल्दी रेडियो लगा, मंगलवार है, घर आंगन मेल में मेरी चिट्ठी आने वाली है।
1: अरे पर दीदी मुझे तो फोन पर बात करनी थी, क्या आज फोन नहीं लगेगा?
2: अरे नहीं रेखा, फोन के लिए शनिवार सुबह 10:30 पर नंबर मिलाना है। फोन इन का प्रसारण तो रविवार दोपहर 1:10 पर ही होगा। आज मंगलवार को सिर्फ पत्र और ईमेल वाला मेल ही आएगा।
0: पर आरती रेडियो ठीक से सेट तो कर दे।
2: रेडियो एकदम सही सेट है, मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: अच्छा और फोन नंबर क्या है?
2: नंबर है 231-917 और 231-918, कोड लगाओ 07774। और पत्रों के लिए ईमेल याद है ना, gharangan@gmail.com।
3: समझ गए, मंगलवार को मेल और रविवार को फोन।
2: आकाशवाणी अंबिकापुर, घर आंगन, मंगलवार घर आंगन मेल, रविवार फोन इन बात करेगी। सुनिए मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
3: घर आंगन, आपकी आवाज़ आपकी पहचान।

श्रोताओं, आकाशवाणी अंबिकापुर से आप सुन रहे हैं बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन। और अब कार्यक्रम में बातें करेंगे उस अदाकारा की जिसकी मुस्कान में मासूमियत है। उनकी डांस मूव ने लोगों को दीवाना बना दिया। आज उनका जन्मदिन है। हिंदी सिनेमा की धड़कन, करोड़ों दिलों की पसंद, अदाओं के मलिका माधुरी दीक्षित। जी हाँ दोस्तों, कुछ कलाकार सिर्फ पर्दे पर अभिनय नहीं करते, वे लोगों की यादों में बस जाते हैं। माधुरी दीक्षित उन्हीं सितारों में से एक हैं जिन्होंने अपने अभिनय, नृत्य, मुस्कान और सादगी से हर पीढ़ी के दिलों में खास जगह बनाई। 15 मई 1967 को मुंबई में जन्मी माधुरी दीक्षित ने बचपन से ही कथक नृत्य की शिक्षा ली और शायद यही वजह है कि जब वे स्क्रीन पर आती हैं तो हर भाव, हर अदा, हर कदम संगीत बन जाता है। उन्होंने अपने फिल्मी सफ़र की

शुरुआत फिल्म अबोध से की, लेकिन असली पहचान मिली फिल्म तेजाब से। और फिर आया वो गीत जिसने पूरे देश को झूमने पर मजबूर कर दिया।

0: किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
1: कैसे?

श्रोताओं, इस फिल्म की सफलता के बाद माधुरी दीक्षित ने एक से बढ़कर एक सफल फिल्में दी। दिल, साजन, बेटा, खलनायक, हम आपके हैं कौन, दिल तो पागल है, देवदास जैसी फिल्मों ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री की सबसे सफल अभिनेत्रियों में शामिल कर दिया। जब वे मुस्कुराती हैं तो स्क्रीन खिल उठती है, जब वे रोती हैं तो दर्शकों की आंखें नम हो जाती हैं, और जब वो डांस करती हैं तो लगता है जैसे संगीत स्वयं आकार लेकर मंच पर उतर आया हो। उनकी और अभिनेता अनिल कपूर की जोड़ी, सलमान खान के साथ उनकी जोड़ी, और फिर शाहरुख खान की उनकी जोड़ी बहुत ही यादगार रही। दर्शकों ने उन्हें बहुत प्यार दिया। फिल्म हम आपके हैं कौन ने भारतीय पारिवारिक सिनेमा को एक नई ऊंचाई दी। उस फिल्म के नशा आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। वहीं देवदास में चंद्रमुखी के किरदार ने माधुरी जी के अभिनय और नृत्य का ऐसा संगम दिखाया कि हर कोई मंत्रमुग्ध रह गया। आज भी माधुरी दीक्षित का आकर्षण कुछ ऐसा ही है, आज भी वो उतने ही लोकप्रिय हैं। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म का एक और गीत।

इसी गीत के साथ बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन अब रैना को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आपको बता दें कि आज कार्यक्रम गुंजन में आपने जिन फिल्मों के गीत सुने वो थे एक रिश्ता, हम, क्या कहना, करण अर्जुन, सूर्यवंशम, तेजाब, दिल तो पागल है। गायक कलाकार थे सुदेश भोसले, मोहम्मद अजीज, मोदित नारायण, कविता कृष्णमूर्ति, हरिहरन, कुमार सानू, अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल,

अभी आप सुन रहे थे बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

पैनिक खरीदी की गई है, जिससे इसकी खपत में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज हुई है। इस कारण कुछ स्थानों पर कृत्रिम अभाव की स्थिति निर्मित हो गई। उन्होंने लोगों से किसी भी तरह की अफवाह या घबराहट की स्थिति में पेट्रोल डीजल की खरीदी नहीं करने की अपील की है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आकाशवाणी केंद्र द्वारा वॉकथन का आयोजन किया गया। इसमें आकाशवाणी के कर्मचारी, सेवानिवृत्त अधिकारी, समाचार वाचक, श्रोता और शहर के प्रमुख नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दूरदर्शन रायपुर के उप महानिदेशक संजय कुमार मिश्रा थे। विशेष अतिथि के रूप में पत्र सूचना कार्यालय रायपुर के उप निदेशक रमेश जयभाय और माय भारत के क्षेत्रीय प्रमुख अर्पित तिवारी शामिल हुए। वॉकथन आज सुबह लगभग 7 बजे सिविल लाइन्स स्थित आकाशवाणी भवन से शुरू हुआ। यह शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए आकाशवाणी परिसर में ही समाप्त हुआ। आकाशवाणी केंद्र रायपुर के उप महानिदेशक वी राजेश्वर ने बताया कि यह आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया गया है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। यह देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है, जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन, प्रेरक और जनोपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। प्रदेश में आज अनेक जगह मौसम का मिजाज फिर से बदल गया। राजधानी रायपुर और राजनांदगांव सहित कुछ जिलों में तेज

0: के साथ बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने महासमुंद, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा सहित राज्य के 17 जिलों में आज अचानक तेज हवा और मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। राज्य के दक्षिणी इलाकों में भी आकाशीय बिजली गिरने और वर्षा होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद और जशपुर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया जाएगा। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल रमन डेका करेंगे, वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से कहा कि पेट्रोल डीजल की उपलब्धता को लेकर चिंता नहीं करें, प्रदेश में पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज रायपुर में वॉकाथन का आयोजन किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्स और एफएम बैंड 100.2 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। प्रातः के 10 बजे हैं। आइए जानते हैं तापमान सूचना। स्थानीय मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के आधार पर अंबिकापुर नगर का अधिकतम तापमान 37.7 डिग्री सेल्सियस रहा और न्यूनतम तापमान 26.9 डिग्री सेल्सियस रहा। तापमान सूचना के बाद आइए जानते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए तराने। सुबह 11:05 पर आप सुनेंगे श्रोताओं के समीक्षात्मक पत्र और ईमेल पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी पत्री। दिन में 12 बजे आप सुनेंगे NCERT और CIET द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। बारह बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे एक ही शीर्षक पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चयन। और दिन में 1:10 पर आप सुनेंगे ग्रामीण बहनों का कार्यक्रम घर को साइन। इसमें आप सुनेंगे समसामयिक चर्चा, कथा कहनी और लोकगीतों का आनंद लेंगे। फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज आपको सुनवाएंगे दिन में 1:40 पर और रात्रि 9:30 पर। गैर फिल्मी गीत और गजलों का कार्यक्रम गीत गंधा का प्रसारण समय है दिन में 2:30 पर।

हमारे शाम की सभा में शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथे हमर कोट। युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी लेकर आएंगे शाम 5:30 पर। इसमें आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम हेलो फ्रेंड्स। शाम 6:20 पर आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम गोधुली। इसमें आप सरगुजिया और छत्तीसगढ़ी लोकगीत सुनेंगे, कलाकार होंगे रामाधार और साथी और ममता सिंह और साथी। शाम 7:05 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीकंधा। शाम 7:20 पर ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल आप सुन सकेंगे। इसमें सामयिक चर्चा क्रम आजकल, साथ ही आप सुनेंगे श्रीयन समृद्ध अन्न पर चर्चा, साथ ही जानेंगे मंडी भाव, मौसम की जानकारी और मौसम आधारित कृषि परामर्श। इंस्टा फरमाइश, सोशल मीडिया पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम का समय है 8:00। चित्रपट संगीत आप सुन सकेंगे 9:15 पर और शास्त्रीय रागों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम राग प्रधान

सुनेंगे रात्रि 10 बजे। 10:30 पर आप सुन सकेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन भावन। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब पेश है नए फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम नए तराने।

पॉइंट पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब पेश है नए फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम नए तराने में पेश है फिल्म फाइटर का गीत, बी प्राक, विशाल ददलानी और शेखर रविजानी की आवाजों में। गीतकार हैं कुमार और संगीत विशाल शेखर का है।

आपने ट्यून किया है आकाशवाणी अंबिकापुर और सुन रहे हैं कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए फिल्म द ट्रेन का गीत, मिथुन और शिल्पा राव की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे हैं सईद कादरी ने, संगीत मिथुन का है।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए
3: कार्यक्रम नए तराने में लीजिए अब सुनिए अंतरा मित्रा और अरिजीत सिंह की आवाजों में फिल्म दिलवाले का गीत गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य और संगीत प्रीतम का है

0: वो अपनापन, वो भरोसा जो सालों साल आपने दिखाया हम पर,
1: उसे और मजबूत बनाने हम ला रहे हैं FM 100.2 MHz पर अपना प्रसारण।
0: साफ और स्पष्ट आवाज अब और भी बेहतर अंदाज में आपके दिलों तक।
1: तो जुड़िए आकाशवाणी अंबिकापुर से और जोड़िए आपके अपनों को भी।
0: आपका अपना आकाशवाणी अंबिकापुर, मीडिया वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ के साथ अब FM 100.2 MHz पर भी।

कार्यक्रम नैतराने में अगली पेशकश है फिल्म एनिमल का गीत अरिजीत सिंह की आवाज में। गीतकार हैं सिद्धार्थ गरिमा और संगीत श्रेयस पौराणिक का है।

0: गूंजती आवाज के साथ जुड़ेगा आपका भी नाम।
1: दीजिए आकाशवाणी अंबिकापुर पर विज्ञापन और बनाइए अपनी पहुंच लाखों करोड़ों दिलों तक।
0: चाहे हो शुभकामना संदेश या हो आपके व्यापार का नाम,
1: उसे दें ऊंची उड़ान और बनाएं अपनी नई पहचान। करवाएं विज्ञापन मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। आकाशवाणी अंबिकापुर से संपर्क करें 07774230600। नंबर एक बार फिर 07742306000।
2: आकाशवाणी अंबिकापुर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नए तराने। कार्यक्रम नए तराने में अब पेश है मोहित चौहान की आवाज में फिल्म ऊंचाई का गीत। गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने, संगीत अमित त्रिवेदी का है।

0: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू
1: बेबी को बेस पसंद है।
2: इंस्टा फरमाइश, आपकी पसंद मनभावन और ईमेल की गूंज के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का एक और कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। इसके लिए आपको करना है ये कि आकाशवाणी अंबिकापुर के इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पर पोस्ट किए गए पोस्टर पर अपनी फरमाइश, नाम और पता कमेंट सेक्शन में लिखना है। बस हो गया आपका काम खत्म और हमारा शुरू। फिर हम शामिल करेंगे आपको कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश में, जिसे आप सुनेंगे हर रात 8:00 से 8:45 तक। तो देर किस बात की, आज ही अपने पसंदीदा गीत की फरमाइश भेजें और सुने कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।
1: बेबी को बेस पसंद है।
3: कार्यक्रम नए तराने में लीजिए आप सुनिए राहत फतेह अली खां की आवाज में फिल्म अनजाना अनजानी का गीत। गीत को लिखा है विशाल ददलानी ने और संगीत विशाल शेखर का है।

0: रेखा जल्दी रेडियो लगा, मंगलवार है, घर आंगन मेल में मेरी चिट्ठी आने वाली है।
1: अरे पर दीदी मुझे तो फोन पर बात करनी थी, क्या आज फोन नहीं लगेगा?
2: अरे नहीं रेखा, फोन के लिए शनिवार सुबह 10:30 पर नंबर मिलाना है। फोन इन का प्रसारण तो रविवार दोपहर 1:10 पर ही होगा। आज मंगलवार को सिर्फ पत्र और ईमेल वाला मेल ही आएगा।
0: पर आरती रेडियो ठीक से सेट तो कर दे।
2: रेडियो एकदम सही सेट है, मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
1: अच्छा और फोन नंबर क्या है?
2: नंबर है 231-917 और 231-918, कोड लगाओ 07774। और पत्रों के लिए ईमेल याद है ना, gharanganair@gmail.com।
3: समझ गए, मंगलवार को मेल और रविवार को फोन।
2: आकाशवाणी अंबिकापुर, घर आंगन, मंगलवार घर आंगन मेल, रविवार फोन इन, बात करें गीत सुने। सुनिए मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।
3: घर आंगन, आपकी आवाज, आपकी पहचान।
4: मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है और आप सुन रहे हैं नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए तराने। तो लीजिए अब सुनिए फिल्म सत्यमेव जयते का ये गीत जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाज़ों में। गीत को लिखा है नासिर काजमी ने और संगीत रोचक कोहली और नुसरत फतेह अली खां का है।

अभी आप नहीं, सोहम चक्रवर्ती की आवाज में फिल्म लाइफ इन मेट्रो का गीत सुना। गीतकार थे सईद कादरी और धुन तैयार किया था प्रीतम ने। लीजिए आप सुनिए अरमान मलिक की आवाज में फिल्म फोर्स टू का गीत। गीत को लिखा है रश्मि विराग ने और संगीत अमाल मलिक का है।

0: इस गीत के साथ ही नए तरानी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मिडी वेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 11 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में हिंदी समाचार दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल एनटीए के आधिकारिक चैनलों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया है। इससे पहले इस महीने की 3 तारीख को हुई परीक्षा कथित पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस समय नीट परीक्षा के संबंध में बयान दे रहे हैं, आइए सुनते हैं।
2: जो एग्जामिनेशन हो गई, उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे। हम उसमें एनटीए वचनबद्ध है और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी जीरो फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए, हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। हमने एक बहुत जो शहर में विद्यार्थी परीक्षा देता है, एक बार एनटीए विस्तार से एनटीए एनेक्सर आपको देगा, कोरिनियम आपको आगे देगा डिटेल, शाम तक आपको फिर एनटीए की पब्लिक बने प्रेस नोट के माध्यम से। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम एक सप्ताह विद्यार्थियों को अपने पसंद का शहर, क्यों, कोई विद्यार्थी कहीं परीक्षा दिया होगा पिछले बार, वो परीक्षा देने के बाद उस शहर शायद छोड़ा भी होगा, फिर हम एक बार विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं।
1: इससे पहले आगामी नीट परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल रात केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस दौरान परीक्षा को सुचारू और प्रभावी ढंग से आयोजित करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रधानमंत्री आज सुबह संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए। 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी आज यूएई पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों, विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग, साथ ही पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। विदेश मंत्रालय के अपर सचिव पश्चिम असीम महाजन ने कहा कि ऊर्जा दोनों देशों के संबंधों का एक प्रमुख स्तंभ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इस वर्ष भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स बहुपक्षवाद को मजबूत करने, सतत विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक लचीलेपन को बढ़ाने और अधिक समावेशी वैश्विक व्यवस्था के निर्माण के लिए मिलकर काम करेगा। इससे पहले ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि शांति और सुरक्षा वैश्विक व्यवस्था के केंद्र में है। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग से राजधानी में ईंधन की खपत कम करने और सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित शटल बस सेवा शुरू की। ये केंद्रीय सचिवालय और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों तथा मध्य विस्तार क्षेत्र के प्रमुख सरकारी प्रतिष्ठानों के बीच निर्बाध और पर्यावरण के अनुकूल अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने कल पेइचिंग में वार्ता की। दोनों ने व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव के बावजूद साझा सहयोग पर बल दिया। श्री ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में यह उनकी पहली चीन यात्रा थी। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि ऊर्जा के निर्बाध प्रवाह के लिए होर्मुज जलडमरू मध्य खुला रहना चाहिए।

0: यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी मिसाइल और ड्रोन हमले में 3 बच्चों सहित 21 लोग मारे गए हैं और 45 घायल हुए हैं। यूक्रेन की आपात सेवाओं के अनुसार कल हुए इस हमले में मकानों, एक स्कूल, एक पशु चिकित्सा केंद्र और अन्य नागरिक भवनों को नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। अभी समाचारों का अनुप्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से किया जा रहा था। सुबह के 11:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए चिट्ठी पत्री कार्यक्रम।

0: चिट्ठी पत्री कार्यक्रम सुनने वाले सभी आदरणीय श्रोताओं का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है और स्वागत के साथ मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त तरुण और आज आपके प्यारे प्यारे पत्रों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं प्रमेंद्र जी। प्रमेंद्र जी, आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत के साथ मेरा सादर नमस्कार।
1: धन्यवाद तरुण जी, और साथ ही साथ चिट्ठी पत्री सुन रहे हमारे सभी श्रोताओं को मेरी ओर से नमस्कार है जी। और देखिए तरुण, हमारे पास पत्रों की संख्या जो है बहुत है, लगातार इसकी संख्या में वृद्धि होती जा रही है जी। तो समय हमारे पास कम पड़ जाता है और इसी बात को ध्यान में रखते हुए क्यों ना हम सीधे पत्रों की ओर रुख करें। तो सबसे पहला पत्र आज आप किन का ले रहे हैं?
0: सबसे पहला पत्र मैं ले रहा हूँ परशोत्तम कुमार जी का, और ये पत्र आया है गाँव डंडी, तहसील भद्रवाह, जिला डोडा से
1: जी।
0: ये लिखते हैं, सभी कार्यक्रम बेहद अच्छे लगते हैं। आकाशवाणी अंबिकापुर से प्रसारित आपकी पसंद जैसे पत्रों पर आधारित कार्यक्रम में मैं प्रतिदिन सुनता हूं। हालांकि मेरा भेजा हुआ पत्र अभी शामिल नहीं हो पा रहा है, फिर भी कार्यक्रमों के प्रति हमारा प्रेम और जुड़ाव बना हुआ है। कुछ समय पहले शुरू हुआ सोशल मीडिया आधारित इंस्टा फरमाइश कार्यक्रम हमें बेहद पसंद आया। यह श्रोताओं को जोड़ने का एक सुंदर प्रयास है। एक सच्चे श्रोता की पहचान होती है कि उसका पत्र या ईमेल शामिल हो या ना हो, फिर भी वह पूरे मन से कार्यक्रमों को सुनता है और उससे जुड़ा रहता है। चिट्ठी पत्री कार्यक्रम का नया समय और बढ़ी हुई अवधि हमें बहुत अच्छी लग रही है। इससे अधिक श्रोताओं के संदेश शामिल हो सकेंगे और कार्यक्रम का आनंद भी बढ़ जाएगा। अब शायद किसी भी श्रोता को शिकायत नहीं रहेगी कि उनका ईमेल शामिल नहीं हुआ है। इस सुंदर पहल के लिए आकाशवाणी अंबिकापुर परिवार की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है।
1: जम्मू कश्मीर से स्नेह भरे पत्र भेजने के लिए परशोत्तम कुमार जी, आपको हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। दूर जम्मू कश्मीर से आकाशवाणी अंबिकापुर के कार्यक्रमों को नियमित रूप से सुनना और उनसे अपना जुड़ाव बनाए रखना हमारे लिए सचमुच बहुत बड़ी खुशी की बात है
0: जी।
1: आपने हमारे कार्यक्रमों, विशेषकर पत्रों पर आधारित कार्यक्रम चिट्ठी पत्री, इंस्टा फरमाइश, इन सभी कार्यक्रमों के प्रति जो स्नेह व्यक्त किया है, हमारे पूरे आकाशवाणी परिवार के लिए उत्साह बढ़ाने वाली बात है
0: जी।
1: रही बात आपके पत्र के शामिल ना होने की, तो कभी कभी समय और कभी चयन की सीमाओं के कारण सभी पत्रों को तुरंत शामिल हम नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपका अपनापन और सहभागिता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप ऐसे ही पत्र भेजते रहिए और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका पत्र अवश्य शामिल होगा यदि वो पत्र हम तक पहुँचा है। तो इन्हीं बातों के साथ अब हम आपको धन्यवाद देते हैं और बस यही चाहेंगे कि आपकी ये जो भावनाएं हैं, ये जो बातें हैं, ये लगातार हम तक पहुंचती रहे, यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। स्नेह बनाए रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। अगला पत्र आया है हमारे पास अनूपपुर मध्य प्रदेश से, लिखने वाले हमारे श्रोता साथी हैं जयमंत्री केवट
1: जी।
0: ये लिखती हैं, 30 अप्रैल को शाम की सभा में कल्पना जी द्वारा प्रस्तुत सोशल मीडिया आधारित फरमाइशी कार्यक्रम बेहद शानदार लगा। अनेक संदेशों और सुंदर गीतों ने श्रोताओं का मन मोह लिया। 1 मई को नमस्कार सरगुजा में दी गई जानकारी और महाकवि प्रदीप जी के भजन बेहद अच्छे लगे। वहीं गुंजन कार्यक्रम में राजीव दुबे जी द्वारा मन्नाडे एवं बुद्ध पूर्णिमा पर दी गई जानकारी ज्ञानवर्धक लगी। 5 मई को पोलोमी जी की मधुर आवाज में प्रस्तुत कार्यक्रम ने सुबह को और खुशनुमा बना दिया। 6 मई को राजीव द्वारा गुंजन में स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय नर्स दिवस पर दी गई जानकारी दिल को छू गई। शाम को पद्मनाभ शर्मा जी द्वारा इंस्टा फरमाइश कार्यक्रम में गीतों का चयन बेहद लाजवाब रहा। 7 मई को सरगुजा SP राजेश अग्रवाल जी से परमेंद्र जी की विशेष बातचीत बेहद सुंदर और महत्वपूर्ण लगी और इससे हमें जानकारी प्राप्त हुई। आशा है कि भविष्य में ऐसे ज्ञानवर्धक कार्यक्रम हमें सुनने को मिलते रहेंगे। इतना लिखकर उन्होंने पत्र की समाप्ति की है
1: जी। अनूपपुर से जयमंत्री केवट जी, आप के इस आत्मीय और विस्तृत पत्र के लिए सबसे पहले तो हृदय से धन्यवाद। सच कहें तो आपका ये पत्र सुन के ऐसा लग रहा था जैसे आपने पूरे सप्ताह आकाशवाणी अंबिकापुर के साथ हर पल बिताया है
0: जी।
1: आपने कार्यक्रमों को न केवल सुना है बल्कि उनकी छोटी

0: छोटी छोटी बातों, प्रस्तुतियों और भावों को अपने मन में संजोया है और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप इंस्टा फरमाइश से लेकर गुंजन, नमस्कार सरगुजा, बैठक, इन तमाम कार्यक्रमों को आपने सुना है और हर प्रस्तुति के प्रति आपका जो स्नेह है और बारीकी से आपने जो अवलोकन किया है हमारे कार्यक्रमों को, ये कहीं ना कहीं पूरे आकाशवाणी परिवार के लिए उत्साह बढ़ाने वाली बात है। आपने जो अपनापन प्रोत्साहन दिया है वो हम सभी के लिए अनमोल है। आप ऐसे ही हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहिए और अपने विचार साझा करते रहिए, क्योंकि श्रोताओं का यह स्नेह ही है जो हमें प्रेरित करता है और भी बेहतर करने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रेरक आत्मीय पत्र के लिए। भविष्य में भी आपके पत्रों का हम इंतजार करेंगे। और तरुण, इन्हीं बातों के साथ अब चलते हैं आज के अगले पत्र की ओर।
1: अगला पत्र आया है हमारे पास पथरिया भरेवा छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले हमारे श्रोता साथी हैं चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश, नेहा और वान्या सिंगरौल। ये लिखते हैं 7 मई को सुबह 9 बजे प्रसारित कार्यक्रम में सरगुजा के पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल जी से प्रेमेंद्र कुमार जी की बातचीत सुनने का अवसर मिला। ये संवाद अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रहा। इसके बाद गुंजन कार्यक्रम में विजय जी ने समसामयिक जानकारियों और मधुर गीतों के सुंदर समन्वय ने कार्यक्रम को बेहद रोचक बना दिया। वहीं सुबह 10 बजे गांव कर गीत कार्यक्रम में विनितेश गुप्त जी ने श्रोताओं से आत्मीय बातचीत करते हुए शानदार छत्तीसगढ़ी और सरगुजिया गीत सुनवाए, जो हमें बेहद पसंद आए। आकाशवाणी अंबिकापुर की पूरी टीम द्वारा प्रस्तुत ऐसे ज्ञानवर्धक और मनोरंजक कार्यक्रमों के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।
0: जी, पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल जी, आपके सभी परिजन मित्रगण, आप सभी को आकाशवाणी परिवार की ओर से स्नेह भरा नमस्कार और हृदय से धन्यवाद। आपने बड़ा ही मन से पत्र को लिखा है और ऐसा लग रहा है जैसे पूरे परिवार ने हमारे कार्यक्रमों को साथ बैठकर सुना है
1: जी।
0: और हर प्रस्तुति में आपने जो अपनापन महसूस किया है वो आपके पत्र में झलक रहा है। बैठक कार्यक्रम में विशेष बातचीत हो, गुंजन की रोचक प्रस्तुति हो या गाँव कर गीत का आत्मीय संवाद, आपने जिस बारीकी और प्रेम से अपने विचार साझा किए हमारे लिए अत्यंत प्रेरणादायक है। श्रोताओं का ये स्नेह और जुड़ाव ही हमारी असली ताकत है तरुण जी।
1: जी,
0: और आपके शब्द हमारी पूरी टीम के लिए उत्साह और ऊर्जा का संदेश लेकर आते हैं। आप सभी ऐसे ही सुनते रहिए और लिखते रहिए, अपना स्नेह बनाए रखिए। आप सभी श्रोताओं की वजह से ही आकाशवाणी परिवार कुछ नया करने की सोचता है और उत्साहित होता है आपके शब्दों से। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस पत्र के लिए। और अब पढ़ते हैं आज के अगले पत्र की ओर।
1: अगला पत्र आया है रायगढ़ जेल रोड से।
0: जी,
1: लिखने वाले हमारे श्रोता साथी हैं नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार तिवारी और पूरा परिवार। ये लिखते हैं 1 मई को श्रमिक दिवस एवं बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रसारित गुंजन कार्यक्रम में राजीव दुबे जी द्वारा साझा की गई प्रेरणादायक और स्मरणीय बातें बेहद अच्छी लगी। कार्यक्रम में सुनाए गए सभी गीत भी मन को छू गए और प्रस्तुति खास बना दिया। इस सुंदर और भावपूर्ण प्रस्तुति के लिए राजीव दुबे जी को दिल से धन्यवाद और हार्दिक बधाई।
0: जी, नरेंद्र कुमार तिवारी जी, आपके सभी परिजन मित्रगण, आप सभी को सबसे पहले तो नमस्कार। बड़ा ही आत्मीय संदेश लिख भेजा है आपने और आपने श्रमिक दिवस एवं बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रसारित गुंजन कार्यक्रमों को इतने ध्यान से सुना, प्रेम से सुना, हमारे लिए बेहद खुशी की बात है। राजीव दुबे जी की प्रस्तुति और उसमें शामिल गीतों को आपने अपने मन में विशेष स्थान दिया, ये जानकर हमारी पूरी टीम के लिए उत्साहवर्धन का काम किया ये बात। आपका स्नेह और प्रोत्साहन हमारे लिए बड़ी प्रेरणा है। आप ऐसे ही जुड़े रहिए, सुनते रहिए हमारे कार्यक्रमों को और अपने विचार हम तक पहुंचाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस पत्र के लिए। और तरुण जी, अब ऐसा लग रहा है कि समय हो गया है कुछ गीत संगीत हो जाए।
1: जी, तो श्रोताओं, हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कुछ कुछ होता का ये गीत। आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चिट्ठी पत्री, और कार्यक्रम में अगला पत्र आया है हमारे पास तारकेश्वरपुर जिला सूरजपुर से, और इनके दो पत्र प्राप्त हुए हैं प्रेमेंद्र जी हमको।
1: जी जी।
0: और लिखने वाले हमारे श्रोता साथी हैं मधुसूदन प्रजापति, सुखमनिया प्रजापति, झिलमिल दक्ष, कुंती, मंगलराम और रिद्धि सिद्धि प्रजापति। ये लिखते हैं, 1 मई को चिट्ठी पत्री कार्यक्रम बेहद अच्छा लगा, जिसमें प्रेमेंद्र जी ने श्रोताओं के पत्रों का उत्तर बहुत ही सुंदर अंदाज में प्रस्तुत किया। 4 मई का परिक्रमा कार्यक्रम भी अत्यंत प्रभावशाली रहा, इसके लिए अंजनी जी को धन्यवाद। इसी दिन का गुंजन कार्यक्रम भी बेहद पसंद आया। 5 मई को प्रसारित हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम में

0: फल उद्यान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां सुनने को मिली। वहीं साथ में के बैठक कार्यक्रम में राजेश अग्रवाल जी से प्रेमेंद्र जी की भेंटवार्ता अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रही। इसी दिन का गुंजन कार्यक्रम जो कौशल विकास से जानकारियों पर जुड़ा हुआ था, जो हमें बहुत पसंद आया। 11 मई का गुंजन कार्यक्रम आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम बेहद शानदार रहा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के श्रोताओं की बातचीत सुनकर बहुत अच्छा लगा। इसके लिए विजय जी को विशेष धन्यवाद। प्रत्येक दिन इंस्टा फरमाइश कार्यक्रम भी बहुत मनभावन लगता है, जिसमें सुनवाए जाने वाले गीत बेहद पसंद आते हैं। और इन सभी प्रस्तुतियों के लिए हार्दिक धन्यवाद और शुभकामनाएं इन्होंने दी हैं।
1: तारकेश्वरपुर जिला सूरजपुर से मधुसूदन प्रजापति जी, आपके सभी परिजन मित्रगण, आप सभी का कार्यक्रम चिट्ठी पत्री में स्वागत है, अभिनंदन है
0: जी।
1: आपने बड़ा ही विस्तृत आत्मीय और अपनापन से भरा पत्र लिख भेजा है, और इसमें बड़ी ही ऐसी बातें लिख भेजी हैं जो सचमुच मन को प्रसन्न करने वाली हैं। आपने हमारे सभी कार्यक्रमों, चिट्ठी पत्री, परिक्रमा, हेलो किसानवाणी, बैठक, गुंजन आपकी बात आपके गीत, इंस्टा फरमाइश, इन सभी कार्यक्रमों को ध्यान से सुना और अपने विचार साझा किए, और ये बातें हमारे लिए मायने रखता है। आपके शब्द केवल प्रशंसा नहीं बल्कि हमारे पूरे आकाशवाणी परिवार के लिए प्रेरणा है, और श्रोताओं का ये जुड़ाव है यही हमें और भी बेहतर करने की ऊर्जा देता है तरुण जी
0: जी।
1: और आप सबका स्नेह और विश्वास यही बना रहे, आप हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहिए, लिखते रहिए और अपने विचार हम तक पहुँचाते रहिए, क्योंकि आपकी ये बातें ही हैं जो हमें प्रेरित प्रोत्साहित करती हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस पत्र के लिए, और अब चलते हैं आज के अगले पत्र की ओर।
0: अगला पत्र आया है हमारे पास जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से। लिखने वाले हमारे श्रोता साथी हैं खेलसाय मरकाम, नयन प्रकाश मरकाम, शारदा मरकाम, लक्की, सीताराम, सितंबर, अमरनाथ, मंगलमूर्ति, रोशन राजवाड़े, राहुल राजवाड़े, हीरा लाल प्रजापति, पांडे राम राजवाड़े, नूरसाय राजवाड़े, कविता मरकाम एवं आरती मरकाम। ये लिखते हैं, नमस्कार सरगुजा एवं चौपाल कार्यक्रम हमें बेहद पसंद आते हैं। आकाशवाणी अंबिकापुर के सभी कार्यक्रम हमें नियमित रूप से सुनते हैं और प्रत्येक प्रस्तुति ज्ञानवर्धक और मनभावन लगती है। आप सभी के उत्कृष्ट प्रयासों और शानदार प्रस्तुतियों के लिए तहे दिल से धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं
1: जी। खेलसाय मरकाम जी, आपके पूरे परिवार, सभी साथियों का कार्यक्रम में स्वागत करते हैं, और हमारी ओर से स्नेह भरा नमस्कार आप सभी को। आपने एक बार फिर से बहुत ही आत्मीय संदेश लिख भेजा है, और यह जानकर बेहद खुशी हुई कि आप सभी नमस्कार सरगुजा चौपाल आकाशवाणी के अन्य कार्यक्रमों को नियमित रूप से सुन रहे हैं और हमारे स्थायी श्रोता बने हुए हैं। और देखिए तरुण जी, श्रोताओं का ये जो स्नेह है, अपनापन है, यही हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ा सम्मान है
0: जी।
1: और खेलसाय जी, आप सभी ने जो प्यार, विश्वास और शुभकामनाएं भेजी हैं, वे हमारी पूरी टीम के लिए नई ऊर्जा लेकर आई हैं। हम हमेशा ये प्रयास करते रहते हैं कि हमारे कार्यक्रम ज्ञानवर्धक, उपयोगी और मनोरंजक हो, आप सभी का मनोरंजन करें, और आप सभी का यूं ही साथ हमें मिलता रहे
0: जी।
1: पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से एक बार पुनः आप सभी को हार्दिक धन्यवाद, शुभकामनाएं।
0: अगला पत्र आया है हमारे पास, लिखने वाले हमारे श्रोता साथी हैं मानिक राम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम, हरिशंकर, रत्नेश कुमार, प्रशांत प्रजापति, रामचंद्र गुप्ता और पांडे राम राजवाड़े। और ये पत्र आया है ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर से। ये लिखते हैं, आकाशवाणी अंबिकापुर के सभी कार्यक्रम हम नियमित रूप से सुनते हैं। कार्यक्रमों में हुए नए बदलाव बहुत अच्छे लग रहे हैं। व्यस्तता के कारण समीक्षा नहीं भेज पा रहे थे, यह हमारा पहला चिट्ठी पत्री पत्र है, कृपया शामिल करने की कृपा करें। 8 मई के चिट्ठी पत्री में मेरे द्वारा और प्रेमेंद्र जी द्वारा सुंदर जवाब सुनने को मिले। ईमेल की गूंज और इंस्टा फरमाइश की प्रस्तुति भी बेहद शानदार रही इसी दिन की। 9 और 10 मई के गूंजे जंगल, गुंजन, आपकी पसंद, ईमेल की गूंज कार्यक्रमों में सदाबहार गीतों और सुंदर प्रस्तुतियों ने मन मोह लिया। मातृ दिवस पर तरुण जी द्वारा बातें विशेष रूप से पसंद आईं। 11 और 13 मई के विचार बिंदु में राजीव जी के कर्म और भाग्य तथा जिज्ञासा विषय पर विचार अत्यंत सार्थक लगे। 14 मई को गोपेश पांडे जी द्वारा प्रस्तुत गुंजन और इसके बाद गांवकर गीत कार्यक्रम जो प्रस्तुत किया गया, बहुत अच्छा लगा।

0: सभी कार्यक्रमों के लिए आपको हार्दिक धन्यवाद शुभकामनाएं।
1: राजापुर सूरजपुर से मानिक राम प्रजापति जी और आपके सभी साथियों का आकाशवाणी अंबिकापुर परिवार की ओर से स्नेह भरा नमस्कार। कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी का। और एक बार फिर से तरुण जी, देखिए बहुत ही विस्तृत पत्र और बड़ा ही आत्मीयता से भरा पत्र मानिक राम जी ने लिख भेजा है हमें जी। और व्यस्तताओं के बीच आपने समय निकालकर हमारे कार्यक्रमों को सुना और इतने प्रेम से अपने विचार साझा के लिए किए, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और ये हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि हमारे श्रोता तमाम व्यस्तताओं के बावजूद हमारे कार्यक्रमों के लिए समय निकालते हैं और अपनी बातें हम तक लिखकर भेजते हैं
0: जी।
1: आपने चिट्ठी पत्री, ईमेल की गूंज, गुंजन, इंस्टा फरमाइश, विचार बिंदु जैसे तमाम कार्यक्रमों को सुना है और बारीकी से कार्यक्रमों की समीक्षा लिख भेजी है। इन कार्यक्रमों की समीक्षा में जो आपने स्नेह दिया हमारे पूरे आकाशवाणी परिवार के लिए प्रेरणादायक है। और आपके पत्र का जो संदेश है वो सचमुच हम सभी को प्रोत्साहित कर रहा है। और देखिए तरुण जी, श्रोताओं का जो ये अपनापन है यही हम सभी के लिए एक बड़ी ताकत है, ऊर्जा का स्रोत है। और हम यही चाहते हैं कि हमारे श्रोता यूं ही हमसे जुड़े रहें, अपनी बातें हम तक पहुंचाते रहें और हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहें। तो इन सभी बातों के लिए एक बार पुनः मानिक राम प्रजापति जी और इनके सभी साथियों को धन्यवाद देते हैं और बढ़ते हैं आज के अगले पत्र की ओर।
0: अगला पत्र आया है पाटन गुजरात से। लिखने वाले हमारे श्रोता साथी हैं धीरज वी रबारी। ये लिखते हैं, आकाशवाणी अंबिकापुर टेक्निकल टीम और सभी श्रोताओं को प्रसारण के 90 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक शुभकामनाएं। हमें फोन इन कार्यक्रम आपकी बात आपके गीत में विशेष रुचि रहती है। रविवार को 10:30 बजे लेकर 11 बजे के बाद तक हम कई बार फोन लगाने का प्रयास करते हैं
1: जी।
0: फोन तो लगता है लेकिन कॉल रिसीव नहीं होता, कृपया इस पर ध्यान दिया जाए और क्या कहना चाहेंगे इस पर
1: जी। देखिए, सबसे पहले तो आकाशवाणी के 90 वर्षों की जो ये प्रसारण की यात्रा है
0: जी,
1: इस पर आपने जो शुभकामनाएं लिख भेजी हैं वो उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और इस शुभकामनाओं के पात्र के लिए आप भी शुभकामनाएं के पात्र हैं, आपको भी हम इसकी शुभकामनाएं देते हैं। और आप हमारे कार्यक्रमों को सुन रहे हैं, विशेष रूप से ईमेल की गूंज, इंस्टा फरमाइश, इन सभी कार्यक्रमों को पसंद कर रहे हैं, इसके लिए भी धन्यवाद। आपने आपकी बात आपके गीत फोन इन कार्यक्रम के प्रति जो बात लिखी है
0: जी,
1: कि आपको ये कार्यक्रम रुचिकर लगता है और इसे आप पसंद करते हैं लेकिन इसमें आपके फ़ोन नहीं लग पा रहे हैं
0: जी,
1: तो देखिए हमें तो पता नहीं होता कि हमारे श्रोता कौन से श्रोता हमें फ़ोन कर रहे हैं। जब हमारी उनसे बातचीत होती है तभी हमें पता चलती है। बाकी कॉल वेटिंग में बहुत सारे श्रोता रहते हैं, तो हम यही कहेंगे कि आप प्रयास करते रहिए और हमारी ओर से कोई भेदभाव नहीं की जाती। हम बारी बारी से सभी श्रोताओं की कॉल को रिसीव करते हैं और हम अपने श्रोताओं से भी गुजारिश करते हैं कि आप थोड़े अंतराल के बाद कॉल किया करें ताकि सभी श्रोताओं को जगह मिल सके कार्यक्रम में। बहरहाल आपने हमारे कार्यक्रमों के प्रति रुचि दिखाई, हमसे हमारे कार्यक्रमों के बारे में अपने विचार साझा किए, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और यही चाहेंगे कि आप इसी तरह जुड़े रहिए, सुनते रहिए और अपना स्नेह बनाए रखिए हमारे कार्यक्रमों के प्रति। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस पत्र के लिए। और तरुण जी, अब बढ़ते हैं आज के अगले पत्र की ओर।
0: अगला पत्र आया है हमारे पास प्रेम साय राजवाड़े, सोमार साय, मेर साय, श्री भगत, हेमंत कुमार, राम किलावन सिंह पैकरा, राजकुमार निवानी और नैन दास दीवान की ओर से
1: जी।
0: और ये पत्र आया है सारसताल सोनगढ़ जिला सूरजपुर से। ये लिखते हैं, आकाशवाणी अंबिकापुर के सभी कार्यक्रम हमें बेहद पसंद आते हैं। 8 मई को चिट्ठी पत्री कार्यक्रम शानदार लगा, जिसके लिए मुझे और परमेंद्र जी आपको हार्दिक बधाई दी है इन्होंने
1: जी।
0: इसी तरह 11 मई को प्रसारित आपकी बात आपके कार्यक्रम भी बेहद अच्छा लगा। बेहतरीन प्रस्तुति के लिए विजय यादव जी को विशेष शुभकामनाएं। हम सुबह से रात तक आकाशवाणी अंबिकापुर के सभी कार्यक्रम नियमित रूप से सुनते हैं। हर कार्यक्रम एक से बढ़कर एक लगता है। हमारी फरमाइश है, इन्होंने एक गीत सुनना चाहा है तो हम बीच में कभी नहीं सुनवा देंगे
1: जी। जी सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी साथियों का कार्यक्रम चिट्ठी पत्री में, नमस्कार है हमारी ओर से
0: जी।
1: बड़ा ही आत्मीय संदेश आपने लिख भेजा है और देखिए हमें विशेष प्रसन्नता होती है जब हमारे श्रोता इस तरह की बातें लिखते हैं कि आप सुबह से रात तक हमारे कार्यक्रमों को नियमित रूप से सुनते हैं
0: जी।
1: और इन साथियों ने ये बातें लिख कर भेजी है और कहीं ना कहीं ये आकाशवाणी के प्रति जुड़ाव है, हमारे श्रोताओं का आकाशवाणी के प्रति स्नेह है। हमारे कार्यक्रमों के प्रति

0: जो लगाव है हमारे श्रोता उन्हें बांधे रखती है हमारे श्रोताओं को। चिट्ठी पत्री और आपकी बात आपके गीत कार्यक्रम के प्रति आपका स्नेह प्रोत्साहन हमारी पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। और आपने गीत का अनुरोध किया है तो मैं चाहूँगा कि तरुण जी वो गीत अवश्य सुनाएंगे आपको। बस यही है कि आप अपना प्यार स्नेह इसी तरह बनाए रखिए और कहीं ना कहीं आप जैसे श्रोताओं का अपनापन ही है जो आकाशवाणी की असली पहचान है, सबसे बड़ी ताकत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस पत्र के लिए। और अब तरुण जी कौन सा गीत सुना रहे हैं?
1: जी, अगला गीत है श्रोताओं सलामी फिल्म से और इसमें आवाजें हैं कुमार सानू और आशा भोसले जी की। तो आइए सुनते हैं।

0: जी हाँ श्रोताओं, हम तो आपके पत्र ही देखते हैं क्योंकि आपके पत्रों में लिखी बातें हमें बहुत ही पसंद आती है। और अगला पत्र आया है हमारे पास रघुनाथ पाटिल नारे जी का, और ये पत्र आया है सावरगांव महाराष्ट्र से। ये लिखते हैं, 15 मई 2026 को प्रसारित विचार बिंदु कार्यक्रम में पद्मनाभ शर्मा जी द्वारा प्रस्तुत ज्ञान और व्यवहार विषय पर आलेख अत्यंत प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक लगा। उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से बताया कि ज्ञान और अच्छा व्यवहार हमें बड़ों का सम्मान तथा छोटों के प्रति प्रेम की भावना सिखाता है, जो जीवन को खुशहाल बनाता है। ये संस्कार हमें अपने घर परिवार से ही प्राप्त होते हैं। पद्मनाभ शर्मा जी को उत्कृष्ट प्रस्तुति के लिए हार्दिक धन्यवाद।
1: महाराष्ट्र के सावर गांव से रघुनाथ पाटिल जी, आपने विचार बिंदु कार्यक्रम को इतने ध्यान से सुना, उसमें निहित भावों को अपने शब्दों में जिस सुंदरता से साझा किया वह सचमुच मन को छू गया। ज्ञान और व्यवहार के माध्यम से परिवार, संस्कार और आपसी प्रेम के महत्व पर आपके विचार भी बहुत ही सार्थक लगे। जानकर खुशी हुई कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आई, कार्यक्रम ने आपके मन पर एक सकारात्मक छाप छोड़ी। आपके जैसे सजग और संवेदनशील श्रोता का स्नेह ही हमारे कार्यक्रमों को और अधिक अर्थपूर्ण बनाते हैं। तो हम यही कहेंगे कि आप ऐसे ही जुड़े रहिए, सुनते रहिए और अपने विचार हम तक पहुंचाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस पत्र के लिए। और अब तरुण जी, चलते हैं आज के अगले पत्र की ओर।
0: अगले 3-4 पत्र हमें प्राप्त हुए हैं रामचंद माखीजा, श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही, पूजा छुटकी, शरद कुमार डोंडवाड़नी और समस्त माखीजा परिवार की ओर से। और ये पत्र आया है धमतरी छत्तीसगढ़ से।
1: जी,
0: ये लिखते हैं, आकाशवाणी अंबिकापुर से प्रसारित साहित्यिक पत्रिका परिक्रमा गुंजन, आपकी बात आपके गीत, चयन एवं विचार बिंदु जैसे सभी कार्यक्रम बेहद ज्ञानवर्धक, भावपूर्ण और मन को छूने वाले लगते हैं।
1: जी,
0: अक्षय रंजन जी, तरुण कुमार, विजय, जयमाला और समस्त उद्घोषक अपने सुंदर वचनों, विचारों, गीतों के माध्यम से साहित्य, सत्यता, मातृत्व, तकनीकी के सदुपयोग और जीवन मूल्यों पर अत्यंत सार्थक संदेश देते हैं। विशेष रूप से माँ, सत्यता, मन ही बंधन, चांद विषय पर आधारित प्रस्तुतियाँ बहुत प्रभावशाली रहीं। मधुर गीतों और प्रेरणादायक बातों से कार्यक्रमों को और भी यादगार बना दिया। आकाशवाणी अंबिकापुर परिवार और प्रमेंद्र जी, आपको इन सभी प्रस्तुतियों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद।
1: धमतरी से रामचंद माखीजा जी, आपके सभी परिजन, मित्रगण, आप सभी का आकाशवाणी अंबिकापुर के चिट्ठी पत्री कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को वंदे मातरम, हार्दिक नमस्कार। हमेशा की तरह आपने विस्तृत, आत्मीय और भावपूर्ण पत्र लिख भेजा है। और सचमुच तरुण जी, जब हमें इस तरह के पत्र प्राप्त होते हैं
0: जी,
1: तो मन प्रफुल्लित हो उठता है। आपने चांद विषय

0: पर आधारित कार्यक्रमों से लेकर विचार बिंदु, गुंजन, आपकी बात आपके गीत, हर तरह की प्रस्तुति को न केवल ध्यान से सुना है बल्कि उसके भावों को भी बहुत ही सुंदर ढंग से महसूस किया है। माँ की ममता, सत्यता का महत्व, नई तकनीकों के जिम्मेदार उपयोग जैसे विषयों पर आपने बड़ा ही संवेदनशील प्रतिक्रिया लिख भेजी है और पढ़कर लगा कि आप हमारे कार्यक्रमों को बड़ा ही ध्यान से सुनते हैं और कार्यक्रमों की पहुंच बहुत ही दूर तक है हमारे कार्यक्रमों की और कहीं ना कहीं हमारे श्रोताओं के दिल से भी जुड़ा हुआ है। आप जैसे सजग और आत्मीय श्रोता का साथ हमारे लिए अनमोल है। आपका यह प्रेम अपनापन यूं ही बनाए रखिए और हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहिए, जुड़े रहिए और लिखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस पत्र के लिए। और अब चलते हैं आज के अगले पत्र की ओर।
1: अगला पत्र है चिरमिरी कुरासिया कालरी से लिखने वाले हमारे श्रोता साथी हैं इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे एवं कालिंद्री लहरे। ये लिखते हैं, 10 मई को प्रसारित कानून की बात कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तराधिकार विषय पर दी गई जानकारी अत्यंत महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक लगी। बिलासपुर जिला सत्र न्यायालय की सहायक जिला न्यायाधीश सुश्री मनीषा ठाकुर जी से सुप्रिया भारतीन की बातचीत बहुत ही अच्छी लगी, इसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया है।
0: जी इंद्रभान जी, आपके सभी मित्रगण, परिजन, आप सभी को हमारी ओर से नमस्कार। जानकर खुशी हुई कि कानून की बात कार्यक्रम के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ, उपयोगी जानकारियाँ प्राप्त हुई। आकाशवाणी का हमेशा से यही प्रयास रहता है कि मनोरंजन के साथ साथ ऐसी जानकारी भी श्रोताओं तक पहुँचाएँ जो दैनिक जीवन में उपयोगी सिद्ध हो। आपने कार्यक्रमों को ध्यान से सुना, अपने विचार हमसे साझा किए, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आपका ये स्नेह और जुड़ाव हमारी पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। ऐसे ही सुनते रहिए, जुड़े रहिए, अपने विचार हम तक पहुंचाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस पत्र के लिए। और तरुण जी, अब बढ़ते हैं आज के अगले पत्र की ओर।
1: जी अगला पत्र आया है हमारे पास अड़ार नांद घाट से। लिखने वाले हमारे श्रोता साथी हैं माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी, भूपेश और दीपेश वर्मा। ये लिखते हैं, 10 मई को प्रसारित कानून की बात कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। 12 मई को ईमेल की गूंज में श्रोताओं के संदेशों के साथ मनभावन गीतों की सुंदर प्रस्तुति बहुत ही अच्छी लगी। 14 मई को गुंजन कार्यक्रम में विश्व राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर दी गई जानकारी और मधुर गीतों का चयन बेहद शानदार रहा। इन सभी उत्कृष्ट प्रस्तुतियों के लिए समस्त आकाशवाणी परिवार को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।
0: जी अड़ार नांद घाट से माखन वर्मा जी, आपके सभी मित्रगण, परिजनों, बड़े लंबे समय के बाद आपने हमें पत्र लिखा है और आप सभी का हम स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। बड़ा ही आत्मीय पत्र और मन को प्रसन्न करने वाला पत्र आपने लिख भेजा है। आपने हमारे कार्यक्रमों को ध्यान से सुना है, अपनत्व से सुना है और अपनी प्रतिक्रियाएं भेजी है, इसके लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं।
1: जी
0: कानून की बात में उत्तराधिकार नियम पर दी गई उपयोगी जानकारी, ईमेल की गूंज में श्रोताओं के संदेश और गीतों का समावेश, गुंजन में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर प्रस्तुत जानकारियाँ, इन तमाम बातों को आपने सुना है, पसंद किया है और ये जानकर हमारी पूरी टीम का उत्साहवर्धन हुआ है और कहीं ना कहीं हम सभी और भी बेहतर करने के लिए प्रेरित हुए हैं। और देखिए तरुण जी, जब हमारे श्रोता इतने प्यार से हमें पत्र लिखते हैं, हमारे कार्यक्रमों की समीक्षा करते हैं, हम सभी का हौसला अफजाई करते हैं, तो ये हमें और भी बेहतर करने की प्रेरित कर जाते हैं।
1: जी
0: आपके जैसे जागरूक और स्नेहिल श्रोताओं का साथ हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है, हमारी असली पूंजी है। आप ऐसे ही हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहिए, लिखते रहिए और नियमित रूप से लिखिए। हम तो यही चाहेंगे कि हमारे सभी श्रोता हमारे कार्यक्रमों को सुने और नियमित रूप से कार्यक्रमों की समीक्षा लिखकर भेजें। आपके विचार, आपके बातें हमारे कार्यक्रमों को और भी बेहतर बनाने में मददगार साबित होते हैं, तो इन बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और तरुण जी, अब पढ़ते हैं आज के अगले पत्र की ओर।
1: अगला पत्र लेने से पहले क्यों ना एक गीत सुन लिया जाए।
0: बिल्कुल,
1: तो अगला गीत है कूली नंबर 1 फिल्म से, आवाजें हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की।

0: मौसम चाहे बरसात का हो, ठंड का हो या भीषण गर्मी का हो, हर मौसम अपना अलग रंग दिखाता है। लेकिन आकाशवाणी अंबिकापुर के कार्यक्रमों को सुनने का आनंद हर मौसम को सुहाना बना देता है। 8 मई को शुक्रवार को सुबह 11:05 पर चिट्ठी पत्री कार्यक्रम बेहद अच्छा लगा। इसके लिए प्रेमेंद्र जी आपको और मुझे इन्होंने हार्दिक शुभकामनाएं लिखकर भेजी है और ये कार्यक्रम सुनकर हमें इस गर्मी भरे मौसम में भी गर्मी का एहसास नहीं हुआ। इसी तरह ईमेल की गूंज, आपकी पसंद, गांव कर गीत और इंस्टा फरमाइश जैसे कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुतियां भी मन को बहुत आनंदित करती हैं। आकाशवाणी अंबिकापुर परिवार के सभी उद्घोषक साथियों की मधुर आवाज़ें और आत्मीय अंदाज सचमुच काबिले तारीफ है। साथ ही इन्होंने अंत में एक छोटा सा सुझाव भी दिया है जी। आकाशवाणी केंद्रों में प्रत्येक माह किसी एक श्रोता का साक्षात्कार प्रसारित किया जाता, उसी प्रकार की शुरुआत यदि आकाशवाणी अंबिकापुर से भी हो तो कार्यक्रमों में और 4 चांद लग जाएंगे। आशा है कार्यक्रम प्रमुख प्रेमेंद्र जी इस ओर ध्यान अवश्य देंगे। समस्त आकाशवाणी अंबिकापुर परिवार को दिल से धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं।
1: चांदनी चौक दंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन जी और आपके सभी परिजन मित्रगण, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम में और आपने बड़ा ही आत्मीय भावनाओं से भरा हुआ सुंदर शब्दों से सजाकर पत्र लिखा है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके पत्र को पढ़ते वक्त तरुण जी के चेहरे पे जो मुस्कान हमने देखा
0: जी,
1: आप शायद देख नहीं पाएंगे लेकिन महसूस अवश्य कर रहे होंगे उनके शब्दों में। आपने मौसम और आकाशवाणी के प्रसारण को जिस खूबसूरती से जोड़ा है, दिल को छूने वाली बात है। सच ही कहा है आपने, मौसम चाहे भीषण गर्मी का हो, बरसात का हो या ठंड का, लेकिन जब श्रोताओं का प्यार साथ हो और तो हर मौसम सुहाना लगने लगता है
0: जी।
1: खुशी हुई कि आपने चिट्ठी पत्री कार्यक्रम में जो हमारी प्रस्तुति थी उसको सराहा है, उसे पसंद किया है और मौसम की तपिश को भुला देने वाला बताया है। साथ ही आपने ईमेल की गूंज, आपकी पसंद, गांव कर गीत, इंस्टा फरमाइश जैसे कार्यक्रमों के प्रति अपना स्नेह लिख भेजा है
0: जी।
1: ये हमारे पूरे आकाशवाणी परिवार के लिए उत्साह बढ़ाने वाला है। आपके पत्र की सबसे विशेष बात है आपकी आत्मीय भरे सुझाव, आत्मीयता से भरा हुआ सुझाव। बहुत बढ़िया सुझाव है कि हम श्रोताओं का साक्षात्कार करें, उनके अनुभवों को जानें और इस पर हम गंभीरता से विचार करेंगे। भविष्य में संभावना होगी तो अवश्य इस पर हम काम करेंगे
0: जी।
1: बहरहाल एक अनुरोध है, एक गुजारिश है आप सभी श्रोताओं से कि हम आकाशवाणी की स्थापना का 90वां वर्ष मना रहे हैं और ऐसे में हमारे सभी श्रोताओं के कुछ न कुछ अनुभव रहे होंगे आकाशवाणी से संबंधित
0: जी।
1: तो क्यों ना हम उन अनुभवों को एक दूसरे से साझा करें और इसको साझा करने का एक बेहतर माध्यम है कि हम पत्रों के माध्यम से लिख भेजें अपने अनुभव। तो मैं चाहूँगा कि अब हमारे श्रोता चिट्ठी पत्री में के अगले अंक में अपने अनुभव अवश्य साझा करें। तो इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस पत्र के लिए। और तरुण जी, आपने बताया कि ये आज का आखिरी पत्र है
0: जी,
1: तो इससे पहले कि हम कार्यक्रम को समेटें आप हमारे श्रोताओं को पता और ईमेल एड्रेस बता दें।
0: हमारा पता है साथियों, कार्यक्रम चिट्ठी पत्री द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 27, आकाशवाणी अंबिकापुर, छत्तीसगढ़, पिन है 497001। हमारी ईमेल आईडी है phambikapurair@gmail.com
1: जी। तो इन्हीं बातों के साथ चिट्ठी पत्री के आज के इस अंक से मुझे यानी प्रमेंद्र कुमार को
0: और तरुण को
1: दीजिए इजाजत। नमस्कार।

चिट्ठी पत्री कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। अगला अंतिम पत्र हमें प्राप्त हुआ है हमारे इन श्रोता साथियों का। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र और रौनक सेन की ओर से, और ये पत्र आया है गंडई पंडरिया से। ये लिखते हैं

अभी आप चिट्ठी पत्री कार्यक्रम सुन रहे थे। मिडवेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। सुबह के 11:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हमारे रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

0: और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से कहा कि पेट्रोल डीजल की उपलब्धता को लेकर चिंता नहीं करें, प्रदेश में पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज रायपुर में वॉकथन का आयोजन किया गया। और अब समाचार विस्तार से। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रम के बीच केंद्र सरकार ने देश में घरेलू एलपीजी, घरेलू पीएनजी और परिवहन के लिए सीएनजी की 100% आपूर्ति सुनिश्चित होने की जानकारी दी है। नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी ब्रीफिंग में बताया गया कि पिछले 3 दिनों में लगभग 1,40,00,000 घरेलू एलपीजी सिलेंडर बुक किए गए, जिनमें से करीब 1,39,00,000 सिलेंडर वितरित किए जा चुके हैं। सरकार ने कहा है कि देश के सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। ब्रीफिंग में ये भी बताया गया कि भारत के लिए एलपीजी लेकर आ रहे 2 जहाज सुरक्षित रूप से होर्मुज जल डमरू मध्य पार कर चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों से पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को लेकर चिंता नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है और प्रदेश के सभी ऑयल डिपो में नियमित रूप से ईंधन की आपूर्ति की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार और ऑयल कंपनियां आपसी समन्वय के साथ स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भी ईंधन आपूर्ति को लेकर जरूरी तैयारियां की हैं और किसी तरह की समस्या नहीं है। श्री साय ने लोगों से अफवाह पर ध्यान नहीं देने और जरूरत के अनुसार ही ईंधन लेने की अपील की है। इस बीच राज्य की खाद्य सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने कहा है कि आम लोगों द्वारा पिछले 2 दिनों में पेट्रोल डीजल की पैनिक खरीदी की गई है, जिससे इसकी खपत में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज हुई है। इस कारण कुछ स्थानों पर कृत्रिम अभाव की स्थिति निर्मित हो गई है। उन्होंने लोगों से किसी भी तरह की अफवाह या घबराहट की स्थिति में पेट्रोल डीजल की खरीदी नहीं करने की अपील की है। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आकाशवाणी केंद्र द्वारा वॉकथन का आयोजन किया गया। इसमें आकाशवाणी के कर्मचारी, सेवानिवृत्त अधिकारी, समाचार वाचक, श्रोता और शहर के प्रमुख नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दूरदर्शन रायपुर के उप महानिदेशक संजय कुमार मिश्रा थे। विशेष अतिथि के रूप में पत्र सूचना कार्यालय रायपुर के उप निदेशक रमेश जयभाय और माई भारत के क्षेत्रीय प्रमुख अर्पित तिवारी शामिल हुए। वॉकथन लगभग 7 बजे सिविल लाइन्स स्थित आकाशवाणी भवन से शुरू हुआ। यह शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए आकाशवाणी परिसर में ही समाप्त हुआ। आकाशवाणी केंद्र रायपुर के उप महानिदेशक वी राजेश्वर ने बताया कि यह आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया गया है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना 8 जून 1936 में हुई थी। ये देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है, जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन, प्रेरक और जन उपयोगी कार्यक्रम का प्रसारण करता है। प्रदेश में आज अनेक जगह मौसम का मिजाज फिर बदल गया। राजधानी रायपुर और राजनांदगांव सहित कुछ जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने महासमुंद, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा सहित राज्य के 17 जिलों में आज अचानक तेज हवा और मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से कहा कि पेट्रोल डीजल की उपलब्धता को लेकर चिंता नहीं करें, प्रदेश में पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज रायपुर में वॉकथन का आयोजन किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: अभी प्रादेशिक समाचार हमारे रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित किए जा रहे थे। मिडवेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 12 बजे हैं। निजी सुनिए एनसीईआरटी और सीआईईटी द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग।

0: संबंध
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: जल संरक्षण के सारे काम सुख समृद्धि के रचे आयाम।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गर्मी के इस मौसम में आपके विचार की प्रासंगिकता और भी अधिक बढ़ जाती है। जी हाँ श्रोताओ, जल अमूल्य है, इसे बूंद बूंद बचाना हमारी जिम्मेदारी है। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: छत्तीसगढ़ रायपुर से नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, अनीता जाटव और राधिका रानी जयपुरिया जी ने लिखा है, मिठाइयों का सम्मेलन कहानी बहुत पसंद आई, आपको बधाई।
3: आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी अर्मी हूँ।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेशों के लिए। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में।
2: तो श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी गर्मी से बचने के कुछ उपायों पर।
3: जी,
2: और ये भी जाना था कि 12 बजे से 4 बजे तक खास तौर से हमें गर्मी के मौसम में बाहर क्यों नहीं निकलना चाहिए। तो अजीत जी, जरा श्रोताओं को ये भी जानकारी दे दें कि आज की चर्चा किस विषय पर होगी।
3: विमलेश जी, आज हम ये चर्चा करेंगे कि गर्मी के मौसम में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए।
2: जी,
3: लेकिन श्रोताओं, इससे पहले कि हमारी चर्चा आगे बढ़े, एक रोचक लेकिन महत्वपूर्ण बात आपको हम बताना चाहते हैं। और वो ये कि परंपरागत धारणाओं के अनुसार गर्मी के मौसम में सबसे कठिन दिन कब आते हैं।
2: जी अजीत जी, ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि वो समय अब आने ही वाला है। आज 13 मई हो गई, बस कुछ दिन और। जी हाँ श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं नवतपा की। उत्तर और मध्य भारत में इसका प्रभाव विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। इन दिनों हमें अपना बहुत ही खास ध्यान रखना चाहिए। अजीत जी, नवतपा किसे कहते हैं ये तो बताइए जरा।
3: जी विमलेश जी, नवतपा का अर्थ है 9 दिनों तक तपना, यानी 9 दिनों तक भयंकर ताप।
2: जी,
3: ये वो अवधि है जब हमारे परंपरागत खगोल ज्ञान और मान्यता के अनुसार सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, और इन दिनों में लगभग 9 दिनों तक प्रचंड गर्मी पड़ती है।
2: तो श्रोताओं, आइए अब जानते हैं कि सामान्यतः ये समय कब आता है। आमतौर पर मई महीने के अंत यानी लगभग 25 मई से जून महीने की शुरुआती यानी 2 जून तक। जलवायु परिवर्तन के कारण ये समय थोड़ा इधर उधर हो सकता है। इस समय विशेषकर उत्तर भारत में लू चलती हैं और आसमान साफ होता है, इसलिए छाया की भी गुंजाइश नहीं होती है।
3: जी, बता दें श्रोताओं कि यह प्राचीन अनुभवों के आधार पर परंपरागत मान्यता है। वैसे नवतपे में गर्मी बड़ी खतरनाक हो जाती है, लेकिन इसे वरदान भी माना गया है। क्यों?
2: नवतपे में जितनी गर्मी पड़ेगी, माना जाता है कि मानसून उतना ही अच्छा आएगा।
3: जी,
2: आइए अब करते हैं चर्चा गर्मी के मौसम में खान पान की।
3: तो विमलेश जी, आपसे शुरुआत करें।
2: जी अजीत जी, श्रोताओ, गर्मी के मौसम में खास ध्यान ये रखना चाहिए कि हमारा आहार पौष्टिक लेकिन हल्का हो।
3: और हाँ, इस मौसम में नींबू पानी, छाछ, दही जैसे प्राकृतिक उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करें।
2: सबसे जरूरी बात तो ये है श्रोताओ कि खाली पेट घर से न निकलें।
3: जी,
2: अब बात करते हैं मौसमी फलों के बारे में। अजीत जी, मुझे लगता है कि प्रकृति को सचमुच हमारी बहुत चिंता रहती है।
3: जी बिल्कुल, इसलिए तो प्रकृति को माँ भी कहा गया है।
2: जी सही कहा, जैसे माता को हमारी चिंता रहती है, वैसे ही प्रकृति भी हमारी चिंता करती है। श्रोताओ जरा सोचिए ना, गर्मी के मौसम में ही खरबूजे, तरबूज जैसे फल प्रकृति क्यों उगाती है, खीरे और ककड़ियाँ क्यों उगाती है, आम और दूसरे मौसमी फल क्यों होते हैं, ये फल सर्दियों में क्यों नहीं उगते।
3: विमलेश जी, आमतौर पर लोग कहेंगे कि इसमें भला सोचने की क्या बात है, ये गर्मी के फल हैं तो गर्मी में तो होंगे ही।
2: जी अजीत जी, आम लोग ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ फल जैसे खरबूज, तरबूज, ककड़ी और खीरे में 80-90% तक पानी होता है।
3: जी,
2: इन्हें खाने से हमारे शरीर में पानी की मात्रा बनी रहती है। इतनी अधिक पानी की मात्रा होने के कारण ये पचने में भी आसान होते हैं।
3: जी विमलेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा, प्रकृति को सचमुच हमारी चिंता रहती है, तभी तो वो ऐसे फल उगाती है जिनसे कि हम स्वस्थ रहें। हमें प्रकृति माता को जरूर धन्यवाद देना चाहिए।
2: जी,
3: लेकिन दुखद है कि प्रकृति हमारे स्वास्थ्य की जितनी चिंता करती है ना, उतनी प्रकृति

0: बेटे के स्वास्थ्य की चिंता हम नहीं करते।
1: तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी ये जानकारी, जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न।
0: तो आज का प्रश्न है, प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IBRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक,

0: इस नंबर है, और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है गर्मी।
1: ये कार्यक्रम गर्मी के मौसम की जानकारी देते हुए बताता है कि गर्मी के मौसम में हमें अपना ध्यान किस तरह से रखना चाहिए, और गर्मी के मौसम में पैदा होने वाली साग सब्जियाँ और फल कौन कौन से होते हैं जिनका हमें भरपूर सेवन करना चाहिए।
2: बहुत पुरानी बात है, दो बहनें थीं, सोना और रूपा। दोनों अपने माता पिता के साथ एक गांव में रहती थीं। गर्मी का मौसम था, दोनों बाग में खेल रही थीं।
3: अक्कर बक्कर बम्बी वो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा।
4: अब तेरी बारी है, तेरी।
5: अब मेरी तुम्हारी बारी, तुम सुना।
4: अच्छा ठीक है, मुझे तो कहानी आती है,
5: तो कहानी सुना दो भाई।
4: अच्छा ठीक है। गर्मी का दिन था, एक कौआ प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था। कौआ लाया कंकर, घड़े में डाले कंकर, पानी आया ऊपर, कौवे ने पिया पानी, खत्म हुई कहानी।
5: अच्छी कहानी थी भाई, कौवे ने तो पानी पी लिया, पर अब मुझे बहुत प्यास लग रही है।
4: हाँ, प्यास तो मुझे भी लग रही है। वो सामने घड़ा रखा है, चलो वहाँ चलकर देखते हैं।
5: हाँ चलो चलो, वहाँ चलो, पे पानी होगा।
4: चलते हैं।
2: सोना और रूपा ने घड़े का ढक्कन हटाकर देखा तो उसमें पानी था। दोनों बहुत खुश हुईं। रूपा पीने के लिए पानी निकाल ही रही थी कि तभी एक आवाज आई।
6: कौन है
5: दीदी?
6: कौन है
5: दीदी?
4: अम्मा जी, मैं हूँ सोना, और ये है मेरी बहन रूपा।
5: अम्मा जी, हमें बहुत प्यास लगी है,
4: हम थोड़ा पानी पी लें?
7: हाँ हाँ, क्यों नहीं, पी लो पानी। बच्चों पानी पी लो, ढक्कन ठीक से लगा देना। पी लिया पानी? प्यास बुझी?
5: हाँ, हाँ पर ठंडा पानी था।
4: लेकिन अम्मा, आप कौन है?
7: मैं एक मौसम हूँ। मेरे आने से तुम्हें बहुत प्यास लगती है और बहुत गर्मी भी लगती है, पर मैं अपने साथ तरह तरह के फल भी लाती हूँ, जैसे खरबूजा, तरबूज, खीरा, ककड़ी और भी बहुत सारी चीजें। अच्छा भला बताओ तो, मैं कौन हूँ?
5: कौन है आप?
7: नहीं समझे?
5: नहीं।
7: अच्छा, तो फिर ये पहेली सुनो।

0: लगनी शुरू हो जाती
1: शुरू हो
0: है।
1: जाती है। हाँ
0: अम्मा मुझे तो धूप में बहुत गर्मी लग रही है।
1: भाई मेरे मौसम में गर्मी तो लगती है। चलो ऐसा करते हैं, उस पेड़ की छाया में बैठते हैं, ठीक है?
0: हाँ चलो ना, चलते हैं।
2: चलो।
3: सोना और रूपा गर्मी अम्मा के साथ जाकर पेड़ की छाया में बैठ गईं। इतने में पेड़ से दो आम गिरे।
0: अरे ये क्या गिरा?
1: मैं देखती हूँ, तुम लोग यहीं बैठो।
3: वहां दो आम गिरे थे, बच्चे भी दो और आम भी दो, लेकिन अम्मा ने वो आम छिपा लिए।
2: अम्मा आप क्या छुपा रही हैं?
0: अम्मा ये आपके हाथ में क्या है?
1: मेरे ही मौसम का एक फल है।
0: दिखाओ ना।
1: दूंगी तुम्हें, दूंगी, पर पहले तुम्हें इसका नाम बताना पड़ेगा।
0: इसका नाम
1: सोचो। मेरे मौसम का सबसे स्वादिष्ट फल जो बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद है, खट्टा मीठा रसदार फल। सोचो।
0: स्वाद है,
2: पसंद है,
0: सबसे अच्छा भी है।
2: कौन सा फल है?
0: कौन सा फल?
1: नहीं समझी?
0: नहीं।
1: अच्छा तो फिर सुनो।

0: खा जलते हैं
1: और सारे दिन पानी भी पीते हैं।
2: ऐसा मौसम।
3: अब गर्मी अम्मा है।
4: बिल्कुल ठीक समझी। मैं गर्मी यानी गर्मी का मौसम ही तो हूँ।
3: गर्मी अम्मा, आप कब आती हैं पता ही नहीं चलता।
4: सीधी सी बात है, सर्दी जब जाने की तैयारी करती है, गर्म कपड़ों में तुम्हें गर्मी लगती है, तो बस समझ लो कि मेरा मौसम शुरू यानी यानी

0: झट से तुम बोलो ये क्या है, बोलो ना।
1: आ,
2: आ, तुम तो बड़ी समझदार हो।
3: आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, कुल्फी वाला बर्फ का गोला ले लो, चुस्की ले लो,
2: आइसक्रीम। बच्चों, मेरे मौसम में तुम लोग खूब आइसक्रीम खाते हो, बर्फ के गोले खाते हो, है ना, कुल्फी भी खाते हो ना। अरे तुम्हारा बस चले तो तुम दिन भर आइसक्रीम ही खाते रहो, है ना?
1: अरे कोई खाने को दे तब ना।
2: अरे लगता है बहुत तेज आंधी आने वाली है, तुम लोग जल्दी से घर चले जाओ। और हाँ, ये आम तो लेती जाओ।
1: लाओ अम्मा, लाओ अम्मा,
2: लो।
1: गर्मी अम्मा, आप बहुत अच्छी हैं।
2: तुम्हें मीठे मीठे आम जो खिलाती हूँ।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गर्मी, और श्रोताओं आइए अब चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर। और हमारा अगला कार्यक्रम है कारगिल की शौर्य गाथा।
1: ये कार्यक्रम कारगिल युद्ध से ठीक पहले की परिस्थितियों की जानकारी देता है और वर्णन करता है कि कारगिल युद्ध के दौरान विपरीत और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के होते हुए भी किस प्रकार से भारतीय सेना ने अपार धैर्य और शौर्य का प्रदर्शन करते हुए विजय की पताका फहराई।
2: मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। सुप्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई ये पंक्तियां कितनी जीवंतता से उन पराक्रमी युद्ध सैन्य महानायकों के प्रति असीम श्रद्धा की भावनाओं को जगाती है।
3: विजयश्री उन्हीं के लिए निर्धारित होती है जो कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय

0: के साथ अविचलित और अडिग खड़े रहते हैं। आज का कार्यक्रम हम श्रद्धा सहित समर्पित करते हैं उन पराक्रमी योद्धाओं को जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी।
1: जी हाँ, आज हम बात करेंगे कारगिल युद्ध की, जो नियंत्रण रेखा के पास जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये ऐसी पहली लड़ाई थी जिसे संचार माध्यमों के द्वारा निरंतर प्रसारित किया गया और परिणाम स्वरूप इस युद्ध का आंखों देखा हाल भारत की जनता के घर घर तक पहुंचाया गया।
2: What you heard right behind you was the sound of Bofors gun directly targeting the top of Tiger Hill, the prelude to the final assault.
3: We just had a shell land very close to us. I doubt if you were able to see anything.
0: देश के विभिन्न मीडिया चैनलों के माध्यम से पत्रकारों ने इस युद्ध का जीवंत रिपोर्टाज प्रस्तुत किया, जिसके कारण जनता द्वारा सेना को अपार समर्थन मिला और फलस्वरूप भारतीय सेना का मनोबल और अधिक बढ़ा, जिसने इतिहास रच दिया। एक ऐसा स्वर्णिम अध्याय जिसे आने वाली पीढ़ियां गर्व के साथ याद करेंगी। कारगिल का युद्ध 3 मई से 26 जुलाई 1999 तक लड़ा गया।

0: इस युद्ध को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से स्थल और वायु सेना द्वारा लड़ा गया। उल्लेखनीय है कि इस दौरान भारत की समुद्री सीमाओं पर भी भारतीय नौसेना ने शत्रुओं पर कड़ी निगरानी रखी।
1: दिन था 6 मई 1999 का। समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई पर दुर्गम बर्फीले पर्वतों के बीच एक भारतीय चौकी पर सैनिक मुस्तैदी से पहरा दे रहे थे।
2: बहुत ठंडी आज तो। वैसे भी ये एक ऐसी जगह है जहां लगता है कि हम दुनिया के किसी और ही कोने में हैं, है ना?
3: ठीक कहते हो तुम। अभी मई महीने में ही इतनी ठंड है तो पता नहीं सर्दियों में क्या हाल होता होगा।
2: वैसे तुम्हारी पोस्टिंग तो अभी हाल ही में हुई है ना? अरे मैंने तो यहाँ की 2 सर्दियां देख ली हैं।
3: जरा उधर देखो।
2: अब किधर?
3: वहां लगता है कोई इधर ही आ रहा है।
2: कोहरा काफी घना है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, इतना कह सकता हूँ मैं कि कोई सैनिक नहीं है। उसका पहनावा तो देखो।
3: पहनावे से तो कोई कबायली लगता है। लेकिन इधर क्यों आ रहा है? कोई जासूस तो नहीं? वार्निंग दो इसे।
2: आने दो।
4: ए! कौन हो तुम? रुको, जाओ वहीं रुक जाओ, रुको।
5: कौन हो तुम?
6: साहब मैं एक चरवाहा हूँ साहब, मुझे एक बहुत जरूरी सूचना देनी है। अपने बड़े साहब से मुझे मिलवाओ।
5: क्या सूचना?
6: साहब दुश्मनों के बारे में।
5: अच्छा, यहीं रुको। चलो, कमांडेंट साहब ने बुलाया तुम्हें।
6: नमस्कार सर, मेरा नाम ताशी नामग्याल है।
0: नमस्कार, कहो क्या कहना चाहते हो?
6: सर हम एक चरवाया है।
0: आगे बताओ।
6: सर ये 3 मई की बात है, कुछ दिनों पहले मेरा याक खो गया था। उसे खोजते हुए मैं पहाड़ों पर काफी ऊंचाई में चला गया था। एक ऊंची चट्टान पर खड़े होकर मैंने दूरबीन से नीचे देखा तो एक बड़ा अजीब सा नजारा मुझे दिखाई पड़ा।
0: क्या देखा तुमने?
6: साहब मैंने देखा कि पठानी कपड़ों में बहुत से लोग एक जगह पर जमा है।
0: क्या?
6: उनमें बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सैनिक भी हैं। वे बंकर खोद रहे थे और उनके पास

0: बहुत सारे हथियार भी थे। हाँ,
1: कितने लोग रहे होंगे?
0: शायद पूरी गिनती तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, इतना पक्का है कि वो बॉर्डर के उस पार से आए हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं।
1: ये तो बड़ी जरूरी बात बताई तुमने। हो सकता है कि हमें तुम्हारी फिर से जरूरत पड़े। तुम्हारा घर कहाँ है?
0: शायद मेरा गाँव है घरकोन। ये कारगिल शहर से 60 किलोमीटर दूर बटालिक शहर के पास है।
2: तो साथियों, इस स्थानीय सजग चरवाहे की सूचना से सेना सतर्क हो गई। जब सेना ने इस बात की छानबीन की तो बात सच निकली। उन्हें पता चला कि सीमा पार से बहुत बड़ी घुसपैठ हुई है।
3: सही स्थिति का अंदाजा लगाने के लिए भारतीय सेना ने मेजर सौरभ कालिया के नेतृत्व में एक गश्ती दल भेजा, लेकिन वो दल कभी वापस ही नहीं आया। 10 जून को पाकिस्तानी सेना ने उनके बुरी तरह से क्षत विक्षत शव वापस भेजे।
2: अब इस बात में कोई संदेह नहीं था कि पाकिस्तान द्वारा बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई थी। सेना द्वारा गहन जांच में पता चला कि मई 1999 की शुरुआत में ही पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा पार करके मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक क्षेत्रों में लगभग 4 से 8 किलोमीटर अंदर तक घुस आई थी और पाकिस्तानी सेना के लगभग 2000 से अधिक पैदल सैनिकों और कमांडो ने यहां अपनी चौकियां बना ली थी।
3: यद्यपि पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा कहा गया कि ये घुसपैठिए कश्मीरी स्वतंत्रता सेनानी हैं, लेकिन छापेमारी में पकड़े गए लोगों और हल्की गोलाबारी में मारे गए सैनिकों के पास मिले सारे दस्तावेजों ने साबित कर दिया कि ये काम पाकिस्तान के अलावा किसी और का नहीं था।
2: दरअसल पाकिस्तान का उद्देश्य था सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इन क्षेत्रों में अपनी सेना भेजकर श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर कब्जा करके लद्दाख को कश्मीर से अलग करना और कारगिल व सियाचिन पर कब्जा करना।
3: ये भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर सीधा प्रहार था और इसलिए भारत को बड़े पैमाने पर कारगिल में एक सैनिक अभियान प्रारंभ करना पड़ा, जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस सैन्य अभियान का नाम था ऑपरेशन विजय। भारतीय सेना समझ चुकी थी कि विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों में शत्रुओं से युद्ध करना एक बेहद कठिन और दुष्कर कार्य होगा। भारत सरकार द्वारा नियंत्रण रेखा को पार न करने के निर्णय ने भारतीय सेना के कई सामरिक विकल्पों पर अंकुश लगा दिया।
2: भारतीय सीमा में घुसे हुए पाकिस्तानी पूरी तरह से सुरक्षित और अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। उन्हें पहाड़ों की ऊंचाइयों पर होने का प्राकृतिक लाभ था, जबकि भारतीय सेना घाटी में खुले होने के कारण बेहद असुरक्षित थी। लेकिन युद्ध अवश्यम भावी था और भारतीय सेना ने युद्ध छेड़ दिया।
3: दिन में किए गए हमले खतरनाक हो सकते थे क्योंकि देख लिए जाने का जोखिम था, इसलिए भारतीय सेना द्वारा आक्रमण मुख्य रूप से रात को 0 डिग्री से भी कम तापमान में किए गए। सेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी समुद्र तल से 18,000 फीट की खड़ी चढ़ाई को चढ़ना।
4: साथियों, हमारे सामने जो सबसे बड़ी कठिनाई है वो है इन पहाड़ों की खड़ी चढ़ाई पर चढ़ना।
1: लेकिन सर, एक और बहुत बड़ा खतरा है और वो है दुश्मनों द्वारा देख लिए जाने का।
4: ठीक कहते हो, अगर हम चढ़ने की कोशिश भी करें तो वो बड़ी आसानी से हमें अपने निशाने पर ले सकते हैं।
5: जी सर, इसलिए दिन की रोशनी में आक्रमण करना बिल्कुल संभव नहीं है। हमारे पास मात्र रात को ही आक्रमण करने का विकल्प बचता है।
4: सही बात। सुनो, सब इधर आओ।
1: जी,
6: यस सर।
4: ये मेज के चारों ओर।
5: जी सर।
1: उधर से। हाँ।
4: जी, तुम्हें याद होगा कि अभी 3 दिन पहले हमारी वायुसेना के विमान इस क्षेत्र में आक्रमण करने आए थे।
1: जी सर।
4: वायुसेना ने हमले के दौरान इस क्षेत्र के चित्र भी खींचे हैं और उन्हें हमारे पास भेजा है।
1: जी सर।
4: इन चित्रों के आधार पर मैंने ये नक्शा बनाया है।
1: जी सर।
4: इस नक्शे के अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि दुश्मनों की चौकी जहां है उसकी विपरीत दिशा से हमें पर्वत पर चढ़ना होगा, यानी दाहिनी ओर से।
1: जी सर, आप ठीक कहते हैं सर। अब इस तरफ से सर।

0: यहाँ से पहाड़ की दाई ढाल भी ज्यादा कठिन है सर। दुश्मन सोच भी नहीं सकता कि हम इस तरफ से चढ़ भी सकते हैं।
1: बिल्कुल ठीक। तो साथियों,
2: यस सर,
1: अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मेरा अंदाजा है कि इस चढ़ाई में हमें कम से कम 5 घंटे तो लगेंगे। तो क्यों ना रात 11 बजे से इस अभियान को शुरू किया जाए।
0: जी जी सर।
1: चढ़ाई करने वाली हल्की रस्सियां तैयार कर ली जाएं। हथियारों में राइफल्स, हल्की मशीन गन और हथगोले होंगे।
0: सर, जी सर।
1: कोई शक?
0: नो सर।
1: बी प्रिपेयर्ड फॉर द मिशन।
2: यस सर।
0: सर, अब हम चोटी के बिल्कुल पास आ गए।
3: धीमे बोलो, धीमे।
0: जी,
3: उन्हें पता ना चल जाए।
0: जी सर।
3: चोटी पर पहुंचते ही हम सभी रेंगते हुए उनके तंबुओं की ओर बढ़ेंगे।
0: जी।
3: और हथियारों के साथ अपनी अपनी पोजीशन ले लेंगे।
0: ठीक है सर।
3: और फिर तुम विपरीत दिशा में एक हथगोला फेंकना।
0: जी सर। जी सर।
3: बम के फटने की आवाज सुनकर अपने तंबुओं से कुछ सैनिक बाहर जरूर निकलेंगे और तुम्हें उन पर फौरन फायरिंग करनी होगी।
0: जी सर।
3: ठीक है, आगे बढ़ो। बहुत धीरे, आवाज नहीं निकलनी जैसे। धीरे, बहुत धीरे,
0: धीरे।
3: तबे बहुत बस। अब हम चोटी पर आ गए हैं तो अब रेंगना शुरू करो।
0: रेंगेंगे। जी सर।
3: कोई भी उठकर नहीं चाहेगा, सब रेंगेंगे। आवाज नहीं, आवाज नहीं, नहीं। हर कोई अपनी पोजीशन ले ले।
0: हाँ सर। एवरीबॉडी रेडी?
3: यस सर।
0: यस सर।
3: अब हथगोला फेंको।
1: गुड। वो अपने बंकरों से बाहर आ रहे हैं।
2: फायर!

0: इस मिशन में भारतीय सेना को भारी सफलता मिली। दुश्मन के अधिकांश लोग मारे गए और कारगिल की इस चोटी पर भारतीय सेना ने अपना परचम लहरा दिया। ऑपरेशन विजय में भारतीय वायुसेना की बहुत ही अहम भूमिका रही। इस युद्ध में सामरिक महत्व के मुख्य क्षेत्र थे मुश्कोह, द्रास, काकसर और बटालिक।
1: भारतीय सेना ने एक अपूर्व गरिमामय इतिहास रच दिया था।
0: 3 मई से 26 जुलाई 1999 के बीच लड़ी गई इस लड़ाई में 25 सैनिक अधिकारियों और 436 जवानों की शहादत हुई। इसके अलावा 54 सैनिक अधिकारी और 629 जवान घायल हुए।
1: इस युद्ध में 2 सैनिक अधिकारियों और 2 जवानों को परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया। ये पराक्रमी योद्धा है कैप्टन विक्रम बत्रा, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, राइफलमैन संजय कुमार और ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव।
0: देश इन रणवीरों को उनके असीम शौर्य हेतु श्रद्धा से नमन करता है। कारगिल युद्ध की गौरवशाली विजय की स्मृति में 26 जुलाई को अब देश भर में विजय दिवस मनाया जाता है।
2: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुने थे शैक्षणिक कार्यक्रम उमंग। मिडवेव और FM बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 12:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत कार्यक्रम चैन।

नमस्कार, सुभ दुपहरिया। संगीत की नरम धुनों, एहसासों की गर्माहट और शब्दों की खूबसूरत खुशबू के साथ आप सभी श्रोताओं का दिल से स्वागत है। जिंदगी की भागती हुई राहों में कुछ पल ऐसे होने चाहिए जहां मन ठहर जाए, सांसें मुस्कुरा उठें और दिल को सुकून मिले, और इन्हीं लम्हों में से कुछ लम्हे आपके लिए लेकर आए हैं चैन कार्यक्रम में। मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त तरुण। आप सुन रहे हैं आपका बेहद पसंदीदा कार्यक्रम चैन, जहां हर बार हम चुनते हैं कोई एहसास, कोई याद, कोई बात जो सीधे दिल से निकलकर दिल तक पहुंच जाए। दोस्तों, आज चैन में मैंने मेरा चुनाव किया है उस अनमोल रत्न का जिसे हम हर पल अपने साथ रखते हैं पर अक्सर महसूस करना भूल जाते हैं। वो हैं हमारी सांसें।

कहते हैं कि इंसान अपनी पहली सांस के साथ इस दुनिया में आता है और आखिरी सांस के साथ इसे अलविदा कह देता है। लेकिन इन दो सिरों के बीच जो अनगिनत सांसें चलती रहती हैं, वहीं तो हमारी पूरी जिंदगी की दास्तान लिखती हैं। सांसें महज हवा का आना जाना नहीं है, ये तो रूह की वो सरगोशी है जो खामोशी में भी संगीत उत्पन्न कर देती है। जब दिल बेहद खुश होता है तो यही सांसें किसी मधुर धुन की तरह बहने लगती हैं, और जब मन उदास होता है तो यही सांसें एक ठंडी आह बनकर दिल का बोझ हल्का कर जाती हैं। सांसों का भी अपना एक व्याकरण होता है, अपनी एक लय, अपनी एक तहजीब होती है। यह हमें हर पल सिखाती है छोड़ना, क्योंकि जब तक पुरानी सांसें बाहर नहीं जाएंगी, नई ताजगी फिर नहीं आ सकती। जिंदगी भी तो कुछ ऐसी है ना, पुरानी तकलीफों को छोड़ देना और नई उम्मीदों को जगा देना। तो आइए दोस्तों, आज चैन के इस खूबसूरत सफर में भागती दौड़ती दुनिया से कुछ पल चुरा लेते हैं। अपनी आंखें हल्के से बंद कीजिए, एक गहरी और सुकून भरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि आप जिंदा हैं, आप खास हैं, आप अनमोल हैं, क्योंकि हमारी सांसें बेहद अनमोल हैं।

दोस्तों, आज चयन कार्यक्रम में हमने जिस शीर्षक को चुना है वो है हमारी सांसें। एक स्वस्थ व्यक्ति का एक दिन में लगभग 20,000 बार सांस लेता है। एक्सरसाइज इस प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाती है। इस पर और भी बातें हम करेंगे, लेकिन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: राहुल, तुम्हारी नई दुकान का कलेक्शन तो जबरदस्त है, पर दुकान में सन्नाटा क्यों है?
1: वही तो परेशानी है रिया, कपड़े तो बेस्ट हैं, पर पूरे अंबिकापुर को पता कैसे चले?
0: अरे तो शहर के सबसे बड़े लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करो ना, 230-600।
1: क्या 230-600?
0: हाँ, आकाशवाणी अंबिकापुर, यहाँ एक विज्ञापन और तुम्हारी दुकान पर ग्राहकों की लाइन।
1: पक्का?
0: हाँ, बस कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230-600। अब अपनी दुकान को बनाओ शहर की शान।
2: आकाशवाणी अंबिकापुर, सफलता की पक्की गूंज।
3: दोस्तों, जिंदगी की हर धड़कन का रिश्ता हमारी सांसों से जुड़ा है और अभी हम इन्हीं सांसों के रूहानी सफर की बातें कर रहे थे। लेकिन कभी आपने सोचा कि हमारी इन सांसों के पीछे विज्ञान क्या कहता है? कैसी अनदेखी सी लगती हुई प्रक्रिया हमारे पूरे शरीर को जिंदगी से भर देती है। जब हम दौड़ते हैं, कसरत करते हैं या तेज कदमों से आगे बढ़ते हैं, तब हमारे शरीर की कोशिकाएँ यानी सेल्स ज़्यादा ऑक्सीजन मांगने लगते हैं। तब हमारा दिल और हमारे फेफड़े एक शानदार टीम की तरह काम करते हैं। दिल तेजी से धड़कता है, फेफड़े गहरी सांसें लेने लगते हैं और पूरा शरीर जैसे ऊर्जा से भर उठता है। विज्ञान कहता है कि नियमित एक्सरसाइज हमारे फेफड़ों की क्षमता बढ़ाती है, शरीर को मजबूत बनाता है और इन मन को भी हल्का रखता है। यानी सिर्फ शरीर ही नहीं, हमारी सोच भी सांसों के साथ ताजगी महसूस करती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा जीवन संदेश छिपा हुआ है, लय का संदेश। अगर हम बिना रुके बहुत तेज गति से भागने लगते हैं तो हमारी सांसें उखड़ने लगती हैं। विज्ञान की भाषा में कहें तो शरीर में लैक्टिक एसिड जमा होने लगता है और हम जल्दी थक जाते हैं। लेकिन अगर हम सही रिदम पकड़ लें, धीरे संतुलित और लगातार चलते रहें, तो हम लंबी दूरी आसानी से तय कर लेते हैं। और यही तो जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच है। आज की दुनिया में हर कोई तेज भाग रहा है, कामयाबी, पहचान, मंजिल की तलाश में। लेकिन इस भागदौड़ में कई बार हमारी मानसिक और आत्मिक सांसें थकने लगती हैं, मन हांफने लगता है और सुकून कहीं पीछे छूट जाता है। इसलिए याद रखिए, कसरत हो, करियर हो या रिश्तों का सफर, तेजी से ज़्यादा ज़रूरी है लय। सांस फूलनी नहीं चाहिए, सांस खिलनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, आज चैन में हम खुद से एक खूबसूरत वादा करते हैं कि हम अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे, अपने सपनों के लिए मेहनत करेंगे, पसीना भी बहाएंगे, लेकिन अपनी जिंदगी की लय, अपना सुकून और अपनी मुस्कुराहट कभी खोने नहीं देंगे। तो चलिए, इन्हीं बातों के साथ सुनते हैं ये गीत।

0: अरे यार, ये रेडियो को क्या हुआ? आवाज साफ ही नहीं आ रही। ये खर खर की आवाज कैसी है?
1: अरे बुद्धू, एंटीना नहीं, अपना अंदाज बदलो। अब अंबिकापुर रेडियो पुरानी यादों से निकलकर आपके कानों में जादू करने आ गया है।
0: मतलब
1: अब आकाशवाणी अंबिकापुर सुनिए 100.2 FM पर।
2: यहाँ के हम सिकंदर, चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, पर हमसे पंगा मत लेना मेरी जान।
0: अरे वाह, ये तो एकदम साफ है, जैसे कोई कान में गा रहा हो।
1: यही तो है FM 100.2 की स्टीरियो क्वालिटी। अब सुबह की भक्ति हो या शाम के गाने, आवाज मिलेगी बिल्कुल मक्खन जैसी साफ।
3: अच्छा, तो अभी ट्यून करता हूँ
4: आकाशवाणी अंबिकापुर 100.2 FM। आवाज वही, अंदाज नया।

दोस्तों अभी हमने जाना कि किस तरह विज्ञान हमारी सांसों की रफ्तार को कसरत और शरीर की ऊर्जा से जोड़ता है, लेकिन जब बात आती है सांसों की लय को समझने की तो भारत की प्राचीन विरासत प्राणायाम से बेहतर उदाहरण शायद ही कोई हो। प्राणायाम सिर्फ एक योग क्रिया नहीं बल्कि अपने भीतर की शांति से जुड़ने का एक सुंदर माध्यम है। प्राण यानी जीवन देने वाली सांसें और आयम यानी उन्हें सही दिशा और संतुलन देना। जब हम तेज भागते हैं तो सांसें बिखरने लगती हैं, लेकिन जब हम शांत होकर अनुलोम विलोम भामरी या गहरी सांस का अभ्यास करते हैं तो हम अपनी सांसों को एक मधुर अनुशासन सिखाते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि अब विज्ञान भी वही कह रहा है जो हमारी प्राचीन परंपराएं सदियों से कहती आई हैं। शोध बताते हैं कि जो लोग अपनी सांसों पर नियंत्रण करना सीख लेते हैं उनका तनाव कम होता है, मन शांत रहता है और ब्लड प्रेशर भी संतुलित बना रहता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई संगीतकार अपने साज के तारों को ना तो बहुत कसता है और ना बहुत ढीला छोड़ता है, क्योंकि बहुत कसाव तार तोड़ देते हैं और बहुत ढीलापन सुर छीन लेते हैं। जिंदगी भी कुछ ऐसी है दोस्तों, हमें अपनी भागदौड़, अपनी मेहनत और अपनी सांसों के बीच एक सुंदर संतुलन बनाना होता है। चाहे आप जिम में पसीना बहा रहे हों या सुबह की ताजी हवा में टहल रहे हों, एक पल के लिए अपनी सांसों की लय को

महसूस कीजिए, उन्हें उखड़ने मत दीजिए, उन्हें बहने दीजिए, क्योंकि जब सांसें संतुलित होती हैं तभी विचार भी संतुलित होते हैं, और जब विचार संतुलित होते हैं तब जिंदगी सचमुच खूबसूरत लगने लगती है, जैसे इस गीत में कुछ ऐसा ही कुछ कहा गया है। तो दोस्तों, आंखें बंद कीजिए, एक लंबी गहरी और सुकून भरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि जिंदगी अभी भी कितनी हसीन है, कितनी जीवंत है।

0: साथियों, समय की कमी के कारण ये गीत हम आपको पूरा नहीं सुनवा पा रहे हैं, जिसके लिए हमें खेद है। आज चयन कार्यक्रम में हमने जिन फिल्मों के गीत शामिल किए वो इस प्रकार हैं, और प्यार हो गया, जीत और आशिकी। इन फिल्मों में गायक कलाकार इस प्रकार थे, उदित नारायण, सोनू निगम, अलका याग्निक, कुमार सानू। आज चयन कार्यक्रम में शीर्षक था सांसें। मिडवेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन का एक बजने वाला है, कुछ ही पलों में हिंदी समाचार दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात यूएई पहुंच गए हैं। वहां पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री ने आज संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर विशेष ध्यान दिया गया। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति में आई बाधाओं के मद्देनजर ये चर्चाएं हो रही हैं और दोनों

0: पक्षों द्वारा तेल भंडार तथा गैस आपूर्ति व्यवस्था पर चर्चा किए जाने की उम्मीद है। यात्रा से पहले संयुक्त अरब अमीरात सरकार में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रिम बिन इब्राहिम अल हाशमी ने प्रधानमंत्री मोदी को संयुक्त अरब अमीरात में एक सम्मानित व्यक्ति बताया। प्रधानमंत्री मोदी अगले चरण में नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली भी जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। उन्होंने आपसी हित के द्विपक्षीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराक्ची की भागीदारी की सराहना भी की। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी गैस की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की है। कीमती धातुओं पर आयात शुल्क बढ़ाने के बाद सरकार ने अब अग्रिम प्राधिकार योजना के अंतर्गत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय कर दी है। पहले इस योजना के तहत सोने के आयात की कोई सीमा नहीं थी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है।
1: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने त्वरित एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंचाएगा।
0: श्री प्रधान ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी तरह की अनियमितताओं को रोकने के लिए परीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत सुधारित और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल जरूरत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कूचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 250 अंक बढ़कर 75,649 पर, जबकि निफ्टी 81 अंक की वृद्धि के साथ 23,770 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अभी हिंदी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जा रहे थे। मिडवेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 1:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए खेती की बात का पुनः प्रसारण। जानकारी का विषय है नाशपाती की खेती।
3: भारत में शीतोष्ण फल में सेब के बाद नाशपाती का दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है। बृहद जलवायु व मृदा अनुकूलता के कारण यह शीतोष्ण के अलावा समशीतोष्ण जलवायु में भी सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। नाशपाती की खेती छत्तीसगढ़ के उत्तरी पहाड़ क्षेत्र जैसे बलरामपुर, जसपुर, सरगुजा के पहाड़ी क्षेत्रों में भी वर्षों से हो रही है। बलरामपुर के शंकरगढ़ में कुसमी विकासखंड में इसकी खेती की प्रबल संभावनाएँ

बलरामपुर के चांगरो गांव में 25 वर्षों से नाशपाती की खेती हो रही है। कुसमी के नटवरपुर उद्यान नर्सरी में 10 एकड़ में नाशपाती का बगीचा विकसित किया जा चुका है। बलरामपुर रामानुजगंज जिले के कुसमी एवं शंकरगढ़ विकासखंड की जलवायु नाशपाती की समशीतोष्ण प्रजातियों के लिए काफ़ी उपयुक्त है। जिले के डीपाडी, चांगरो, अयारी, जोकापाट, लहसुनपाट, सामरीपाट, कुसमी, जिगनिया आदि क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता युक्त नाशपाती का उत्पादन किया जा सकता है। विगत कई वर्षों से इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय व कृषि विज्ञान केंद्र बलरामपुर द्वारा प्रशिक्षण देकर किसानों को समय पर नाशपाती के पौधों को खाद, उर्वरक प्रबंधन एवं अन्य तकनीकी जानकारी देकर नाशपाती की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। नाशपाती की प्रमुख प्रजातियों में मध्यम निम्न पहाड़ी व घाटी क्षेत्रों के लिए पत्थरनख, कैफर, चाइना नाशपाती, गोला लिकोंटे प्रजाति अनुशंसित की गई।

0: पौधों को खाद, उर्वरक प्रबंधन एवं अन्य तकनीकी जानकारी देकर नाशपाती की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। नाशपाती की प्रमुख प्रजातियों में मध्यम निम्न पहाड़ी व घाटी क्षेत्रों के लिए पत्थरनख, कैफर, चाइना नाशपाती, गोला लिकोंटे प्रजाति अनुशंसित की गई हैं। नाशपाती में सांकुर डाली के रूप में सामान्यतः कैथ व सियरा के पौधे उपयोग में लाए जाते हैं। पंजाब में जंगली नाशपाती के जड़ सकर भी सांकुर डाली के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। उत्तर भारत के मैदानी भागों में पत्थरनख प्रजाति कलम भी पौधे परिवर्तन सांकुर डाली के रूप में प्रयोग में लाए जा रहे हैं। अच्छी फसल वाले नाशपाती वृक्ष के नए वृद्धि वाले प्रदोह से सांकुर डाली तैयार किया जाता है। इन प्ररोहों को वृक्ष से अलग करके इसे सौ हार्मोन से उपचारित किया जाता है और 24 घंटे के लिए नम बालू में रखकर इसे उपचारित किया जाता है। इसके पश्चात इन्हें नर्सरी में रोप दिया जाता है। इसके बाद में बडिंग या ग्राफ्टिंग किया जाता है। नाशपाती के पौधों में सामान्यतः अप्रैल सितंबर के मध्य टी बडिंग या दिसंबर जनवरी में जिह्वा ग्राफ्टिंग किया जाता है। नाशपाती की जलवायु अनुकूलता बृहद है। इसकी खेती 26 डिग्री से 45 डिग्री तापमान पर किया जा सकता है। नाशपाती के अधिकांश प्रजातियों को 1200 घंटे के लगभग 7 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान उसकी चिलिंग आवश्यकता पूरी करने के लिए आवश्यक होती है, जबकि कुछ प्रजातियां जैसे पत्थरनख को मात्र 150 घंटे की चिलिंग तापमान की आवश्यकता होती है। यह प्रजाति छत्तीसगढ़ में अपनाने के लिए काफ़ी उत्तम है। इसके अलावा मध्यम चिलिंग आवश्यकता वाली कुछ अन्य किस्में हैं, जिसमें जी कोंटे, कैफर, प्लाइन एप्पल, हुड, गोला प्रजाति भी यहाँ ली जा सकती है। ये प्रजातियाँ ग्रीष्मकाल में उच्च ताप व गर्म हवा को भी सहन कर सकती हैं। नाशपाती का उत्पादन गहरी उचित जल निकासी वाली उपजाऊ मध्यम संरचना वाली तुलनात्मक रूप से अधिक क्ले वाली मृदाओं में अच्छा होता है। यह गीली जमीन के लिए तुलनात्मक रूप से सहनशील है, जबकि यह सूखे की स्थिति को सहन नहीं कर सकती। यह भारी व अधिक जल भराव एवं कम मृदाओं में भी अच्छी तरह हो सकती है। पौधे लगाने के तुरंत बाद पौधों के चारों ओर थाला बना देना चाहिए और पानी देना चाहिए। पौधे के तने के पास मिट्टी ऊंची रखनी चाहिए ताकि तना पानी के संपर्क में ना आ सके। खाद उर्वरक की बात करें तो 10 वर्ष के पौधे में 60 से 100 किलोग्राम गोबर खाद, 700 ग्राम नाइट्रोजन, 350 ग्राम फास्फोरस, 700 ग्राम पोटास प्रति पौधा डालना चाहिए। गोबर खाद, फास्फोरस और पोटास दिसंबर के पहले डालना चाहिए। नाइट्रोजन की आधी मात्रा फल लगने के तुरंत बाद देना चाहिए। जिंक और आयरन की कमी होने पर इसकी निर्धारित मात्रा जिंक सल्फेट अप्रैल माह में देना चाहिए। इस समय पौधे लगाने का समय है। किसान भाई इस समय नाशपाती के पौधे लगा सकते हैं ताकि इसका अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे।
1: अभी आप सुन रहे थे नाशपाती की खेती विषय पर खेती की बात। ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 1:10 हुए हैं। ग्रामीण महिलाएं सुने अपना मनपसंद कार्यक्रम घर गोसाइन।

अगर रोग राय धर लेता है और अभी की बीमारी ला कही है कि ऐसा मेहमान का सो जाए नहीं कि आए के बाद जाए के नामे नहीं ले हेल। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि ये मेहमान ला हमला ढूकेच नहीं देना है नहीं, काहे कि अगर अपन स्वास्थ्य के तिहार नहीं करिया वो अपन अगर बीमार पड़ जाता तो गोटा परिवार हर हलाकान हो जाता है, चाहे सियान मन रहें चाहे लड़का मन रहें, सबो चीज हर जम्मो काम मन हर जम्मो चीज हर सब चीज हर प्रभावित होल। तेकर बर जरूरी है बहनी हो कि अपन खान पान ला बढ़िया कन रखी, अपन स्वास्थ्य का तिहा करी, अब भाई घामा से बाँच के रही, काम बुता तो होते रही लेकिन संगे संगे अपन सेहत के भी हमन ला ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखी कथन है कि भाई अगर सेहत हर बढ़िया रहे मन हर चंगा रहे तो भाई काम बुता करे में भी मन लगे ना, और अगर हमारे सेहत हर खराब है तो भाई मन भी बढ़िया करने लगी, और घर में अगर सियान मना है लड़का मना है तो भाई उमन के भी तिहा जतन करना हम ही मन ला है, तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी बहुत रहे। तेकर बर जरूरी है बहनी हो कि अपन तिहा करी, और देखी ये समय में लड़का मन के छुट्टी चलाता है, लड़का मन घरे आ है, सियान मन भी घामा में कहूँ जग नहीं निकले सकता है, कहे कि घामा हर अतिक माना है नहीं कि चिरई चिरगुन जम्मो चीज हर कहिया के हलाकान होता है। तो जब घर में सब परिवार मन रहते हैं तो देखिए एक कति तो बहुत अच्छा भी लगे, दूसर कति लड़का मन बड़ा परेशान करते हैं, अब ये समय में उमन के रिकिम रिकिम के फरमाइश रहे कि भाई मोला खेले जाए पर दे, अब गाँव के हमारे लड़का मन तो कहिया कि मानबे नहीं करी कहे कि आमा फरीसा है, अब घामा में निकल ही भूल भूल के ओदे पखना मन में टुकुआ टुकुआ के आमा मनला बीजते हैं, लेकिन सच कहिया बहनी हो वो आमा मनला बीज के लानते हैं तो तू मन भीतरे भीतर जरूर खुश होते हैं लेकिन नहीं चल रहे आज आमा के पाना बनाबो चटनी बनाबो, तो देखिए आमा हर मन बहुत उपयोग भी यह है, लेकिन लड़का मनला मना करी चढ़ी कि भाई घामा में मत भूले या वो आमा मनला मत पीछे भर जाही मांग के लानी चोरी झिन करे, चोरी के अपन मजा भी है लेकिन फिर भी मना करत हो कि लड़का मनला जरूर समझाइए। देखिए बहनी हो आज एक विशेष दिवस भी है जला कहते हैं विश्व परिवार दिवस, और ये 15 मई के मनाल जाए जेकर उद्देश्य है कि हमन ला परिवार के महत्व ला गोटा झंडा जम्मो मन से मनला भी समझाना है, सब ला मालूम होना चाहिए कि परिवार होना कतेक मान जरूरी है और कितना महत्व है। पुराना समय में हमार जो संयुक्त परिवार रहते रहे सब एक घर में एक ही अंगना में रहते रहे, लेकिन आज वर्तमान में हमन देखा थी कि एकल परिवार कर ज़्यादा महत्व हो जाता है। बेनी हो ये जो हमार अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस जो हमन मनाती ना एकर शुरुआत 1993 में ला राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र महासभा में घोषित करल गया रहीस और 1994 से मनाल जाए लगीस, और इमें एकर उद्देश्य जो है वो यही है कि समाज में जो परिवार के बदलत समाज में आज जो चुनौती है ओला ध्यान दिलाना है। संगे संगे देखी मौसम का जो परिवर्तन है और जो अभी का डिजिटल युग में ऐसे समय में परिवार कैसन चलता है, गरीबी उन्मूलन पर का हो लड़का मन कर पालन पोषण पर क्या है, जम्मू चीज कर एक जो थीम रहे लो में लेके ये परिवार दिवस ला मनाती। देखिए हमन ला कोई भी दिवस मनाए के जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, मैं तो यही कहूँ कि हर परिवार में हमन ला संयुक्त परिवार के जब मैं गोट करता हूँ तो एक बात सोच के देखिए कब कब लगे ना कि संयुक्त परिवार रिश तो कितना बढ़िया रिश, हमार दादा काका बड़ा जम्मो झन एक जगह रहत रहें, लड़का मन जो है वो सियान मन संगे उलझे रहें, उमन ला बहिरे जाए के जरूरत नहीं पड़त रहीस, कहानी सुनता है चाहे गोट बात करता है, काम मन जो रहीस वो भी बटल रहत रहीस कि भाई फलाना हर एक काम ला कर लेते हैं चिलाना हर एक काम ला कर लेते हैं, तो ऐसे काम हर भी बढ़ जात रहीस, आय के साधन भी कम होए के बाद भी बड़ा सहजता से चलत रहीस, तो जो संयुक्त परिवार है आज धीरे धीरे टूटत जाता है। और सबसे बड़ा चीज़ है कि नैतिक पतन होते हैं, आज हमारे परिवार में दिखे नहीं कि भले छोटा परिवार भी रही वो में नैतिकता नहीं है, सब कोई अपन पन में व्यस्त हैं, और जितना हमार जो लड़का मना है उमन में भी आज के समय में देखब कि संस्कार नहीं है, कहते ना कि हमन कतको भाई बोल ली लेकिन अगर घर में एक ठन सियान नहीं है तो कहिया कि वो परिवार हर जो है वो पूर्ण नहीं है, कहे कि घर के सियान मनला भी हमार सरगुजिया में एक कहावत कहते हैं कि सियान्हा मन के बात 60 बच्छर के साथ, जो सियान्या मन रहते ना जो सियान मन हमारे रहते उमन अगर कोई गोट ला कहता है तो उमन कर जग जो है उमन के 60 साल के एक अनुभव रहेल, 60 साल के अनुभव से अपन वो बात ला तुमन ला बताते हैं, और हमन का करते तय काले कस बैठ न तोला का लेना है कोई भी परेशानी रहे के बाद, अक्सर मैं घर में देखता हूँ भाई अक्सर ये होल और जगह जगह कहते क्या रे बिना मतलब के गोट बात कर रहे थे, लेकिन देखिए कि सियान मन के जग जो रहते ना अगर हमारे बड़ा समस्या और उनकर जगह बैठ जाइए ना कि भाई अगर पूछ लिया कि भाई मुझे ये समस्या होते कैसे करो और उमन जो गोटला बताएं तो तुमके लगी ना कि कितना छोटे कन बात रही और कितना सहजता से बता दें और बार हम लकान होते रहें, तो मोर कहना अतके चाहें कि भाई ये समय में हमन ला अपन सियान मन के सम्मान करना और हमन जो सम्मान करब ना वही ला हमार लड़का मन भी देखते हैं, और जब वही लड़का मन जो है उमन में जो संस्कार पड़ेल आगे जाकर वही परिवार ला चलाए में भी काम आएल और वो
जैसा आज हमन अपन सियान मन संगे जो है व्यवहार करती बात करती हमला जैसा सम्मान देती आगे हमू मनला वही सब चीज़ भेटाई।

घर गोसाइन कार्यक्रम सुने वाला जम्मू बहनी मनला संगी मनला किस्मतिया बहन के राम राम जय जोहार। बहनी हो उम्मीद करत हूँ आप मन बने बने हुई है। अब भाई मैं तो एकदम हलाकान हो के आए हूँ, कहिया कि चटने घाम हर लगता है नी, और बिहनिया से लेके कहिया कि सांस तक घाम हर अधिक मान रोसाता है नहीं कि का कहिया जी उर हलाकान हो जाता है। और एक में भाई काम होता भी अपन अपन जब पे संगे संगे देखिए अपने स्वास्थ्य का तीहा करना भी बहुत जरूरी है। कहे कि बहनी मना अगर अपन स्वास्थ्य के तीहा नहीं करी तो मान के चली कि भाई

0: आज के वर्तमान में मैं एक चीज़ लाऊ कहूँ, चाहे आप मतलब बुरा लगे चाहे भला लगे, लेकिन सच्ची बात है कि वर्तमान में भी ऐसा चलत है ना कि हर परिवार में देखे वरिषा बेटायल कि जियत दाऊ संगे दंगी दंगा और मरे बात पहुँचावे गंगा, है कि नहीं? है सच कही है, भले बुरा लगी तो लगे लेकिन गोठ हर सच्चा है। कहे के मतलब ये है कि जियत रहे भर हमन ला अपन सियान मनकर सम्मान करना है, घर के जो पुरखा मन है उमन जग गोठ बात करना है, लैका मन ला उमन के संगे बैठाना है। खाली कोई भी जो सियान रहते ना ओकर उम्र हर घटत जाए, उमन जग गोठ बात करना चाहिए। उमन जब जैसे जैसे उम्र बढ़ेल ना उमन के जो है अकेलापन महसूस करते, हमन ला अकेला नहीं होने देना है उमन ला। उमन जग गोठ बात करिए ना तब पता चले कि हमार जग कई ठो ऐसा चीज़ है जेकर के ज्ञान नहीं है और उमन जग भरल पड़ल है। तो बैठी उमन जग गोठ बात करी, देखिए नगदे कर मोरजा गोठ बात है और चझे गोट करू, लेकिन चटिक संदेश मना है तो लगी चली ओला सुन ले थी।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे
2: सो इजी
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: हाँ तो देखिए संदेश मनला भी सुने ना, मुख्य लगत है कि भाई परिवार का गोड़ बात हुआ था है तो ऐसने एक ठन चुटकी काटत आप मन भर गीत भी हो जाना चाहिए, तो लेगी चली गीत ला भी सुन ले आती।

भाटो का है या भैया कोनो नहीं है गा हमरो।

हमरो पूछैया भैया कोनो नहीं है गा के तार यादव कर गाल सुगर अकन छत्तीसगढ़ी गीत ला सुना। अब देखी बहनी हो यही गीत में हमन अजय सुने नहीं कि कहते कि हमरो पूछैया भैया कोने कहाँ ले रही। जब ले हमन अगर अपन परिवार ला ले के नहीं चलब, परिवार के संग में नहीं चलब, तो भाई पूछवैया कोई नहीं मिली। तो अकेला नहीं रहना है, परिवार ला संगे लेके चलना है और लेका बच्चा मन लब यही संस्कार देना है कि परिवार ला लेके चलना है। कहते ना कि अकेला चना भार नहीं फोड़ सके, तो भाई कोशिश यही करना है कि हमन ला अपन परिवार ला लेके समाज ला लेके चलना है। बहनियों देखी आज शुभ दिन है और हमार धरोहर कार्यक्रम भी रहेल और जैमे हमन आपमन बर लान थी पर्यटन स्थल चाहे छत्तीसगढ़ के धार्मिक स्थल रिकिम रिकिम जगह का रिकिम रिकिम गोटमन ला लेके आती है। बता थी एक छोटा सा जानकारी जैमे कि भाई आप मन ला पता चले कि कौन चीज़ हर कहाँ जगह है। तो देखिए आज मैं लाने हूँ हमारे छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिला में स्थित है लमगांव का हनुमान मंदिर। और भाई कहते हैं कि ये अपन चमत्कारिक मान्यता के लिए प्रसिद्ध भी है। संगे संगे एक सबसे जो रोचक और प्रमुख बात ये है ना कि ये जो है 80 वर्ष पूर्व कथे भई। अब देखिए लोक कथा है, लोक कथा है, लोग मन सुनते हैं और लोग जैसा बोलते हैं ये कहानियाँ प्रचलित रहे। तो भाई स्थानीय मान्यता के अनुसार लोग मन जैसा बोलते हैं कि 80 वर्ष पूर्व जब एक ठन कोई व्यक्ति रहीस ओकर सपना में बार बार वाला संकेत मिलत रहीस कि एक ठन पेड़ के अंदर में हनुमान जी के प्रतिमा है और फंसल है। और जब वो पेड़ कर ऊपर हिंसाला काटल गईस तो ओ में से बजरंग बली की प्रतिमा हर निकलिस और बाद में ओकर भव्य निर्माण करल गईस। और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि ये प्रतिमा हर लगातार बढ़ाता है और एवे एकर जो पुजारी मना है तेमन भी कहते हैं कि ये पहले 1 फीट छोटा रहीस अब बढ़त बढ़त 3.5 फीट से भी अधिक ऊंचा हो गई सा है। बहनी हो ये हर जो है हमार अंबिकापुर मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर जो है लमगांव गांव में स्थित है। और यहाँ जाए पर हमला जो है भाई अपन अपन व्यवस्था से जा सकते हैं। नेशनल हाईवे के किनारे है लुंड्रा विकासखंड लमगांव है नी। अब देखिए यहाँ का और खास बात यह है कि यहाँ जो है 24 घंटा अखंड रामायण के पाठ चले और अखंड ज्योति भी जलत रहे। मतलब आज तक 2002 से अनवरत जो है रामचरितमानस के पाठ चलत है। और बारी बारी से जो यहाँ के पुजारी मना है यहाँ 3-3 घंटा के शिफ्ट में बैठ करके पूजा करते हैं। विशेष मान्यता ये भी है कि शनिवार के दिन और मंगलवार के दिन यहाँ भारी

रहेल और लोग बाग मन अपन मानता ला लेके आते हैं हनुमान जी के दर्शन करके और अच्छा मन से जो भी अपन मन्नत मांगत हैं और पूरा होल। समय समय पर यहाँ कहिया कि मेला वाला के आयोजन भी होत रहेल और दुनिया दुनिया से लोग मनाते हैं और हनुमान जी के दर्शन ला करते हैं। देखिए आस्था और विश्वास जहाँ पे है ना वहाँ पे सब चीज़ संभव है और लोग मन कर देखिए मानता हर पूरा भी हो जाए और जब मानता पूरा हो जाए तो भाई देखिए धीरे धीरे प्रसिद्धि भी फैलता है और दुनिया दुनिया से लोग मनाते हैं और आकर के हनुमान जी के दर्शन ला कराता है। तो अगर आप मन भाई कोनो कोनो हमारे भैया बहनी मन गए भी हो ही तो भाई चिट्ठी पत्री में जरूर लिख के बताइए कि कौन कौन घूमे हैं और जे मन नहीं घूमे हैं ते मन भाई जरूर आई और आके यहाँ के हनुमान जी के दर्शन करके जाई। और देखिए छोटा सा जानकारी लाने रहना आप मन भर हमार धरोहर के अंतर्गत। अब लेके चलिए एक ठन गीत ला और सुन लेती भोजपुरी गीता है।

हाँ तो देखी भोजपुरी गीत सुनैन रामलोचन यादव कर गाल रहीस बहनी हो देखी गोट करत हैं हमन गर्मी कर है नी। और गर्मी में जितका कन बोलते भाई कि खान पान हमन कर जो है वो बढ़िया कर रहना चाहिए, उतके मान साफ सफाई रहना भी बहुत जरूरी है। अब देखी गांव घर में क्या करते हैं हमार बहनी मन भाई अड़बड़ गर्मता है तो दसना में ला जो है भुइया में बिछाए के सूत थे और भुइया में मान के चली भाई हमन ला गर्मत है, बाकी वो जीव जंतु मन ला भी गर्मत है जे मन की भाई भूलत रहते हैं। और अगर हमारे घर में अगर साफ सफाई नहीं है कहूँ कहूँ जग भाई कपड़ा मन ला भाड़ा बर्तन मन ला गाँच के रखे है तो मान के चले कि ढूक के में बैठ भी सकत है। बहनी मन तुम्हें हम मोर इशारा ला समझत हुई है भाई मैं कहता हूँ कि भाई लमडोरवा यानी सांप चाहे बिच्छू मन ला कहता हूँ मैं भाई हर जीव ला गर्मी लगता है और वह हर हवा खाए पर बहरे निकल सकता है और अगर हमन उमन के डगर में आप तो भाई भुगतना भी पड़ सकता है। तो देखिए कोशिश ये करी कि पहले तो साफ सफाई रखना है, दूसरी चीज़ है कि बचाव करी और एकर बर ये है कि भाई देखिए अपन भुइया में जीन सूता आप मन जो है खटिया में लसाए के सोती है और बिस्तर मन ला भी रोज झाड़ना है। काहे कि देखिए पहले जो हमारे सियान मन कहत रहे नहीं कि खटिया ला जो सांप है और भसुर माने नहीं चढ़े लेकिन बहनी हो अभी जितना केस सम्मान सुने पर भेटाते नहीं सब में सांप और खटिया में चढ़े इसके काटता है और जीव भर चल जाता है। तो देखिए खटिया में सूतना है और बिस्तर ला झाड़ के सोना है, आसपास साफ सफाई रखना है। दूसरी चीज कि देखिए जो मच्छर मना है ये समय में मच्छर भी भाई नगदे करना है और अगर हम मच्छरदानी के प्रयोग नहीं कर रहे थी तो रात भर तो कहिए कि कान में लान लान के भुनभुनाए के जो गीत मन ला सुनाई तो आप मन सूते भी नहीं पाइया। और दूसरी चीज चाभी तो भाई जिसने बरखा बरसी नहीं ते गनी अगर मलेरिया हो जाए तो जी घर हला कानावरेच हो जाए। तो कोशिश भी ये करी कि मच्छरदानी लगाए कि खटिया में बिस्तर मनला झाड़ के अपना भी सुतना है और लैका मनला भी सुताना है और सियान मनकर विशेष दिया करी। बहनी हो पानी ये समय में हमला भरपूर पीना है, कोशिश करी कि साफ पानी के प्रयोग करी और जो सियान मना है उमन ला भाई एकदम से ठंडा पानी मत पियाई। देखिए घड़ा के पानी ठीक है लेकिन फ्रिज मन के पानी के उपयोग मत करी। अब तो हमारे गांव घर में जम्मू जगह जो कहिया कि भाई सब सुविधा उपलब्ध होगी सा है तो बहनी मन फ्रिज भी रखी ना है और भाई आनी बानी के बर्फ मन ला भी जमाए जमाए के खाते हैं और शरबत मन ला बना बनाए के पीते हैं लेकिन बहनी वो प्रकृति से जुड़ के रहना अपन एक अलग ही होकर जो है कहिया कि लाभ मिले हमन ला हर चीज कर। देखिए प्रकृति से जो व्यक्ति जुड़ी सा है ओला कभी भी स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी नहीं हो सकता है। तो ये समय में देखिए पानी के प्रयोग करना है, रसदार फल के प्रयोग करना है भाई तरबूज खीरा ककड़ी मनाता है आप मनोकर उपयोग करी। संगे संगे मैं तो ये भी कहूँ कि आम कर पाना होगी जे कि देखिए लू नहीं मारी हूँ मैं, प्याज कर उपयोग हो गई, सलाद के प्रयोग लेका मनला भी करवाना है, सियान मनला भी देना और अपन मन भी करना है, घामा से बच के रहना है और खान पान बढ़िया से रखना है, साफ पानी के प्रयोग करना है। तो देखिए छोटा छोटा गोट रहीस आप मन जग होइस और मुके लगता है कि मुके बताए की जरूरत नहीं है हमारे बहनी मन जरूर ये सब चीज़ के उपयोग करते हैं। और सबसे बड़ा चीज लेका मनला बाहर के जो पोंपो बजे वाला जो बर्फ रह नहीं कि लेकिन मन जहाँ बजे तहाँ कूदे लगते हैं ओकर से बचा के रखी। बहुत सारा रासायनिक चीज़ डाल डाल के आजकल लेके आ जाते हैं गांव में बेचे और लेकिन मन जीत करते हैं तो देखिए ओकर बर मना करी। अब थोड़कुन बेरा बची से एक ठन गीता हुआ है लेकिन चली सुना थी।

0: हाँ तो देखी सरगुजिया गीत ला भी सुनेन और बहनी हो देखी बेरा हर एकदम होगी सा है। तो भाई आप मनला मैं यही कहूँ कि बढ़िया कन अपन स्वास्थ्य के तीहा जतन करी और किस्मतिया बहनला दी विदा, आने दिन फिर भेटाऊँ, राम राम।
1: घर गोसाइन कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। मिडवेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 1:40 हुए हैं। लीजिए सुनिए ईमेल की गूंज कार्यक्रम।

नमस्ते, सुबह दोपहरिया और छत्तीसगढ़िया, जय जोहार। पल पल बदलते इन खूबसूरत लम्हों में हम लेकर आए हैं कुछ अनमोल एहसास, कुछ प्यारी प्यारी बातें और आपका अपना कार्यक्रम ईमेल की गूंज। कार्यक्रम सच चुका है आपके नामों से, आपकी पसंद से और आपके भेजे हुए उन प्यारे ईमेल से जिनमें सच्चा अपनापन बसता है। सच कहूँ तो जब भी इस कार्यक्रम में मैं आता हूँ ना, तो मन में एक खुशी आ ही जाती है क्योंकि यहाँ नाम आपका होता है, पसंद आपकी होती है और उन्हीं पसंद के गीतों के साथ दिल से जुड़ा होता है मेरा अंदाज। आप अपने एहसास ईमेल के जरिए हम तक पहुंचाते हैं और हम उन भावनाओं को पूरे स्नेह से महसूस करते हैं। आप भले ही हमसे दूर हों, लेकिन आपकी बातें, आपके शहर का नाम और आपकी पसंद के गीत आपको हमेशा हमारे बेहद

करीब ले आते हैं इन्हीं स्नेह भरे एहसासों के साथ। मैं हूं आपका अपना रेडियो दोस्त तरुण। तो देखते हैं सबसे पहला ईमेल स्किन श्रोताओं का आया है पहले गीत की फरमाइश के रूप में। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से हैं सुखराम सिंह मरावी, सुहानी सिंह, विमला सिंह। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा। बुलढाणा वटशिंगी महाराष्ट्र से हैं अनमोल मानकर, शोभा मानकर, दीपाली और श्लोक। मजनू कटिल्ला से हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा। और सतना एमपी से हैं उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक, पीएस नावकर, निर्मला नावकर, विशाल नावकर। नल्लेश्वर नगर नरविल महाराष्ट्र से हैं आप, और इनके साथ है नारायण इंगले और राजकुमार खर्चे आशीष। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुट्टी बुलंदशहर से हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य इस गीत की फरमाइश में शामिल हैं। मछली गोदाम कैदी मुड़ा रायगढ़ से हैं पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ सिंह, प्रियंका, पूजा, लीलू और रितु सिंह। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से हैं चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश, नेहा और वान्या सिंगरौल। नांदूरा महाराष्ट्र से हैं श्रीकृष्ण बाठे, संदीप बाठे। बाजार रोड मुंगीसापुर से हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, शबिस्ता पलक, लुबना और यश मंसूरी। आइए आप सबकी पसंद पर आप सबको सुनवाते हैं खुशबू फिल्म का ये गीत, आवाज आशा भोसले की है। और खुशबू की तरह आपके ईमेल्स हम तक आ पहुंचे हैं। सुनकर बताइएगा इस गीत को कि कैसा लग रहा है आपको ये गीत।

जी दोस्तों, बेचारा दिल क्या करे। बेचारा दिल तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन समय हमें बांधे रखता है। लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके जितने भी ईमेल्स इस कार्यक्रम में आते हैं, हम आपको उस कार्यक्रम में शामिल कर सकें। ज़िंदगी के पन्ने भले ही डिजिटल हो गए हों, पर उनमें बसी आपकी यादें आज भी ताज़ा गुलाब की तरह महकती है। जैसे आपके ईमेल्स हम तक पहुँचते हैं एक खुशबू की तरह। तो अगले गीत में हमारे ये श्रोता साथी शामिल हैं। अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक। बेड़ी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश से हैं हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, हार्दिक करमकर, प्राची तन्नू करमकर। जलगांव जंक्शन से हैं दिनेश काले, वंदना काले, डॉक्टर सहानुभूति चक्रधर और आदेश कुमार काले। नेहरू चौक पैठण से हैं डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती पूजा, सोनल, बेबी सिया। जालाना शहर से हैं सोमनाथ जाधव, गीता, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन, एकनाथ जाधव और संगीता जाधव। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से हैं सोपान तायडे, वसंतराव भोजने। टीकमगढ़ से हैं विजेंद्र विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा, सत्येंद्र कुमार चंचोलिया, आदर्श सार्थक, आलोकिक चंचोलिया। आप हैं ग्राम पंजोनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से। रघुवीर नगर नई दिल्ली से हैं श्रुति और किरण। ग्राम पंचायत खोदला उदयपुर सरगुजा से हैं जीवनधन सिंह पैकरा, धुरनी सिंह पैकरा, करिश्मा सोमार साय, कलेश्वर सुखराम, हीरामणि और ऐश्वर्या पैकरा। ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से हैं रामशरण विश्वकर्मा, साहिल मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और देवांशी विश्वकर्मा। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल, जयवीर, डॉक्टर अमनदीप। कालका से हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। सोनगुड़ा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से हैं प्रेम साय राजवाड़े, सोमार साय, मीर साय, श्री भगत, हेमंत कुमार, राम खिलावन सिंह पैकरा। आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं कभी कभी फिल्म का ये गीत, आवाज किशोर कुमार की है।

जी हाँ दोस्तों, प्यार कर लिया तो क्या प्यार खता नहीं। प्यार तो हम बहुत सारा करते हैं आपकी ईमेल से, जब जब आप उन्हें भेजते हैं हम तक, और उन्हें हम शामिल करने की पूरी कोशिश करते हैं। एक ईमेल, एक छोटा सा संदेश और ढेर सारा प्यार, बस यही तो है हम सब से जुड़ने का एक प्यारा आधार। तो ये आधार कौन सा है जिससे आप हमें हमसे जुड़ सकते हैं? आप इसके लिए फेसबुक पर जाएं, वहाँ प्रोफाइल में सबसे ऊपर पिन किए गए पोस्ट को देखें, उस पोस्ट में दिए गए लिंक पर क्लिक करते ही गूगल फॉर्म खुल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपनी फरमाइश हम तक आसानी से पहुँचा सकते हैं। और फेसबुक पर जाने के लिए आप आकाशवाणी अंबिकापुर को ज़रूर टाइप करें। आपके द्वारा भेजे गए फरमाइश को हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके लिए जरूर प्रस्तुत करेंगे। कृपया ध्यान रखें कि लिंक सुबह 10 बजे से दोपहर के 12 बजे तक ही चालू रहता है, और इसी दौरान आप अपनी फरमाइश हम तक भेज सकते हैं।

अगले गीत में हमारे ये श्रोता साथी शामिल हैं, पाकुड़ झारखंड उत्तम, माफ कीजिएगा, पाकुड़ झारखंड से हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, बूढ़ागाछी पश्चिम बंगाल से हैं मुन्ना भगत, गुड्डी भगत, यवतमाल से हैं राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल और चेतन मनवर, और इनके साथ हैं रोशनी मनवर और बेबी प्रियांशी, जिला किशनगंज बिहार से हैं रविंद्र मोहन, आशा देवी, राघव कुमार, भानु प्रिया और अनुराग, और इनके साथ हैं मोहन, सिद्मा बाजार पारा जिला बलरामपुर से हैं धनेश्वर निषाद, दीपिका निषाद, शिवांश निषाद, राम भरोस पैकरा, नरेश सिंह और समस्त निषाद परिवार, कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से हैं रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, मन्नत गुरकीतर राहुल, गुरबख्श सिंह राहुल, रानीगंज बंगाल से हैं रवि और इंदर, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां, सादुल शहर राजस्थान से हैं राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, बोड़सरा नैला छत्तीसगढ़ से हैं प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू, जमानिया गाजीपुर से हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक,

स्वाति खमरिया जमशेदपुर से हैं, रोहन जायसवाल आर्य जायसवाल पश्चिम विहार नई दिल्ली से हैं, लव शर्मा और रोशनी शर्मा गांव नथाना पंजाब से हैं, हरजिंदर छिंदा जसवीर जस्सी सीता और गीता। आइए आप सबकी पसंद पर सुनवाते हैं मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से ये गीत, आवाज़ लता मंगेशकर की है।

पसंद किए गीत तो जैसे खुशियों की चाबी है, जिससे हमारा मन बस खुशियों से खुशियों की ओर चला जाता है। तो अगले गीत में हमारे ये श्रोता साथी शामिल हैं, जिला अंबागढ़ चौकी से हैं रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रिहान। धनोरी से हैं निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से हैं विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से हैं अब्दुल गफ्फार डावर, खुशनसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे। अकोला महाराष्ट्र से हैं रमेश कामले, देवयानी और गणेश कामले। ग्राम पाहरा अहिरवारा से हैं पोषण बंछोर, चंद्रकिरण, प्रीति और छाया बंछोर। आइए आप सबको सुनवाते हैं आनंद आश्रम फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की।

जी हाँ दोस्तों, दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए। दिल तो बहुत कुछ कहता है कि बस हम आपके नाम इस कार्यक्रम में शामिल करते रहें और आप अपनी पसंद के गीत इस कार्यक्रम में सुनते रहें। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और आपकी

दूरी कितनी भी हो, जब आपका ईमेल स्क्रीन पर आता है तो लगता है आप यहीं पास बैठकर हमसे बातें कर रहे हैं। अगले गीत में हमारे ये श्रोता साथी शामिल हैं। जिला

अगले गीत में हमारे ये श्रोता साथी शामिल हैं। जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से हैं मोहम्मद फरान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून। मिठा मुड़ा दुर्गा चौक से हैं गेंदलाल श्रीवास, कौशल, कृष्ण कुमार, लक्ष्मण वाधवानी और गेंदू भाई। आप हैं रायगढ़ से। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र हैं अभिजीत गवाणकर, राही, श्रीमती सरिता, प्रिंस एकांश, अर्जुन और टुक टुक। ग्राम तारकेश्वरपुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से हैं मधुसूदन प्रजापति, सुखमनिया प्रजापति, झिलमिल प्रजापति, दक्ष, कुंती, मंगलराम और रिद्धि सिद्धि प्रजापति। चंडीगढ़ से हैं सतीश अनेजा और विमला अनेजा। रायगढ़ से हैं रोहित जयलक्ष्मी। इसी गीत के रूप में हमारे पास ईमेल आया है इन साथियों का। देवरी भाटापारा से हैं के आर साहू, आकाश, कमलेश, गन्नूलाल रजक और मुरली छत्री। आप सब ने सुनना चाहा है आप तो ऐसे न थे फिल्म का ये गीत, आवाज़ हेमलता की है।

0: जी हाँ श्रोताओं, आप भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। आप अपना लिंक भेजिए हमारे इस कार्यक्रम में, लेकिन ध्यान रखिए ये लिंक खुला होता है सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक। आज ईमेल की गूंज में बस इतना ही। आज इस कार्यक्रम में आपके साथ था ये आपका दोस्त तरुण। मिडवेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दिन के 2:15 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबुधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता का आश्वासन दिया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
2: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया ये किसी भी रूप में स्वीकार करना नहीं है। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करेज और विनम्रता का परिचय दिखाया है।

0: एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
1: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद को भाई कहकर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने चुनौतीपूर्ण समय में यूएई नेतृत्व के लचीलेपन की प्रशंसा की। श्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
0: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और यूरोप के 6 दिन के दौरे के पहले चरण में आज अबुधाबी पहुंचे। हवाई अड्डे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में औपचारिक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। यूएई के F-16 लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को अमीरात हवाई क्षेत्र में प्रवेश कराते हुए सुरक्षा प्रदान की। एक रिपोर्ट।
2: बातचीत के नतीजे सामने आने शुरू हो गए हैं। दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक MOU पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर RBL बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। एक रिपोर्ट।
3: विदेश मंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने लगातार सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था का समर्थन किया है जो मौजूदा वास्तविकताओं को दर्शाए तथा उभरते बाजारों तथा विकासशील देशों की आकांक्षाओं को पूरा करे। उन्होंने कहा कि सभी देशों को न केवल वैश्विक चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए बल्कि और अधिक लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व करने वाली और समानतापूर्ण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में मिलकर काम करना चाहिए। डॉ जयशंकर कहा कि सुधारित बहुपक्षीय व्यवस्था में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन होना चाहिए। अक्षत की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
1: विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज नई दिल्ली में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने बताया कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके प्रभावों पर चर्चा की। डॉ जयशंकर ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में श्री अराग़ची की भागीदारी की सराहना भी की। विदेश मंत्री ने क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिग्स पेरेला और युगांडा के विदेश मंत्री ओडोंगो जेजे से भी मुलाकात की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट UG 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होने वाली नीट UG परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम से होगी।
4: परीक्षा में थोड़ा हमको जो

0: ये फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारी विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने थोड़ी एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए, 2 से शुरू होगा 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुँच जाएगा।
1: श्री प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा।
2: जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते हैं, ये विंडो खुला रहेगा।
1: श्री प्रधान ने कहा कि एनटीए में ठोस सुधारों की आवश्यकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। ये परियोजनाएं सेमीकंडक्टर, रेलवे और सीवेज जल शोधन संयंत्र से जुड़ी हैं। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य में कई परियोजनाएं शुरू की गई जिससे विकास को गति मिल रही है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है। आज मोबाइल फोन भारत से एक्सपोर्ट होने वाली एक नंबर सबसे पहली कमोडिटी बन गई है।
1: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तेल कीमतों में वृद्धि पर कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बाद जब विश्व में ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखी गई, तब भारत उस स्थिति में सबसे अलग खड़ा रहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री रिजिजू ने कहा कि जहां कई देशों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 20% से लगभग 100% तक वृद्धि की गई है, तब भारत ने पेट्रोल के दाम में केवल 3.2% और डीजल के लिए 3.4% की वृद्धि की है। श्री रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत जन कल्याण के साथ आर्थिक स्थिरता को संतुलित कर रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की कथित विदेश यात्राओं पर सवाल उठाए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक सांसद को संबंधित अधिकारियों को अपनी विदेश यात्राओं की जानकारी देना अनिवार्य है और विदेश में मेहमान नवाजी के संबंध में FCRA अधिनियम 2010 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में रथेंद्र बसु निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। श्री बसु कोचबिहार दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष तापस रॉय की देखरेख में आज सुबह चुनाव संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने औपचारिक रूप से श्री बसु के नाम का प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से उनके नाम की पुष्टि की। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य चुनाव प्रक्रिया के दौरान उपस्थित नहीं थे, लेकिन बाद में सत्र में शामिल हुए। उधर पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के वरिष्ठ विधायक ए अम्बालगन को 16वीं विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह नियुक्ति की है। श्री अम्बालगन पुदुचेरी में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ओपलम से विधायक हैं। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में औपचारिक पदभार ग्रहण करने के बाद वे विधानसभा में नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। पंजाब के लुधियाना को हलवारा हवाई अड्डे पर एयर इंडिया की पहली उड़ान के आगमन के साथ भारत के वाणिज्यिक विमानन नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने हवाई अड्डे के संचालन को क्षेत्र में उद्योग, व्यापार और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन बताया। एयर इंडिया ने लुधियाना और दिल्ली के बीच दैनिक उड़ानें शुरू की हैं। इससे ब्रिटेन और रोम, मिलान तथा पेरिस सहित अन्य गंतव्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी संभव हो सकेगी। वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह ने आज कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां वायु शक्ति का ही विस्तार हैं। मानव रहित हवाई प्रणालियों पर सेंटर फॉर एयरोस्पेस

0: स्पेस पावर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज तथा इंडियन मिलिट्री रिव्यू द्वारा आयोजित एक संयुक्त सेमिनार और प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ड्रोन और मानव रहित हवाई प्रणालियां अभियानों के दौरान मानव जीवन के जोखिम को कम करती हैं। ओमान के मुलद्दा में बांग्लादेश के चार भाइयों के शव एक खड़ी कार के अंदर मिलने से प्रवासी समुदाय और उनके गृहनगर चट्टोग्राम में शोक का माहौल है। पुलिस को शवों की जानकारी दो बांग्लादेशी प्रवासियों द्वारा दी गई। कांगो गणराज्य के उत्तर पूर्व में इबोला के प्रकोप से 65 लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग संक्रमित हो गए हैं। अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने बताया कि लगभग 246 लोगों में इबोला होने का संदेह है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रियंका अरोड़ा।
1: सबसे पहले बात बैडमिंटन की। थाईलैंड ओपन टूर्नामेंट में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी पुरुष डबल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने ताकुमी नोमुरा और युइची शिमोगामी की जापानी जोड़ी को 21-12 21-13 से हराया। उधर महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु को जापान की अकाने यामागुची से हार का सामना करना पड़ा। आज पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलाउथ विदत्सरन से होगा। टेनिस कोर्ट का रुख करें तो इटली ओपन में महिला सिंगल्स फाइनल मुकाबला कल यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना और अमेरिका की कोको गॉफ के बीच होगा। सेमीफाइनल में स्वितोलिना ने पोलैंड की इगा स्वियातेक को, वहीं कोको गॉफ ने रोमानिया की सोरोना क्रिस्टिया को पराजित किया। कोको गॉफ वीनस विलियम्स के बाद लगातार इटली ओपन के फाइनल में पहुंचने वाली सबसे युवा अमरीकी टेनिस खिलाड़ी बन गई है। इस बीच क्रिकेट की बात करें तो आईपीएल में आज लखनऊ में शाम 7:30 से लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। कल मुंबई इंडियंस ने धर्मशाला में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराया था।
0: मौसम विभाग ने आज कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, सौराष्ट्र, कच्छ, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में रात के समय मौसम गर्म रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने अबूधाबी में ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर चर्चा की। दोनों नेताओं के बीच रक्षा, पेट्रोलियम और निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक दूसरे दिन भी जारी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने बेहतर और प्रभावी बहुपक्षवाद के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक रथेंद्र बसु पश्चिम बंगाल विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी दोपहर समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित किए जा रहे थे। मिडवेव और एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए गीत गंधा कार्यक्रम।

नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी अंबिकापुर के इस खूबसूरत कार्यक्रम में गीत गंधा में आप सबका दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त तरुण और अगले कुछ पल तक हम साथ साथ बांटेंगे कुछ बातें, मुस्कानें, यादें और गीत संगीत की वो प्यारी सी खुशबू। दोस्तों, जिंदगी की भागदौड़ में अगर कुछ पल सुकून से मिल जाए तो दिल भी मुस्कुरा उठता है। तो बस अपने सारे काम थोड़ी देर के लिए किनारे रख दीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ हर बात में अपनापन है, हर एहसास में मिठास है और हर धुन में दिल की आवाज छुपी हुई है। तो आइए प्यार, अपनत्व और मधुर संगीत के साथ शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम का सिलसिला। कार्यक्रम का पहला गीत

दोस्तों, गीत सिर्फ शब्द और धुन नहीं होते, ये तो वो एहसास हैं जो कभी आंखों में चमक बनकर उतरते हैं तो कभी दिल में हल्की सी मिठास घोल जाते हैं। कभी ये बीते दिनों से मिलाते हैं तो कभी आने वाले कल के लिए उम्मीदों के दीप जला देते हैं। तो आइए कार्यक्रम में अगला गीत सुनते हैं। आवाज है लकी अली की। संगीत लकी अली का। गीत के बोल लिखे हैं सैयद असल नूर ने।

आकाशवाणी अंबिकापुर से आप सुन रहे हैं गीत गंधा कार्यक्रम। कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं दीवाना एल्बम से ये गीत, आवाज सोनू निगम की है।

सुरों की इस महफिल में आप हैं आकाशवाणी अंबिकापुर के साथ। तस्वीर बनाता हूं मगर तस्वीर नहीं बनती, हर रेखा में तेरी कमी महसूस होती है। अल्फाज तो लिख देता हूं दिल की किताब में मगर तेरी याद की पूरी गजल नहीं बनती। आवाज और संगीत जगजीत सिंह का। एल्बम का नाम क्लोज माई हार्ट।

कार्यक्रम की अंत में सुनते हैं ये गजल। आवाजें हैं लता मंगेशकर और जगजीत सिंह की, संगीत बासु चक्रवर्ती का है।

जगजीत सिंह और लता मंगेशकर की गाई इस गजल के साथ ही गीत गंधा कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आइए श्रोताओं, आज के शेष मुख्य आकर्षण की जानकारी आपको दे दें। हमारी सांध्यकालीन सभा में शाम 5 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। शाम 5:05 पर भजन संध्या कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। युवा श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम युवावाणी आप सुनेंगे शाम 5:30 पर। इसमें आज आप सुनेंगे हेलो फ्रेंड्स क्रम। शाम 6:05 पर विचार बिंदु कार्यक्रम का पुनः प्रसारण किया जाएगा। शाम 6:20 पर आप सुनेंगे लोकगीतों कार्यक्रम गोदली। फिल्म संगीत का माधुरी कार्यक्रम का शाम 6:30 पर। शाम 7:05 पर सुगम संगीत कार्यक्रम का रजनी गंधा। किसान भाइयों की चौपाल लगेगी शाम 7:20 पर। इसमें आप सुनेंगे आज सामयिक चर्चा, आजकल लोकगीत, स्मार्ट कृषि, श्री अन्न समृद्ध अन्न पर कुछ चर्चा की जाएगी। साथ ही आप सुनेंगे मंडी भाव, मौसम कर जानकारी, मौसम आधारित कृषि परामर्श पर भी चर्चा की जाएगी। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे इंस्टा फरमाइश कार्यक्रम। इसमें आप सुनते हैं सोशल मीडिया आधारित फरमाइशी कार्यक्रम।

रात्रि 9:15 पर आनंद लीजिएगा चित्रपट संगीत का। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे ईमेल की गूंज कार्यक्रम। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे राग प्रधान कार्यक्रम और रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्म संगीत कार्यक्रम मन भावन। ये तो थे श्रोताओं हमारे केंद्र से आज के शेष मुख्य आकर्षण। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलोहर्ट्ज और एफएम बैंड 100.02 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। दोपहर के 3:02 हुए हैं। लीजिए सुनिए मिनट हुए हैं। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं संपन्न होती है। इस दौरान एफएम बैंड 100.02 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के प्रसारण जारी रहेगा। मीडियम वेव 1260 किलोहर्ट्ज पर सांधिकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5:00 से आपकी सेवा में पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्स और FM बैंड 100.2 मेगा हर्ट्स पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। हमारी स्टूडियो की घड़ी में इस समय शाम के 5 बज रहे हैं। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में लीजिए प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गुट।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर, रामानुजगंज और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये मिंढारी, प्रेमनगर, भगवानपुर, नवापारा, चिनिया, महावीरगंज, रामपुर, कनकपुर, कुंदीकला, जामदोहर, अखोरा, बदौली, जवा खाड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 17 है। ये लक्ष्मणगढ़, जगन्नाथपुर, सायर, ससकालो, मुड़ापारा, सुखरी भंडार, सरगा, ढोढ़ा गांव, बोड़ा झरिया, घासीडी, घड़गांव, बैगहवा, बरडाण, कंडराजा, चोरकी पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव और कांसाबेल में हाथियों की कुल संख्या 34 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, चरईमारा, रानी कोम्बो, खड़ा माचा, कुकुर गांव, कुदरा झरिया, साजा पानी, तीता पाकेर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बाकारुमा, कापू और बोरो में हाथियों की कुल संख्या 136 है। ये गिरसा, पोटिया, आमगांव, रुपुंगा, तेजपुर, बेहरामार, बनहर, औरानारा, पुरुंगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये कलमी टिकरा, गिरारी, गीत कुंवारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के जडगा और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी

0: बीकादर डंगबोरा कोदवारी खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये बंगूरसिया नवागांव चक्रधरपुर जुनवानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़ बिलाईगढ़ वनमंडल के गोमरडा अभ्यारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये आमाकोनी नवापारा सरायपाली गंधरा चुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये कोठारी पकरीत ताल दादर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट तौरेंगा और सीता नदी में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड़ अमलोर ताराजह डडई पानी बुडार सिंहार छिंदौला लूठापारा नारीपानी डूमर घाट कोदोमाली मुहकोट बहीगांव लिखमा जोगी बिरदो मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार
2: दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें।
3: हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमार हाथी हमार गोट।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमार हाथी हमार गोट। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:05 हो चुके हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्मी और फिल्मी भजन पर आधारित कार्यक्रम भजन संध्या। कार्यक्रम की शुरुआत में प्रस्तुत है ब्रजराज सिंह लखा के स्वर में ये भजन।

और अब भक्ति के इसी मधुर सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं एक बेहद भावपूर्ण भजन, जिसे अपनी सुरमयी आवाज से सजाया है सुरेश वाडकर ने।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से सुन रहे हैं आप कार्यक्रम भजन संध्या। और अब समय है एक मधुर एवं भावपूर्ण प्रस्तुति का। प्रस्तुत है प्रसिद्ध गायिका चित्रा सिंह के स्वर में ये सुंदर भजन।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। पेश है युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी।

0: कुछ रिश्ते आवाज़ से बन जाते हैं और कुछ लोग रेडियो पर सुनते सुनते अपने लगने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की सुहानी सी शाम में और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। दोस्तों, मूड ऑफ है या फुल ऑन मस्त है, अगले कुछ मिनट सिर्फ आपके नाम। मैं हूँ चंचला और शुरू हो चुका है दोस्ती मस्ती और दिल की बातों का सफर। जी हाँ, यहाँ सिर्फ गाने नहीं बजते, यहाँ यादें बनती हैं। अगर आप हंस रहे हैं तो समझिए हमारा शो सक्सेसफुल हो रहा है। दोस्तों, बिना देरी किए चलते हैं आज के हमारे शुक्रवार स्पेशल क्रम हेलो फ्रेंड्स की ओर, जहाँ हम करेंगे आप सभी से कुछ बातें और सुनेंगे आपकी फरमाइश पर प्यारे प्यारे गीत।
1: हेलो फ्रेंड,
2: हेलो फ्रेंड,
1: हेलो फ्रेंड्स,
0: स्वागत है साथियों आप सभी का क्रम हेलो फ्रेंड्स में। तो अब वक्त है सीधे दिल से जुड़ने का, तो आइए जानते हैं आज के हमारे पहले कॉलर कौन हैं। फोन की घंटी तो बज चुकी है दोस्तों, अब सुनते हैं किसकी प्यारी आवाज आने वाली है। हेलो फ्रेंड। जी नमस्ते।
3: नमस्ते
0: जी, कौन और कहां से बात कर रहे हैं आप?
3: जी, मैं प्रेम सरजवाड़े बोल रहा हूं, सारस्ताल सोनगरा जिला सुरजपुर छत्तीसगढ़ से।
0: जी प्रेम सर जी, कैसे हैं?
3: जी हम तो ठीक है मैम जी।
0: जी अभी गर्मी में कैसा है अभी हालचाल घर का आपके यहाँ का?
3: जी गर्मी में तो अभी भारी, अभी कहा जाए तो गर्मी है, इधर
0: गर्मी तो काफी तेज है।
3: जी अपनी पसंद का गाना बता देता हूँ।
0: जी जी बताइए।
3: जी कुमार सानूवाल के आईने की आवाज में आप अपनी पसंद से कोई भी गीत बजा दीजिएगा।
0: जी आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।
3: जी कॉल शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी

0: मस्ती, बातें और ढेर सारी मुस्कान के साथ लेते हैं अगली कॉल। हेलो फ्रेंड।
1: हेलो
0: जी, नमस्ते।
1: जी मैडम नमस्कार।
0: कौन बात कर रहे हैं? हेलो
1: जी मैडम, मैं ग्राम पंचायत उदयपुर से जीवधन सिंह टेगरा बोल रहा हूँ।
0: जी जीवधन जी, कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल ठीक हूँ बेटा।
0: अच्छा, और अभी गर्मी में कैसा है अभी हालचाल?
1: गर्मी बहुत गर्मी पड़ रहा है मैडम, यहाँ हमारे यहाँ उदयपुर क्षेत्र में बहुत गर्मी पड़ रहा है। पानी भी आता है मैडम, तो गर्मी भी है, थोड़ा गर्मी ज्यादा हो गया अभी तो।
0: जी अभी तो मौसम कभी बरसात कभी धूप, गर्मी बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा है।
1: जी जी बहुत गर्मी है मैडम।
0: कौन सा गीत लेकर आए हैं आज आप?
1: जी मैडम आज तो गीत है जिगर फिल्म का, सुना दीजिएगा वो गाना का, बोलो प्यार की कागज पे कथे वाला गाना सुना दीजिए।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का खूबसूरत सा गीत।

0: रेडियो की दुनिया में हर कॉल एक नई कहानी लेकर आती है। चलिए सुनते हैं अगले कॉलर की आवाज। हेलो फ्रेंड।
1: हेलो
0: जी, नमस्ते।
1: नमस्ते जी।
0: जी जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं महाराष्ट्र ग्राम कराड़ जिला सातारा से तुकाराम जाधव बोल रहा हूँ।
0: जी तुकाराम जी, कैसे हैं आप?
1: हम ठीक है, आप कैसे हैं जी?
0: हम भी बढ़िया हैं। आपके यहाँ गर्मी कैसे है?
1: गर्मी बहुत तेज है, अभी 36-37 तापमान है हमारे इधर।
0: जी जी जी, गर्मी बहुत ज्यादा है।
1: आप क्या अंबिकापुर में?
0: यहाँ भी गर्मी है, कभी बरसात हो जाती है शाम शाम में।
1: यहाँ पूरे देश में गर्मी की लाट चल रही है।
0: जी जी, तो इस गर्मी के मौसम में आप कुछ संदेश देना चाहेंगे श्रोताओं को?
1: जी
0: जी, बताइए।
1: लोगों ने अपनी तबीयत संभालनी पड़ेगी।
0: जी बिल्कुल। तुकाराम जी, कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे आज?
1: फिल्म का नाम है साजन।
0: जी, साजन का कौन सा?
1: देखा पहली बार साजन की आंखों में प्यार। कुछ मित्रों का नाम लेना चाहता हूँ।
0: जी जी, बताइए। बिल्कुल।
1: हमारे मित्र पेश है राशुल के जी, विठल।

0: पवार जी, किरण शिंदे जी, सुनील बुधे जी, गौतम कोकाटे जी, विकास शेडगे जी, श्रीकांत भंडारे जी, विजय पाटिल सर, धनंजय चपटे जी, रमेश जी, हम सभी गीत सुनना चाहते हैं।
1: जी जी, आप सभी की पसंद पर आइए, सुनते हैं फिल्म साजन का प्यारा सा गीत।
0: शुक्रिया, धन्यवाद।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे. सो इजी.
1: अनजान.

0: कीजिए, RBI कहता है।
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: दिल थाम लीजिए दोस्तों, अगली कॉल शायद आपके चेहरे पर मुस्कान ले आए।
3: हेलो।
2: हेलो फ्रेंड।
3: मैडम
2: जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
3: चक्रवर्ती जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ, डी आदवानी।
2: जी जी, कैसे हैं आप?
3: मौसम बढ़िया है, धूप निकली हुई है।
2: जी जी, धूप तो काफी ज्यादा है।
3: कल रात को बढ़िया पानी पड़ गया था, मौसम बदल गया था, लिहाज से धूप निकल आई है। ऐसा कई दिनों से हुआ है।
2: जी,
3: शाम को एक दो दिन में पानी पड़ जाता है, फिर दिन को धूप पड़ने लगती है।
2: और क्या करते हैं आप अभी?
3: मेरी कपड़े की दुकान है, अभी शादी ब्याह का मौसम भी नहीं है, ग्राहकी थोड़ी कम हो गई है। गर्मी का मजा तो हम रोज गन्ना पीते हुए, कुल्फी खाते हुए, बर्फ का गोला खाते हुए, तरबूज खरबूज खाते हुए ले रहे हैं।
2: जी जी, कौन सा गीत लेकर आए हैं आज?
3: साजन फिल्म का मेरा दिल भी कितना पागल है।
2: जी बिल्कुल, आइए सुनते हैं आपकी पसंद का प्यारा सा गीत।
3: जी धन्यवाद।

0: चलिए अब मिलते हैं उस श्रोता से जो शायद काफी देर से हमसे बात करने का इंतजार कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड।
1: हेलो, हाँ जी नमस्ते।
0: जी जी नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं आप?
1: जी योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, सिरवा बांध देने तक।
0: योगेश जी कैसे हैं आप?
1: हाँ बढ़िया है, अच्छे हैं जी। फिल्म डॉन है अमिताभ बच्चन की, उसमें से कोई गीत सुनवा दें।
0: जी आइए सुनते हैं आपकी पसंद का प्यारा सा गीत।

0: करना है और किस।
1: दोस्तों, गानों के साथ साथ बातों का सिलसिला भी आज के लिए बस यहीं तक। क्रम हेलो फ्रेंड्स में हमसे बात करने के लिए आप हमें हर गुरुवार के दिन दोपहर 3:30 से 4 तक फोन कर सकते हैं। क्रम हेलो फ्रेंड्स में फोन करने के लिए हमारा संपर्क नंबर है 2319917। हमारा दूसरा संपर्क नंबर है 2319918। मोबाइल या अंबिकापुर के बाहर से फोन करने वाले श्रोता साथी फोन करने के लिए STD कोड 07774 जरूर लगाएं। इसी के साथ आज का क्रम हेलो फ्रेंड्स बस यहीं तक।
2: हेलो फ्रेंड।
3: हेलो फ्रेंड।
2: हेलो फ्रेंड्स।
1: दोस्तों, रेडियो की ये प्यारी शाम अब यहीं खत्म होती। चलते चलते बस इतना कहना चाहूंगी दोस्तों, जिंदगी चाहे जैसी भी हो, मुस्कुराना कभी मत छोड़िए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कान ही हमारी असली पहचान है। गाने खत्म हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन यादें नहीं। फिर मुलाकात होगी इसी प्यार भरे अंदाज में। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और जिंदगी को थोड़ा मुस्कुरा कर जीते रहिए। मैं हूँ चंचला, अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलो हर्ट्ज और FM बैंड 100.2 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में हिंदी समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबुधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। बैठक के दौरान ऊर्जा सहयोग और द्विपक्षीय व्यापार पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। ये वार्ता पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी वैश्विक आपूर्ति बाधाओं के बीच हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की।
1: यूएई पर हुए हमलों की हम कठोर निंदा करते हैं। यूएई को जिस तरह निशाना बनाया गया, ये किसी भी रूप में स्वीकार करना नहीं। इन कठिन परिस्थितियों में आपने जिस संयम, करे और विनम्रता का परिचय दिखाया है, यह बहुत ही सराहनीय है। राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने आपके नेतृत्व में उठाए गए कदमों का हम अभिनंदन करते हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने अमीरात के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। एक रिपोर्ट।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रैटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबुधाबी।
0: प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स जाएंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉ जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। डॉ जयशंकर ने आज मलेशिया के विदेश मंत्री मोहम्मद हसन से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति पर समीक्षा की। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराग्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैनिक समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। श्री अराग्ची ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए नई दिल्ली आए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता है और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी

0: बीटी माध्यम से होगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि उनके खिलाफ विभागीय जाँच कराई जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिनों में वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला थाईलैंड के कुनलालौत वित्तदर्शन से हो रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Prime Minister Narendra Modi today held talks with President of United Arab Emirates Sheikh Mohammed bin Zayed.
2: हिंदी समाचार हम अभी दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विचार बिंदु का पुनः प्रसारण। आलेख है संस्कार, संकलन एवं वाचन स्वर हैं पद्मनाभ शर्मा के।
3: संस्कार मनुष्य के व्यक्तित्व का वह सूक्ष्म किंतु अत्यंत प्रभावी आयाम है जो उसके विचार, व्यवहार और निर्णयों को दिशा देता है। ये केवल बाहरी आचरण तक सीमित नहीं होता, बल्कि भीतर की चेतना में बसे उन मूल्यों का समुच्चय है जो सही गलत का बोध कराते हैं। परिवार, समाज, शिक्षा और अनुभव, इन सभी के संयुक्त प्रभाव से संस्कारों का निर्माण होता है। यही कारण है कि एक ही परिस्थिति में अलग अलग व्यक्तियों का आचरण भिन्न भिन्न दिखाई देता है, क्योंकि उनके संस्कार अलग होते हैं। जन्मना जायते शूद्रः, संस्काराद द्विज उच्यते, विद्या याति विप्रत्वम त्रिभिः श्रोत्रिय उच्यते। अर्थात जन्म से प्रत्येक व्यक्ति शूद्र के समान होता है, यानी अशिक्षित या अविकसित होता है। संस्कारों के माध्यम से उसका दूसरा जन्म होता है और वह द्विज कहलाता है। विद्या ग्रहण करने से वह विप्र ज्ञानी बनता है। जब जन्म, संस्कार और विद्या तीनों का संगम होता है, तब वह श्रोत्रिय यानी वेदों का ज्ञाता और परम विद्वान कहलाता है। संस्कारों का महत्व इस तथ्य से समझा जा सकता है कि ये व्यक्ति के चरित्र की नींव होते हैं। शिक्षा ज्ञान दे सकती है, परंतु संस्कार उस ज्ञान को सही दिशा में उपयोग करना सिखाते हैं। यदि ज्ञान बिना संस्कार के हो तो वह विनाशकारी भी बन सकता है। आज के आधुनिक और तकनीकी युग में जहाँ सूचनाओं की प्रचुरता है, वहाँ संस्कारों की भूमिका और भी बढ़ जाती है, क्योंकि वे व्यक्ति को विवेकपूर्ण चयन करने की क्षमता प्रदान करते हैं। संस्कारों का पहला और प्रमुख स्रोत परिवार होता है। बाल्यावस्था में जो बातें, व्यवहार और मूल्य घर में देखे और सीखे जाते हैं, वे जीवन भर व्यक्ति के साथ रहते हैं। माता पिता और बड़ों का आचरण बच्चों के लिए प्रत्यक्ष शिक्षा का कार्य करता है। उदाहरण के लिए, यदि घर में सत्य बोलने, बड़ों का सम्मान करने और दूसरों की सहायता करने की आदत है, तो बच्चे भी स्वाभाविक रूप से इन गुणों को अपनाते हैं। महात्मा गांधी के जीवन का एक प्रसिद्ध प्रसंग है। बाल्यावस्था में उन्होंने एक छोटी सी चोरी की थी और बाद में उन्हें इसका गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने अपने पिता को एक पत्र लिखकर अपनी गलती स्वीकार की और क्षमा मांगी। उनके पिता ने उन्हें दंड देने के बजाय प्रेम पूर्वक क्षमा कर दिया। इस घटना ने गांधी जी के मन पर गहरा प्रभाव डाला और सत्य के प्रति उनकी निष्ठा जीवन भर बनी रही। ये प्रसंग दर्शाता है कि सही समय पर दिया गया संस्कार और संवेदनशील प्रतिक्रिया व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल सकती है। संस्कार केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। एक संस्कारित व्यक्ति समाज में शांति, सहयोग और सद्भाव का वातावरण बनाता है। इसके विपरीत, संस्कारहीनता सामाजिक विघटन और अराजकता को जन्म देती है। आज जब भौतिकता और प्रतिस्पर्धा का दबाव बढ़ रहा है, तब नैतिक मूल्यों का ह्रास भी देखने को मिलता है। ऐसे में संस्कारों की आवश्यकता और भी अधिक

प्रासंगिक हो जाती है। एक बार एक संत नदी किनारे बैठे थे। उन्होंने देखा कि एक बिच्छू बार बार पानी में गिर रहा है और बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है। संत ने उसे हाथ में उठाकर बाहर निकालने की कोशिश की, परंतु बिच्छू ने उन्हें डंक मार दिया। फिर भी संत ने उसे बचाने का प्रयास जारी रखा। किसी ने उनसे पूछा कि जब वह बार बार डंक मार रहा है तो आप उसे क्यों बचा रहे हैं? संत ने उत्तर दिया, डंक मारना उसका स्वभाव है और बचाना मेरा संस्कार। ये प्रसंग स्पष्ट करता है कि सच्चे संस्कार परिस्थितियों से प्रभावित

अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने को है। कुछ ही पलों में प्रादेशिक छत्तीसगढ़ी समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग किरण वर्मा के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA 21 जून के नीट UG 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करही। दुनिया भर में कच्चा तेल के कीमत में आए उछाल के बाद तेल कंपनी मन्हा पेट्रोल और डीजल के कीमत में 3 रुपया प्रति लीटर के बढ़ोतरी करे है। औ आकाशवाणी के 90 बच्छर पूरा होए के उपलक्ष्य में आज छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में आकाशवाणी रहाले वाकाथन के आयोजन करेगिस। अब समाचार विस्तार ले। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA 21 जून के नीट UG 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करही। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ह किहिन के विद्यार्थी सरकार के प्राथमिकता है और सरकार ओमन बर संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ह किहिन कि NTA ह मेडिकल में प्रवेश बर नीट UG 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून के आयोजित करे के घोषणा करे है। शिक्षा मंत्री ह किहिन कि वर्तमान में OMR मोड में आयोजित होवैया नीट UG परीक्षा अवैया बछर ले कंप्यूटर आधारित यानी CBT माध्यम ले होही। श्री धर्मेंद्र प्रधान ह बताइन कि विद्यार्थी मन ल परीक्षा बर अपन पसंद के शहर चुने के मौका मिलही। दुनिया भर में कच्चा तेल के कीमत में आए उछाल के बाद तेल कंपनी मन ह पेट्रोल और डीजल के कीमत में 3 रुपया प्रति लीटर के बढ़ोतरी करे है। दिल्ली में अब पेट्रोल के कीमत 97.77 रुपया प्रति लीटर जबकि डीजल के कीमत 90.67 रुपया प्रति लीटर हो गए हैं। उन्हें राजधानी रायपुर में पेट्रोल के दाम 103.58 रुपया और डीजल के दाम 96.57 रुपया हो गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय प्रदेशवासी मन ले पेट्रोल और डीजल के उपलब्धता लेके चिंता नहीं करे के अपील करीन है। उमन किहिन कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त भंडारण मौजूद है और प्रदेश के जम्मो आयल डिपो में नियमित रूप ले ईंधन के आपूर्ति करे जाते। मुख्यमंत्री है बताइन कि राज्य सरकार और आयल कंपनी आपसी समन्वय के संग स्थिति में सरलक नजर बनाए हुए है। उमन किहिन कि केंद्र सरकार घलो ईंधन आपूर्ति लले के जरूरी तैयारी करे है और कोनो तरह के समस्या नहीं है। श्री साय लोगन मल्ले अफवाह ऊपर ध्यान नहीं दे और जरूरत के अनुसार ही ईंधन लेके आग्रह करें। इही बीच राज्य के खाद्य सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले हकीन कि आम लोगन डहाले पाछू 2 दिन में घबराहट के सेती पेट्रोल डीजल के खरीदी करे गए है जेखर ले एखर खपत में अप्रत्याशित बढ़ोतरी दर्ज हुए है। एखर सेती कुछ एक जगह में कृत्रिम अभाव के स्थिति बन गए है। ओमन लोगन मल्ले कोनो भी तरह के अफवाह या घबराहट के स्थिति में पेट्रोल डीजल के खरीदी नहीं करे के अपील करीन है। केंद्रीय भूमि संसाधन विभाग के सचिव नरेंद्र भूषण के अगुवाई में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल है धमतरी जिला के मगरलोड विकास खंड के दौरा करके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वाटरशेड विकास परियोजना के निरीक्षण करें। इस दौरान ओमन सुरक्षात्मक सिंचाई आजीविका संवर्धन और मृदा के संग्रह जल संरक्षण ऊपर केंद्रित आने आने पहलू के समीक्षा करें। उन्हें केंद्रीय सचिव हां सांकरा गांव में वाटरशेड विकास घटक और मनरेगा के अंतर्गत निर्मित स्टाप डैम के घलो अवलोकन करें। प्रतिनिधिमंडल हां सौगा गांव में 5 एकड़ के वृक्षारोपण स्थल के घलो दौरा करें जहां 1000 ले ज्यादा अमरूद और लिमऊ के रुख लगाए गए हैं। ऐसने केंद्रीय सचिव धमतरी में नक्शा प्रोजेक्ट के प्रगति के निरीक्षण करें। इस दौरान ओमन प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन समय सीमा में पूरा करे और सर्वे टीम के संख्या बढ़ाए के निर्देश कलेक्टर लदिन। सुनैया मल्ला बता दन के प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषय ऊपर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में ए बखत गर्मी के मौसम में लू ले बचाव और सावधानी ऊपर स्वास्थ्य विभाग के एकीकृत रोग निगरानी परियोजना रायपुर के अधिकारी डॉक्टर विमल किशोर राय ले गए भेंटवार्ता के प्रसारण करे जाही। एक प्रसारण काली 16 मई के आकाशवाणी केंद्र रायपुर डहाले FM और प्राइमरी चैनल में बिहनिया 9 बजे ले करे जाही। इला छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के जम्मू केंद्र रिले करही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो। छत्तीसगढ़

0: खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा थन छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
1: अब आगु बढ़बो माचे समाचार कोती। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के 11वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित करेगिस। समारोह में राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आने आने संकाय में प्रावीण्य सूची में जगह पाए मेधावी विद्यार्थी मन ल 13 स्वर्ण 7 रजत और 2 कांस्य पदक दिन संग्रह 128 शोधार्थी मनला PhD 518 विद्यार्थी मनला स्नातकोत्तर और 1234 विद्यार्थी मनला स्नातक के उपाधि देगिस। समारोह ला संबोधित करत राज्यपाल ह विद्यार्थी मनला बधाई देत किहिन के दीक्षांत समारोह छात्र जीवन के एक बहुत बड़ा मौका होते। ये केवल डिग्री पाए के दिन नहीं है बल्कि भविष्य के शुरुआत के प्रतीक हरय। श्री डे कहा किहिन के आज कृषि परिवर्तन के दौले गुजरत है। किसान और युवा मन लघलो आधुनिक और उन्नत खेती कोती पढ़ना चाहिए। उन्हें मुख्यमंत्री है विद्यार्थी मन ले ड्रोन AI और डिजिटल तकनीक ले खेती ले जोर के किसान और वैज्ञानिक मन के बीच सेतु बने के आह्वान करिन। उमन किहिन कि कृषि विश्वविद्यालय है कृषि शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करे है और वैज्ञानिक ढहर ले विकसित नवा फसल किस्म और आधुनिक तकनीक ले किसान मन ला बड़का फायदा मिला थे। समारोह में कृषि मंत्री रामविचार नेताम नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व निदेशक डॉ अशोक कुमार सिंह और कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ गिरीश चंदेल मौजूद रहीन। आकाशवाणी के 90 बछर पूरा होए के उपलक्ष्य में आज छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में आकाशवाणी डहाले वाकाथन के आयोजन करेगी। एमा आकाशवाणी के कर्मचारी सेवानिवृत्त अधिकारी समाचार वाचक श्रोता और शहर के प्रमुख नागरिक शामिल हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दूरदर्शन रायपुर के उप महानिदेशक संजय कुमार मिश्रा रहीन। विशेष अतिथि के रूप में पत्र सूचना कार्यालय रायपुर के उप निदेशक रमेश जयभाय और माय भारत के क्षेत्रीय प्रमुख अर्पित तिवारी शामिल हुईं। वाकथन आज बिहनिया लगभग 7 सिविल लाइन स्थित आकाशवाणी भवन ले शुरू हुई। ए शहर के आने आने रद्दा ले होत आकाशवाणी परिसर में ही सिराइस। आकाशवाणी केंद्र रायपुर के उप महानिदेशक वी राजेश्वर है बताएं कि ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 बच्चर के सफल यादगार बनाए बर करेगे है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के संग आकाशवाणी के स्थापना 8 जून 1936 में हुई रही। ये देश के सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है जौन आने आने भाखा में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत मनोरंजन प्रेरक और जन उपयोगी कार्यक्रम के प्रसारण करते। रायगढ़ जिला के अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज दिव्यांशु देवांगन हा मिस्र में आयोजित जूनियर वर्ल्ड कप के 10 मीटर एयर राइफल मिक्स डबल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते है। ये उपलब्धि पर वित्त मंत्री OP चौधरी हा दिव्यांशु ला फोन करके बधाई दीन है। उमन विश्वास जताइन कि दिव्यांशु भविष्य में घलो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में देश और प्रदेश के नाम रोशन करत रही। उन्हें स्वर्ण पदक विजेता दिव्यांशु है किहिन कि प्रदेशवासी मन के स्नेह और निरंतर प्रोत्साहन ही उमल्ला ए शिखर तक पहुंचाए के ऊर्जा दे है। अब पेश है मौसम के हाल। मौसम विभाग दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई के केरल तट में पहुंचे के संभावना जताए है। यही बीच छत्तीसगढ़ में अवैया 24 घंटा के दौरान कई जगह में हल्का वर्षा होए के संभावना है। उन्हें एक दो जगह में गरज चमक के संग अंधर चले और गाज गिरे के चेतावनी घलो दे गए है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान में कोनो विशेष बदलाव होए के संभावना नहीं है जबकि 17 मई ले अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज करे जा सकत है। आज बिहनिया मौसम के मिजाज बदले के सेती राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कुछ एक जिला में तेज हवा के संग तेज वर्षा हुई। एखर ले लोगन मल्ला गर्मी ले कुछ राहत मिलिस। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फेर। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA 21 जून के नीट UG 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करही। दुनिया भर में कच्चा तेल के कीमत में आए उछाल के बाद तेल कंपनी मन पेट्रोल और डीजल के कीमत में 3 रुपया प्रति लीटर के बढ़ोतरी करे है। और आकाशवाणी के 90 बच्चर पूरा होए के उपलक्ष्य में आज छत्तीसगढ़ के

0: राजधानी रायपुर में आकाशवाणी डहर ले वाकथन के आयोजन करेगीस। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: प्रादेशिक छत्तीसगढ़ी समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव 238.09 मीटर अर्थात 1260 किलो हर्ट्ज और FM बैंड 100.2 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:20 हुए हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम गोधुली। कार्यक्रम में सुनिए ये सरगुजिहा सुआ लोकगीत रामाधार और साथी के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत का कार्यक्रम गोधूली। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 6:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम माधुरी। कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में। फिल्म है मैंने प्यार किया। गीतकार है असद भोपाली और संगीत निर्देशन है राम लक्ष्मण का।

कार्यक्रम में लीजिए सुनिए कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में दामिनी फिल्म का ये गीत। शब्द रचना है समीर की।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम माधुरी यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से

0: बोल रहे हैं। शाम के 6:45 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
3: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
2: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
3: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
2: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
3: क्यों?
2: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
4: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
5: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
6: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
5: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
6: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
5: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
6: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
4: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
7: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
6: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
7: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
6: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
7: आकाशवाणी से।
4: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
6: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
7: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
6: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
4: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
0: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। मुख्यमंत्री ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और जरूरत के अनुसार ही पेट्रोल डीजल लेने की अपील की। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज रायपुर में वॉकाथॉन का आयोजन किया गया और मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई को केरल तट पर पहुंचने की संभावना जताई। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने के आसार। अब समाचार विस्तार से। दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में आए उछाल के बाद तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 97.77 रुपए प्रति लीटर जबकि डीजल की कीमत 90.67 रुपए प्रति लीटर हो गई है। वहीं राजधानी रायपुर में पेट्रोल के दाम 103.58 रुपए और डीजल के दाम 96.57 रुपए हो गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों से पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को लेकर चिंता नहीं करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि छत्तीसगढ़ में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडारण उपलब्ध है और प्रदेश के सभी ऑयल डिपो में नियमित रूप से ईंधन की आपूर्ति की जा रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार और ऑयल कंपनियां आपसी समन्वय के साथ स्थिति पर लगातार

0: नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने भी ईंधन आपूर्ति को लेकर जरूरी तैयारियां की हैं और किसी तरह की समस्या नहीं है।
1: मैं कहना चाहूंगा प्रदेशवासियों को कि जिस तरह से डीजल पेट्रोल को लेकर लोग पैनिक हो रहे हैं, तो उनको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे प्रदेश में पेट्रोल डीजल गैस की पर्याप्त स्टॉक है और जिस तरह से पहले वो लेते रहे हैं उसी तरह से आगे लेते रहे, किसी भी तरह से उनको मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है।
0: इस बीच राज्य की खाद्य सचिव रीना बाबा साहेब कंगाले ने कहा है कि आम लोगों द्वारा पिछले दो दिनों में पेट्रोल डीजल की पैनिक खरीदी की गई है, जिससे इसकी खपत में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज हुई है। इस कारण कुछ स्थानों पर कृत्रिम अभाव की स्थिति निर्मित हो गई है। उन्होंने लोगों से किसी भी तरह की अफवाह या घबराहट की स्थिति में पेट्रोल डीजल की खरीदी नहीं करने की अपील की है। उधर गरियाबंद कलेक्टर ने पेट्रोल डीजल के वितरण को लेकर निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार दो पहिया वाहन में 300 रुपये और चार पहिया वाहन में अधिकतम 1000 रुपये तक पेट्रोल देने की सीमा तय की गई है। केंद्रीय भूमि संसाधन विभाग के सचिव नरेंद्र भूषण के नेतृत्व में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने धमतरी जिले के मगरलोड विकासखंड का दौरा कर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत वाटरशेड विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। वहीं केंद्रीय सचिव ने सांकरा गांव में वाटरशेड विकास घटक और मनरेगा के अंतर्गत निर्मित स्टॉप डैम का भी अवलोकन किया। प्रतिनिधिमंडल ने सौंगा गांव में 5 एकड़ के वृक्षारोपण स्थल का भी दौरा किया, जहां 1000 से अधिक अमरूद और नींबू के पेड़ लगाए गए हैं। इसी तरह केंद्रीय सचिव ने में नक्शा प्रोजेक्ट की प्रगति का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन समय सीमा में पूरा करने और सर्वे टीमों की संख्या बढ़ाने के निर्देश कलेक्टर को दिए। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आकाशवाणी केंद्र द्वारा वाकाथॉन का आयोजन किया गया। इसमें आकाशवाणी के कर्मचारी, सेवानिवृत्त अधिकारी, समाचार वाचक, श्रोता और शहर के प्रमुख नागरिक शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दूरदर्शन रायपुर के उप महानिदेशक संजय कुमार मिश्रा थे। इस अवसर पर श्री मिश्रा ने कहा कि भारत की राष्ट्रीय यात्रा में आकाशवाणी भागीदार रहा है और आकाशवाणी ने समय के साथ बदलाव को अपनाया है।
2: आकाशवाणी हेरिटेज संस्थान है भारत के लिए। भारत की राष्ट्रीय यात्रा जो रही है, सांस्कृतिक यात्रा रही है, आध्यात्मिक यात्रा रही है, ये सभी में पार्ट रहा है आकाशवाणी। समय के साथ इस बीच में जो बदलाव आए हैं, आकाशवाणी में भी बदलाव आए हैं, डिजिटल रूप से भी उपलब्ध है और सभी चीज़ों में बदलाव को अपनाया है, आत्मसात किया है और आज भी देश की 98% जनता को तक पहुँच है।
0: कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में पत्र सूचना कार्यालय रायपुर के उपनिदेशक रमेश जयभाय और माय भारत के क्षेत्रीय प्रमुख अर्पित तिवारी शामिल हुए। वाकथन आज सुबह लगभग 7 बजे सिविल लाइन्स स्थित आकाशवाणी भवन से शुरू हुआ। ये शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए आकाशवाणी परिसर में ही समाप्त हुआ। आकाशवाणी केंद्र रायपुर के उप महानिदेशक वी राजेश्वर ने बताया कि ये आयोजन आकाशवाणी के गौरवशाली 90 वर्षों के सफर को यादगार बनाने के लिए किया गया है।
3: जो वाकथन एंड मैराथन इसलिए आकाशवाणी ऑर्गेनाइज किया है कि 8 जून 2026 को 90 साल पूरे हो रहे हैं। आकाशवाणी इंडिपेंडेंस दिलवाने में भी उनका योगदान था।
4: इसमें हम लोग जितना डाइवर्सिटी ऑफ डायलेक्ट लैंग्वेजेस में प्रसारण करते हैं तो कोई मीडिया दुनिया में नहीं करते हैं। जिसका लिपि नहीं है उस भाषा में भी हम ब्रॉडकास्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बस्तर रीजन में गोंडी, हल्दी, बटरी का कोई लिपि नहीं है और आकाशवाणी इज ए मदर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए 21 जून को नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा आयोजित करेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि विद्यार्थी सरकार की प्राथमिकता हैं और सरकार उनके लिए संवेदनशील है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री प्रधान ने कहा कि एनटीए ने मेडिकल में प्रवेश के लिए नीट यूजी 2026 परीक्षा दोबारा 21 जून को आयोजित करने की घोषणा की है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्तमान में ओएमआर मोड में आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा अगले वर्ष से कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी माध्यम से होगी।
5: परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाए। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा।
0: श्री प्रधान ने बताया कि विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए अपनी पसंद का शहर चुनने का अवसर मिलेगा। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया गया।

0: समारोह में राज्यपाल रमन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विभिन्न संकायों में प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को 13 स्वर्ण, 7 रजत और 2 कांस्य पदक प्रदान किए। साथ ही 128 शोधार्थियों को पीएचडी, 518 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर और 1234 विद्यार्थियों को स्नातक की उपाधि प्रदान की गई। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि आज कृषि परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, किसानों और युवाओं को भी आधुनिक और उन्नत खेती की ओर बढ़ना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से ड्रोन, एआई और डिजिटल तकनीकों को खेती से जोड़कर किसानों और वैज्ञानिकों के बीच सेतु बनने का आह्वान किया। समारोह में कृषि मंत्री रामविचार नेताम, नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के पूर्व निदेशक डॉ अशोक कुमार सिंह और कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ गिरीश चंदेल उपस्थित थे। रायगढ़ जिले के अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज दिव्यांशु देवांगन ने मिस्र में आयोजित जूनियर वर्ल्ड कप की 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड डबल्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। इस उपलब्धि के लिए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने दिव्यांशु को फोन कर बधाई दी है। उन्होंने विश्वास जताया कि दिव्यांशु भविष्य में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश और प्रदेश का नाम रोशन करते रहेंगे। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में के तहत इस बार गर्मी के मौसम में लू से बचाव और सावधानी पर स्वास्थ्य विभाग की एकीकृत रोग निगरानी परियोजना रायपुर के अधिकारी डॉक्टर विमल किशोर रॉय से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इसका प्रसारण कल 16 मई को आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा FM और प्राइमरी चैनल पर सुबह 9 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर रेल मंडल में आज से पर्यावरण दिवस अभियान शुरू हो गया है। मंडल रेल प्रबंधक दयानंद ने रायपुर रेल मंडल के अधिकारियों कर्मचारियों को पर्यावरण बचाने के लिए दैनिक जीवन में हर संभव प्रयास करने, बदलाव लाने और पर्यावरण के अनुकूल आदतों तथा व्यवहार के महत्व को समझाते हुए शपथ दिलाई। ये अभियान 5 जून तक चलेगा। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई को केरल तट पर पहुंचने की संभावना जताई है। इस बीच छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटों के दौरान कई स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। वहीं एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने तथा आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 17 मई से अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। आज सुबह मौसम का मिजाज बदलने के कारण राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कुछ जिलों में तेज हवा के साथ तेज बारिश हुई। इससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की। मुख्यमंत्री ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और जरूरत के अनुसार ही पेट्रोल डीजल लेने की अपील की। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज रायपुर में वॉकथन का आयोजन किया गया और मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई को केरल तट पर पहुंचने की संभावना जताई। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने के आसार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में।
2: प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7 बजने वाले हैं। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में।

2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7 बजने को है। लीजिए सुनिए हमारे केंद्र से आज और कल के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आज शाम 7:05 पर पेश करेंगे हम सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम चौपाल का प्रसारण समय होगा शाम 7:20 पर। सोशल मीडिया आधारित इंस्टा फरमाइश कार्यक्रम हम लेकर आएंगे रात 8 बजे। फरमाइशी कार्यक्रम ईमेल की गूंज सुनेंगे आप रात 9:30 पर। शास्त्रीय राग पर आधारित कार्यक्रम राग प्रधान का समय होगा रात 10 बजे। पत्रों पर आधारित फरमाइशी गीतों का लोकप्रिय कार्यक्रम मन भावन सुनेंगे आप रात 10:30 पर। ये थी आज के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अब बताएंगे हम आपको कल शनिवार दिनांक 16 मई 2026 के कार्यक्रमों की रूपरेखा। कल रात 10 बजे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम का अनुप्रसारण समय होगा और रात 9:30 पर अखिल भारतीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का अनुप्रसारण किया जाएगा। ये दोनों कार्यक्रम हम दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। कल सुबह 8:30 पर कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह का अनुप्रसारण हम रायपुर केंद्र से करेंगे और सुबह 9 बजे कार्यक्रम बातों बातों में का अनुप्रसारण किया जाएगा। ये कार्यक्रम भी हम रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। हमारे केंद्र से सुबह 6:05 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना और शाम 5:05 पर कार्यक्रम भजन संध्या का प्रसारण किया जाएगा। सुबह 6:30 पर कार्यक्रम विचार बिंदु और पुनः प्रसारण समय होगा शाम 6:05 पर। कार्यक्रम रामचरितमानस आप सुनेंगे सुबह 6:35 पर। सुबह 6:45 पर कार्यक्रम खेती की बात का समय होगा और पुनः प्रसारण समय दिन के 1:05 पर। लोक संगीत के कार्यक्रम गूंजे जंगल का समय होगा सुबह 7 बजे और कार्यक्रम गोधूली आप सुनेंगे शाम 6:20 पर। बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन हम लेकर आएंगे दिन के 1:10 पर। कार्यक्रम सुगम संगीत हम पेश करेंगे सुबह 7:15 पर। सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा हम लेकर आएंगे शाम 7:05 पर। पुराने फिल्म संगीत और समाचार सुनेंगे आप कार्यक्रम नमस्कार सरगुजा में सुबह 7:30 पर। शाम 7:20 पर लगेगी ग्रामीण श्रोताओं की चौपाल और साथ ही होगी किसानवाणी शाम 7:30 पर। कल सुबह 9:15 पर बातों और गीतों का कार्यक्रम गुंजन का प्रसारण समय होगा। सुबह 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम नए तराने। पत्रों पर आधारित लोकप्रिय कार्यक्रम आपकी पसंद हम लेकर आएंगे सुबह 11:05 पर। दिन के 12 बजे आप सुनेंगे मिश्रित गीत संगीत का कार्यक्रम सबरंग। लोकप्रिय कार्यक्रम ईमेल की गूंज प्रस्तुत करेंगे हम दिन के 1:40 पर। प्रायोजित कार्यक्रम हमार हाथी हमार गोट का समय होगा शाम 5 बजे। शाम 5:30 पर हम लेकर आएंगे युवा श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी। श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।

पेश करेंगे हम रात 8 बजे, दिन के 12:30 पर। जफर हुसैन खां और साथी की आवाज़ों में सुनेंगे आप कार्यक्रम कव्वालियाँ। कार्यक्रम गीत गंधा हम पेश करेंगे दिन के 2:30 पर। कार्यक्रम माधुरी का आनंद आप लेंगे शाम 6:30 पर। और कार्यक्रम चित्रपट संगीत सुनेंगे आप रात 9:15 पर। ये थे हमारे केंद्र से आज और कल के प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। शाम के 7:05 हुए हैं। पेश है सुगम संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम की शुरुआत में पेश है जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ों में ये गज़ल।

चौपाल सुनो या जमो किसान भैया बहनी मनला राम राम जय जोहार। देखिए किसान भैया बहनी हो, आज दिन विशेष कर ग्वेट करी तो आज दिन है देखिए 15 मई और 15 मई के मनाल जाते अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस देखिए हर साल जैसे कि 15 मई के मनाल जाते और एकर शुरुआत कर ग्वेट करी तो 1993 में करल गए रहीस। और ये जो एकर उद्देश्य कही परिवार कर महत्वला समझना, समाज में परिवार कर भूमिका कर प्रति जागरूकता बढ़ाना मुख्य उद्देश्य है। बाकी अगर आओ ग्वेट करी तो देखी भाई परिवार कर महत्वला हमनला समझना पड़ी। रिश्ता नाता सगा संबंधी कर जब बात होते देखी परिवार जब बात आते जहाँ भी दाई दादा होते दादा दादी होते परिवार से जुड़ कर ही हमन जो है सामाजिक कही ले चाहे आर्थिक चाहे सांस्कृतिक समस्या पर हमन ध्यान ला आकर्षित कर सकत हन और एक तरह से विकास कर रास्ता में आगू बढ़ सकत हन। परिवार में देखी आपसी प्रेम होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए और एक दूसरे कर दुख दर्द ला समझना बहुत जरूरी है। जब हमन एक दूसरे कर दुख दर्द ला समझे कर प्रयास करबो, एक दूसरे कर सहयोग करबो तो निश्चित रूप से हमन ये कही कि आगे बढ़बो। जो नानु नानुक लड़का मन है चाहे महिला मन है चाहे बुजुर्ग जो हैं हमार जो बूढ़ा बाबा मन है उमन ला भी हमन ला ध्यान देना है, उमन कर अधिकार कर सुरक्षा पर भी हमन ला जागरूक रहना है। और परिवार देखी हमार अगर जब समाज कर बात करथन किसान भैया बहनी हो तो समाज कर सबसे अगर कोई छोटा इकाई है तो वो है हमार परिवार। और परिवार ही कही तो हमार मनसे मनक जो हमार संस्कार है जो शिक्षा सुरक्षा और एक तरह से कही नहीं तो भावनात्मक सहयोग जो है हमला भेंटा थे। एक मजबूत परिवार से ही मजबूत समाज कर निर्माण होते और जब मजबूत समाज कर निर्माण होते तो निश्चित मानी कि वह राष्ट्र कर निर्माण में भी बहुत बड़ा योगदान देते। किसान भैया बहनी हो, ये समय हमन देखत हन कि आजकल अब एकल परिवार होत जाता है। पहले ऐसा न रहीस कि भाई हमन संयुक्त परिवार में रहत रहें, पूरा एगो बरगद कर पेड़ नियर हमार एगो परिवार रहे जहाँ दादा रहें जहाँ फिर भाई पूरा बहू होगी मझली बहू होगी छोटी बहू कही चाहे दादा कही ले चाहे दादी कही ले मतलब पूरा भरा पूरा परिवार गांव में देखे में मिले। लेकिन आजकल देखत हन कि भाई हमन दिनों दिन ये कही कि संयुक्त परिवार कर जो प्रथा है वह धीरे धीरे घटत जाता है। लेकिन हमनला ध्यान रखना है कि संयुक्त परिवार चाहे एकल परिवार में रहतन तो माया प्रेम हर बने रहे, रिश्तेदारी नातेदारी जो हमार बीच है उला बनाए के रखना है। काबर कि जब परिवार अगर सुघर है उनला अच्छा संस्कार मिलता है लेके छुआ मनला तो ही मन जो है शिक्षा के माध्यम से आगे मन बढ़ा सकते हैं। तो निश्चित रूप से मजबूत परिवार ही सुखी समाज कर और विकसित राष्ट्र कर आधार होते नींव होते। आज के समय में देखिए परिवार कर महत्व तो बढ़त जाता है। ये व्यस्तम कही कि आपाधापी में जीवन शैली हमार जो है परिवार बनकर दूरी हर हमार बढ़त जाता है। ऐसन में हमार अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस ला मनाए कर उद्देश्य यही है कि हमन अपन परिवार के संग संग समय बिताई, उमन ला प्रेम उमन ला सम्मान दई और एक दूसरे कर विचार ला समझी सुख दुख ला समझी और जो हमार पारिवारिक जिला कथी मूल्य ओहर मजबूत बने रहे ये बात कर ध्यान रखी तभी जाके हमार ये सार्थकता हुई कि आज हमन अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस में ये जरूर ध्यान रखी कि हमार घर कर जो लड़का हैं सियान हैं चाहे जवान हैं सब कर सम्मान सब कर एक दूसर कर सहयोग और सम्मान और श्रम करब तबे जाके हमन आगे बढ़ब। श्रम कर बात करत ही तो मतलब खेती किसानी में मिलजुल के भाई जब हम खेती किसानी करबो तो भाई हमार फसल अच्छा लहलहा ही फसल उत्पादन अच्छा हुई और अच्छा हुई तो ये मान

के चली कि हमारे जीवन में बदलाव आई। बाकी एक गोट और मैं कहना चाहूँ किसान भैया बहनी हो, देखिए कहते हैं कि भाई स्वस्थ ईंधन से ही हमर जो घर कर माता बहनी मन है उमन स्वस्थ रह सकत है। उकर पर सरकार कति ले एक बड़ा सुघर यदि योजना लागू करल गई है, रउरे मन जानते ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हमर भारत सरकार कर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योजना है और एकर शुरुआत 2016 में करल गए रही। ये योजना कर उद्देश्य कहीं नहीं तो जो हमर गांव कर जो गरीब हैं, जो हमर ग्रामीण परिवार हैं, जो महिला मन हैं उमन ला धुआं से जो है आज़ादी दिलाए बर ये योजना ला लागू करल गई से है। जे में एक ही कि जो धुआं से हमन पहले हमन ये रही कि भाई लकड़ी से खाना बनावत रहें और लकड़ी में इतना धुआं निकले कि घर कर पूरा छानी जो है धुएं धुआं हो जाए। तो हमन ला ध्यान रखना है कि भाई हमन अगर लकड़ी भी जला थी तो सूखा लकड़ी ला जले, ये नहीं कि भाई एकदम टोयर लानेन जंगल पहाड़ ले और तुरंत तुरंत हमन जला तहन तो ओकर से धुआं भी निकले। अब वो धुआं हर हमर लिए बहुत हानिकारक है। ये हमर खास करके जो दाई मना है, दीदी मना है, महिला मना है, इमन ये चीज ला जो है झेल थे। तो हमन यही ध्यान रखे कि जो महिला मन कर जो धुआं से होए वाले बीमारी भी बहुत है, देखी बरन बरन कर बीमारी होते तो उकर से भी हमन ला बचाना है। और स्वच्छ वातावरण रही, सुरक्षित ईंधन अगर हमन ला मिलत है और हमन आज के समय में देखी गैस कर जमाना है किसे है, तो निश्चित रूप से हमन अगर गैस कर प्रयोग करते तो ये धुआं से हमन बच सकते है। ग्रामीण क्षेत्र में देखी नहीं स्वास्थ्य बर और स्वच्छता बर बरन बरन कर भाई जागरूकता कार्यक्रम चलाल जाते। तो हमारे जो महिला मन है घर कर जो चूल्हा चौकी में जो काम करे वाला दीदी मन है उमन कर जीवन ला सरल बनाना है और सुरक्षित बनाना है तो हमन ला देखी स्वस्थ ईंधन कर प्रयोग करना है। और स्वस्थ महिला तबे रही जब हमन स्वस्थ ईंधन कर प्रयोग करो और स्वस्थ ईंधन तब हो ही जब रसोई धुआं मुक्त बनी हमर जो महिला मन है, दाई मन है, दीदी मन है उमन कर स्वास्थ्य में सुधार हो ही। और संगे संगे एक बात है, देखिए चूल्हा में जब हमन बनाथन ना खाना पीना तो चटिको में ढेरे दे समय हर लागेल, लेकिन अगर हमन गैस में बनावत हन तो हमर समय कर भी बचत होता है और खाना जो है हालू तैयार भी हो जाते। और दूसर बात सबसे बड़ा जो समस्या कर जब हमन गोइट करतन तो जो पर्यावरण प्रदूषण है वो पर्यावरण प्रदूषण में कमी आई। तो महिला मन कर जो हमर समय है वह उहर बाँची, श्रम जिला हमन मेहनत का थी वह उहर बाँची। तो निश्चित रूप से अगर मैं बता दूं कि भाई ये योजना का लाभ लेना है तो भाई सरकार कतिले निःशुल्क गैस कनेक्शन भी दिया जाता है। तो निश्चित रूप से ये ला हमन प्रयोग करके स्वस्थ ईंधन ला अपना के स्वस्थ जीवन ला हमन पा सकत हन। तो किसान भैया बहनी हो, खास करके दीदी हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कर माध्यम से ये सिर्फ ये गैस योजना नहीं है, ये बात कर ध्यान रखी। यह हमार महिला मन कर स्वास्थ्य कर बात है, सम्मान कर बात है और सशक्तिकरण कर बात है। तो बड़ा अभियान है स्वस्थ ईंधन कर उपयोग ला करी और हमार परिवार ला, हमार समाज ला विकास कर रास्ता में महत्वपूर्ण योगदान ला रौरे मन दे। तो बाकी मैं कहते रहें देखिए गोट बात तो होते रहेल और हमन हमेशा भाई रोज दिन कुछ न कुछ यदि नवा विषय ला लेके गोट बात चर्चा करत रहन। और चर्चा कर संग संग देखिए जब हमन गीत गोविंद सुना थन तो कसमें चटिक मन हर अव हरियर हो जाए। तो बड़ा सुघर में एक छत्तीसगढ़ी लोकगीत रौरे मन पर लाने हो, कविता वासनिक और उनकर संगीता मन गाल गीत है। तो मैं तो कहत रहन कि चलिए गीत ला सुन ली।

बड़ा सुघर देखिए गीत शहर डहर के जवैया चिकन चाकन के रवैया एक गीत हर मन ला तो देखी नहीं हरियर कर दे और रौरे मन ला भी अच्छा लागिस वही बाकी जहाँ देखी अभी कर समय माया प्रेम कर गीत रहीस और यही माया प्रेम कर बात में अभी करत भी रहन कि आज हमार अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस है तो एक दूसरे से मिलजुल के सहयोग से आपस में दुख सुख ला बाँट के हमन अपन ये जिंदगानी ला चलाना है। बाकी बात करी खेती पाती कर देखिए आजकल में हमन देखत हन कि भाई जो फल है खास करके फल फसल प्रबंधन कर बात करी तो जो आमा मन है उमें कौन तरह से हमन देखभाल करी उकर सुरक्षा कैसे करी ताकि हमार आमा हर बढ़ियन जो है उत्पादन होए अच्छा फसल उत्पादन होए और ध्यान रखना जरूरी है काबर कि अभी कर जो समय है सही प्रबंधन से ही हमार जो पेड़ है जो उकर बढ़भार हो ही और अच्छा हो ही और रोग और कीट मन से भी हमन उला बचा सकत हन। बहुत किसान भैया बहनी मन आजकल देखत हन कि आमा कर बगीचा भी लगाई है तो उमे कुछ बात कर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात जब अगर हमन बागवानी लगाए हैं ना वो आमा कर तो खास करके सिंचाई प्रबंधन कर बात करिए तो देखिए भाई गर्मी कर समय में नहीं नियमित सिंचाई करना बहुत जरूरी है काबर कि छोटा छोटा जो पौधा है अगर लगाए ही रहो रे तो 7 दिन 10 दिन के अंतराल में कोशिश करी कि उनमें पानी देते रही। जब अगर फल बने कर समय आएगी सह तो ध्यान रखी कि उनमें पर्याप्त नमी बने रहे संगे संगे बरखा कर जब समय आए तो उस समय हमारा ध्यान रखना है कि अगर निकासी कर उचित व्यवस्था जरूर रहो रे करी और खाद और उर्वरक कर गोइट करी। जब हमारा आम कर जब

करत हन, आम पेड़ कर जो पौधा लगाए हन ओकर बात करत हन, तो निश्चित रूप से भाई खाद और उर्वरक कर बहुत बड़ा भूमिका रथे। तो खाद और उर्वरक कर जब हमन गोइट करथन तो देखी गोबर खाद बहुत फायदेमंद है एकर पर, और जो भी गोबर कर सड़ा खाद है ओला जरूर डाली, खास करके देखब कि नाइट्रोजन होइस, फास्फोरस होइस, पोटास होइस, एकरो मात्रा ला रौरे मन संतुलित में मात्रा में दे। उर्वरक कर पेड़ कर छाया कर अनुसार गोलाई में डाली तब बहुत अच्छा जो है हो ही, और संग संग पेड़ कर सफाई और कटाई छटाई तो रौरे करते रही। सूखा होइस चाहे रोगग्रस्त कोई भी जो पतई मन है ओला अगर देखा तहन तो तुरंत काट दे या ओला अलग फेंक दे। पेड़ कर आसपास कोई अगर कोई खरपतवार है बहुत सारा घास फूस मना है तो ओला भी साफ कर दे। खास करके जो घना शाखा कर जो जैसे रहेल बहुत ज़्यादा पतई मन रहेल और देखा तहन कि फिर ढेरे जो है किरवा मन या कीट मन जो है उड़ाए लगते हैं, तो ये चीज़ कर ध्यान रखे कि छटाई जरूर कर दे, हवा और प्रकाश कर संचार बने रहे ये बात कर ध्यान जरूर रखी। खास करके देखिए आम में जो लगे वाला अगर हमन कीट कर गोट करी तो इनमें आम कर हापर रोग लगेल, फल मक्खी लगेल, तो ये सब बात कर ध्यान रखी। एक तो पाउडरी मिल्ड्यू है तो ये सब मतलब अगर देखा मिलत है तो निश्चित रूप से ओकर समाधान रोगे जरूर करी। बचाव उपाय कर जब हमन बात करब तो समय पर देखी कीटनाशक और फफूंदनाशक कर छिड़काव जरूर करी। अगर कोई फल या कोई पतई मन में कोई संक्रमित रोग दिखता है तो खास करके पतई मन में अगर दिखता है तो वाला हालू हालू जो है नष्ट कर दे। बगीचाला आसपास साफ सफाई करके रखी, पानी निकासी कर व्यवस्था बनाए के रखी, बगीचाला स्वस्थ बनाए के रखी, तब जाके हमार जो आमा कर बगीचा है उहर बढ़िया हो ही। फल लगे कर समय एक बात कर ध्यान रखी कि तेज हवा अगर आवत है या चरई चुनगुन मना है तो ऊपर से भी हमन लब बचाव करना है। संगे संगे देखी भाई अगर हमन फल सुरक्षा कर गोट करी तो जब बहर घाटा आते ते समय ज़्यादा हमन ला ध्यान रखना पड़ेल, तो फल अनुसार जैसे कहते हैं कि फल बैकिंग तकनीक जो है अपनाए सकत ही रौरे मन, और गर्मी से बचाव जरूर करी। छोटा पौधा कर आसपास जो है मल्चिंग जरूर करी। तेज धूप से बचे पर पौधा कर सहारा और छाया भी होना बहुत जरूरी है। किसान भैया बहनी हो ये कही कि जो फसल प्रबंधन में आम कर पेड़ कर सुरक्षा देखभाल कर जब हमन गोइट करथन ना तो उचित देखभाल तब हो ही जब अच्छा से हमन ओकर तिहा जतन करब, और जब अच्छा से तिहा जतन करब तो मान के चले कि उत्पादन हमर अच्छा हो ही, फल कर गुणवत्ता अच्छा हो ही, और हमर जो पेड़ है ओकर उम्र घलुक बड़ा बाढ़ी, और जब फल हो ही मान के चली तो फसल जब अच्छा हो जाही फल होए लगी तो ओला बाजार में जब हमन बेचब तो निश्चित रूप से हमार आय में वृद्धि होई। और यही उद्देश्य है कि हमार जो बागवानी लगात हन चाहे खेती किसानी करत हन चाहे सब्जी वर्गीय फसल लगात हन हमन ला लाभ मिलना चाहिए किसान भैया बहनी। और आज जरूरत है कि हमन आधुनिक पद्धति से आधुनिक तकनीक से अगर खेती करब ना तो निश्चित रूप से हमन अच्छा उत्पादन करब, और अच्छा उत्पादन करब तो ओकर से लाभ हमन ला आर्थिक लाभ जो है जरूर मिले। तो स्वस्थ आमा कर पेड़ रहे, एकर बेहतर उत्पादन होए और अधिक लाभ होए, यही हमार उद्देश्य है कि रौरे मन जो है जब भी अगर कोई रोग राई दिखत है तो ओला हालू हालू जाके ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मन से संपर्क करके ओकर दवाई कर छिड़काव जरूर करी। तो ये तरह से अगर फल फसल प्रबंधन करके रौरे अच्छा आमदनी प्राप्त कर सकत है। बाकी देखी भाई आज दिन है सुई सूख कर, और शुक्रवार के हमार स्मार्ट कृषि कर तहत आज कर विशेषज्ञ क्रम होते जिनमें आज जो है डॉक्टर पी के भगत वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, सहायक प्राध्यापक राजमोहनी देवी कृषि महाविद्यालय अंबिकापुर कर, तो उनकर से गोइट बात मैं करे हूँ कि कद्दू वर्गीय सब्जी में जो कीट प्रबंधन लगेल ओला कैसे कैसे भाई हमन उपचार कर सकत है, ओकर कैसे हमन जो है समसामायिक प्रबंधन कर सकत है, तो लगी ला सुनत है।

किसान भैया बहनी हो, आज विषय विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर पीके भगत, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं सहायक प्राध्यापक कीट विज्ञान, राजमोहनी देवी कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र अजीरमा अम्बिका।

0: टापुरकर, इनकर बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा कर जो विषय है कद्दू वर्गीय सब्जी में समसामयिक कीट प्रबंधन, तो सबसे पहले रावर के बहुत बहुत स्वागत है।
1: हाँ नमस्कार।
0: जैसा कि ग्रीष्मकालीन भाई समय चलता है, कद्दू वर्गीय सब्जी इनमें देखा था कि बहुत सारा कीट मन देखे पर मिलते हैं, तो सबसे पहले बताते हैं भाई कि कौन कौन तरह से कीट लगेल और का प्रबंधन करी।
1: सबसे पहले किसान भाइयों को नमस्कार। और जैसे हम जानते हैं कि हम यहाँ उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र में निवासरत हैं, जो विशेषकर कि सरगुजा अंचल है, और यहाँ देखते हैं कि किसान अक्सर जो है अपने खेतों में जो गर्मी के सीजन में निश्चित रूप से जितने भी जो हमारे कद्दू वर्गीय फसल हैं, जैसे हम कहते हैं खीरा हो गया, लौकी हो गया, ककड़ी हो गया, कद्दू हो गया, करेला हो गया, तो इस प्रकार की जो फसलें जो किसान लगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा उसमें कीट और रोग का जो है प्रकोप होता है, जिससे हमारी फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान होती है। तो किसान भाई विशेष करके ध्यान दें, जब भी हम जो है कद्दू वर्गीय फसल लगाएं तो उसका व्यवस्थित ढंग से हमको जो है उसका मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। और जब तक हम उसका मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। और किसान भाइयों को मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि कद्दू वर्गीय जितने भी मैं नाम अभी गिनाया किसान भाइयों के लिए, जो भी फसल का नाम गिनाया हूँ, उसमें विशेष करके दो जो कीड़े हैं, एक कद्दू का लाल कीड़ा होता है और दूसरा है आपका फल मक्खी बोलते हैं। ये दो कीड़े हैं जो सबसे ज्यादा खतरनाक जितने भी हमारे जो कद्दू वर्गीय फसल हैं इसमें ज्यादा नुकसान करते हैं। तो किसान भाइयों को ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, आसानी से जो है ये नियंत्रित हो जाते हैं, लेकिन सही समय पे उसका हम अगर मैनेजमेंट करें, सही समय पे हम उसका दवा डालें, तो निश्चित रूप से जो है हम उससे जंग जीत जाएंगे। अब देखिए थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि जब कभी भी हम जो है कद्दू की फसल अपने खेतों में लगाते होंगे तो निश्चित रूप से हम देखते हैं सुबह सुबह जब भी हम जाते हैं तो हमारी कद्दू की जितने भी जो पत्तियाँ हों उन पत्तियों को जो है कुछ कीड़े जो है सुबह के समय में काटती रहती हैं, जिससे हमारी फसलों में जो है भोजन की प्रक्रिया धीमा हो जाती है। तो किसान भाई जो है उसी समय हमको जो है प्रयास ये करना चाहिए, जिस समय हमारे फसलों में कीड़ों का आक्रमण रहता है उस समय हमको दवा का जो है छिड़काव करना चाहिए। तो दवा भी कोई विशेष करके हमको अलग से डालने की जरूरत नहीं है, एक नॉर्मल दवा है, जैसे हम बोलते हैं क्लोरोसाइपर, आजकल हम देखते हैं हर दुकान में हमारे पास उपलब्ध है, 2 ml दवा डाल दें और हमको जो है 15 लीटर में 30 ml दवा की जरूरत पड़ेगी प्रति लीटर, है ना। तो इस प्रकार की स्थिति में यदि हम प्रयास करें तो निश्चित रूप से जो है कद्दू की फसलों में जो है कद्दू के लाल कीड़े से हमको निजात मिल जाएगा। बशर्ते कि किसान भाई ये ध्यान दें कि सुबह के समय में धूप निकलने से पहले उसका छिड़काव करें तो उसका असर अच्छा होगा।
0: मैंने बिहाने भी,
1: हाँ बिल्कुल, नहीं तो फिर क्या होता है कि कद्दू की जैसे भी जो लाल कीड़ा है वो जैसे धूप होता है तो धूप के बाद जो वहाँ से उड़ के दूसरे स्थान चली जाती है। ऐसी जो है हमारी कद्दू की जो फल मक्खी बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा जब हमारे फसलों में जो है फल लगने लगे हैं तो और फल जो है हमारे ज़मीन पर लेटे हुए हैं, तो इस प्रकार की स्थिति में जो है नीचे से, क्योंकि ये जो फल मक्खी है ये ज़मीन में ही रहते हैं और वहीं से निकलने के बाद जो है एक छोटा सा छेद करके अंदर की ओर घुस जाते हैं, जिससे पूरा फल जो है हमारा सड़ा हुआ नजर आता है। तो ये सब चीज़ हमको प्रयास करना चाहिए, इसके लिए भी हमको जो है क्लोरोसाइपर हो गया, हमारा फ्लुबेंडियामाइड हो गया, हमारा जो है क्लोरेंट्रीप्रोल हो गया, लेमडासाई हेलोथ्रिन हो गया, इस प्रकार की जो दवाइयाँ हैं जो मार्केट में उपलब्ध हैं उसको सही समय पर सही मात्रा में उसका अगर हम प्रयोग करें तो निश्चित रूप से जो है बहुत ज़्यादा हमको फायदा होगा।
0: देखिए बहुत अच्छा राउर बताता हन कि कद्दू वर्गीय सब्जी में कीट प्रबंधन कैसे करी, खास करके जो भी हमारे किसान भैया बहनी मन लगाना है, जैसे रौरे कहन की लौकी हो, इस कद्दू करेला खीरा। बाकी बात करी देखिए भाई कद्दू वर्गीय सब्जी में फल मक्खी में जो होए वाला नुकसान कर गोइट करी, तो कहाँ का नुकसान होते?
1: तो विशेष करके हम देखते हैं जब भी हम फल मक्खी की बात करते हैं तो जब हमारे फसल जो है में फल लगने लगे हैं तो उस पीरियड में हम देखते हैं कि हमारे कद्दू जो है या हमारे खीरा जो है या हमारा जो है करेला है या जो भी हमारी कद्दू वर्गीय जो फसल है खुमड़ा वगैरह है, तो इस प्रकार की स्थिति में बाहर से देखने पे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखता है, लेकिन जब कभी उसको हम काटेंगे तो यह तो पूरा जो है आपको सड़न निकलेगा, तो जब भी सड़न की प्रक्रिया होगी तो निश्चित रूप से उसका बाजार मूल्य जो है हमारा कम हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम उसको टेकी लगाएं। आजकल हम देखते हैं कि हम कद्दू को या कोई भी इस प्रकार की कद्दू वर्गीय फसलों को हम लगा देते हैं, उसके बाद में जो है जमीन पर लेटा रहता है, उससे उनका प्रकोप जो है और ज़्यादा बढ़ता है। इसलिए हमारा एक प्रयास होना चाहिए कि जब हम जो है प्रयास करें थोड़ा स्टिकिंग लगे और फल जो है ऊपर रहे, और साथ में जो है आजकल फल मक्खी का एक ट्रेप आता है, उस ट्रेप को यदि हम लगा देते हैं उस ट्रैप में क्या रहता है, एक हमारा जो है सेप्टा जिसको हम बोलते हैं, तो सेप्टा लगाने से क्या होगा कि पूरे जितने भी जो नर मादा हैं वो पूरे जो है आकर्षित हो जाएंगी और धीरे धीरे जो हो उसमें हमारे ट्रैप में कैप्चर हो जाएंगी। तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि इस प्रकार की ट्रैपों को जो है और सस्ते में दामों में जो मिलते हैं इसको हमको लगा के जो है जितने भी हमारे जो इस प्रकार के कीड़े हैं उन कीड़ों को हमको नियंत्रण करना चाहिए। अगर इससे भी हमारा नियंत्रण नहीं हो पा रहा है तो अमुक दवाई जैसे अभी बता रहा था किसान भाइयों को, जैसे हमारा जो है क्लोरोसाइपर हो गया, इमामेक्टिन बेंजोएट हो गया, इंडोक्साकार्ब हो गया, हमारा जो है क्लोरो ट्रेनिप्रोल हो गया, इस प्रकार की चुनिंदा जो दवाइयां हैं जिसका सही समय पे हमको जो स्प्रे करना चाहिए और स्प्रे करने के बाद जो है निश्चित रूप से उसका जो है नियंत्रण हो जाएगा। दूसरी चीज़ है किसान भाइयों को ये भी कहना चाहूँगा कि जब कभी भी जो हम इस प्रकार की स्प्रे करते हैं तो फूल वाली अवस्था में हमको स्प्रे से थोड़ा सा बचना चाहिए, नहीं तो क्या है फूल भी झड़ जाएंगे तो हमारे कल के दिन में फल की गुंजाइश हमारी नहीं हो पाएगी।
0: भाई कद्दू वर्ग की सब्जी में जो फल मक्खी से हो वाला नुकसान और उसका प्रबंधन कैसे करें इसके बारे में बहुत अच्छा रहुरे बतात हन। बाकी एक बात हमन ला सुने पर मिले एकीकृत कीट प्रबंधन, तो यह का है और इला कैसे हमारे किसान भैया बहनी मन उपयोग करें?
1: तो किसान भाइयों को विशेष करके जब भी हम जो है एकीकृत कीट प्रबंधन की बात करते हैं या समन्वित कीट प्रबंधन की बात करते हैं तो ये एक इस प्रकार का कीटों को नियंत्रण करने के लिए एक उपाय है जिसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले आजकल हम पहला जो उपाय है जैसे हम बोलते हैं ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें, ये प्राकृतिक नियंत्रण इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम अपने लेवल पे जितना भी हम प्रयास करके देखते हैं, चूंकि जो हमारी फसल है और फसल के जो कीड़े लगते हैं वो जमीन के नीचे रहते हैं, तो उसमें हम लोगों ने देखा है कि हमारे कीड़े तो नीचे हैं, वहीं अंडा पनप रहे हैं, वहीं उनका जो है निम्फ हो रहा है, वहीं उसका प्यूपा बन रहा है, तो इस प्रकार की स्थिति आती है। तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि जहाँ भी इस प्रकार की चीज़ें लगा रहे हैं तो वहाँ घासों की साफ सफाई कर लें, हम मिश्रित वाली जो फसल है उस प्रकार की चीज़ों को लगाएं, दूसरी चीज़ क्या है हम मेड़ों की साफ़ सफाई करें, साथ ही साथ जो है हम जो उसको जितने भी हमारी जो फसल हैं उसको जो है हम ऊपर में लगाएं, फल भी ऊपर में हमारा हो, जमीन में लिटा के ना रखें, ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें ताकि हमारी मिट्टी जो है ऊपर की ओर आ जाए, तो जितने भी हमारे जो हानिकारक कीड़ों के जो भी अंश होंगे वो सारी चीज़ें हमारी नष्ट हो जाएंगे। दूसरी जो है प्रक्रिया ये है जैसे हम विशेष करके कहते हैं यांत्रिक नियंत्रण, तो यांत्रिक नियंत्रण में हम देखते हैं किसान भाइयों को विशेष करके देखता हूँ कि कुछ इस प्रकार के हमारे कीट रहते हैं जिसकी जो वास्तव में जो नेचर होती है वो नेचर हमारा जो है कोई रात्रिचर हो जाता है, कोई दिनचर हो जाता है, कोई जो है हम क्रेपस्कुलर की हम बात करते हैं, तो इस प्रकार की स्थिति में जहाँ जहाँ हमको जो है ट्रेप लगाना चाहिए, ट्रेप के साथ साथ जो है प्रकाश प्रपंच की हमको व्यवस्था करना चाहिए, शाम को अगर हम 3 घंटे अगर हम बल्ब को जला के रख दें उसके नीचे हम घमेले में केरोसिन और थोड़ा सा पानी हम डाल दें या कोई भी इंसेक्टिसाइड थोड़ा सा डाल दें तो वो जो है प्रकाश की ओर आएंगे, उसके बाद में धीरे धीरे जो है वो गिर के वहाँ नष्ट हो जाएंगे। अगर हम जो है मेल और फीमेल को ही हम कैप्चर कर लेंगे तो कल के दिन में उसकी संतति का विकास कम हो जाएगा। तीसरी बात आती है हमारा जो है जैविक नियंत्रण।
0: अच्छा,
1: तो जैविक नियंत्रण में हम देखते हैं जीवों के माध्यम से जीवों को ही मारना, तो इस प्रकार की स्थिति में जो है विशेष करके जो भी इस प्रकार के कीट हैं और विशेष करके इसके में हम देखते हैं कि इसमें जैविक नियंत्रण बहुत ज्यादा कारगर नहीं है,
0: नहीं है,
1: फिर भी हमारा प्रयास करना चाहिए कि हम जितने भी कुछ इस प्रकार के कीटों को मारने के प्रयास है उसको हमको करना चाहिए, लेकिन विशेष करके ध्यान देना चाहिए कि जो भी हमारे जो ब्रह्मास्त्र हैं, तो ब्रह्मास्त्र में हम देखते हैं आजकल जो है हम विशेष करके जो प्रयास करते हैं हमारी जितने भी जो रासायनिक दवाइयां हैं, जो जहर हैं, उन जहरों को जो है हम बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। साथ ही साथ हमारा ये भी ध्यान होना चाहिए कि हमारा फल तो अगर लग रहा है और फल को हमको जो है बाजार में बेचना है, तो किसान भाई क्या करता है कि इस प्रकार की कीटनाशी का हम चुनाव करें कि हमारे कीट ही जो है उससे मरे, उसकी जो प्रतीक्षा अवधि हो प्रतीक्षा अवधि भी हमारी कम रहे, तो हम जो है बाजार में हम उस चीजों को उस फल को हम बेच रहे हैं तो हमारे जितने भी जो लेने वाले जो ग्राहक होंगे, जो खाने वाले उसको जो है कंज्यूम करने वाले जो भी लोग होंगे उसमें उसका जो है किसी प्रकार का जो है नुकसान ना हो, तो इस प्रकार की दवाइयों का तो यही जो है हमारा एक समन्वित प्रयास है कि हम चारों में से किसी न किसी चीज को हम प्रयास करें ताकि हमारी कल के दिन में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो।
0: देखिए बहुत सुघर रहुरे एकीकृत कीट प्रबंधन के बारे में बताएं, खास करके जब हमन सुनथन कि भाई जब कीट लग जाए तो नीम तेल का भी उपयोग करना चाहिए, तो क्या ये जो हमारे सब्जी वर्गीय फसल है इसमें नीम तेल का उपयोग करल जा सकता है या नहीं?
1: बिल्कुल हम कर सकते हैं। आज हम देखते हैं कि हमारे जिंदगी में या सामान्य जीवन में हम

0: कई प्रकार के जो है रोगों से ग्रसित होते हैं, तो इस प्रकार की स्थिति में हम देखते हैं कि एलोलोपैथिक का भी सहारा लेते हैं, होम्योपैथिक का भी सहारा लेते हैं, आयुर्वेदिक का सहारा लेते हैं। तो ऐसी जो है जितने भी हमारे जो ब्रह्मास्त्र हैं, जो रासायनिक दवाइयां हैं, इन चीज़ों का प्रयोग हमको बाद में करना चाहिए। इससे पहले हमारा ये प्रयास करना चाहिए कि जितने भी हमारे जो जैविक कीटनाशी हैं, जैसे हम देखते हैं आजकल नीम के माध्यम से, थूजा के माध्यम से, बेसर्म के माध्यम से कई प्रकार की जहर हमारी निकल रहे हैं, जिसकी जो जहर की क्षमता सिर्फ जो है उन्हीं कीटों को मारने के लिए है, बाकी किसी प्रकार के नुकसान जो है ना वातावरण में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ उसकी जो प्रतीक्षा अवधि है वो भी कम है। हमको प्रयास ही करना चाहिए कि जितने भी हमारे जो जैसे आजकल हम देखते हैं नीम से जो बना हुआ नीम की पत्तियों का हम अर्क बना के जो है हम घोल के कर सकते हैं, इसका जो है मार्केट में दवाई आ रही है जिसको हम कहते हैं एजारेक्टिन कहते हैं, उसका भी हमको प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार की दवाइयों को भी यदि हम प्रयोग करते हैं तो इससे क्या हमारी प्राकृतिक जो है किसी प्रकार से दूषित नहीं होगी और कंज्यूम करने वालों को भी किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं
1: नहीं
0: होंगी।
1: वही बहुत सुघर रहो रे जानकारी देन किसान भैया बहनी हो, देखिए बहुत अच्छा जानकारी हमारे लिए भेटाइस। और आज हमारे बीच रहिन विषय विशेषक कार्यक्रम में डॉक्टर पी के भगत, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं सहायक प्राध्यापक कीट विज्ञान राजमोहनी देवी कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र अजीरमा अंबिकापुर कर। बहुत राउर के धन्यवाद।
0: हाँ,
1: राउर एतेक सुघर जानकारी देहन, निश्चित रूप से हमारे किसान भैया बहनी मनला एकर से बहुत लाभ मिली।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाएं कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: हाँ, तो देखिए, ये तो रहे संदेश और ओकर ले पाछू हम सूर्य रहें डॉक्टर पी के भगत, वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक प्राध्यापक। बड़ा सुघर जो है विषय में गोड़ बात होइस, कद्दू वर्गीय सब्जी में समसामायिक कीट प्रबंधन। और बाकी जहाँ बात देखिए, बड़ा सुघर खबर है, ये है खबर कि भाई सरकार हर खरीफ पर 14 फसल कर न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP कर घोषणा कर दी है। खरीफ कर मुख्य फसल धान कर जो कही गोट करी तो MSP 2441 रुपये प्रति क्विंटल तय कर ली है। और ये पाछू साल जो है 2369 रुपये प्रति क्विंटल कर तुलना में ये बार 72 रुपये बगरा है। केंद्र सरकार हर खरीफ कर 14 फसल पर न्यूनतम समर्थन मूल्य कर जो घोषणा करी सा है, उमें हमन देखत हन कि बरन बरन कर जैसे सूरजमुखी कर बीज कर गोट करी तो 622 रुपये प्रति क्विंटल बढ़वार हुई सा है। कपास में 557 रुपये प्रति क्विंटल।

वही कस गोइट करी तिल कर तो 500 रुपये प्रति क्विंटल बढ़वार हुई से, और कम बढ़ोतरी मक्का कर हुई से है 10 रुपये प्रति क्विंटल, मूंग कर भी के गोइट करी तो 12 रुपये प्रति क्विंटल कर बढ़वार है। तो ये हमारे लिए फायदेमंद यह है कि भाई हमारे समर्थन मूल्य हर बढ़ी सा है, ये खुशी कर बात हवे। बाकी मैं कहते रहें कि भाई देखी एक और गीत सुन लेते हैं और तो अच्छा रहतीस, इला गई ना है देखी आनंद किंडो और साथ ही डोमकेश गीत है, तो लगी गीत ला सुन ली।

हाँ देखिए, ये एक डोमकेज गीत रहीस। उम्मीद करत हूँ कि राउत मन ला अच्छा लागिस होही। बाकी मंडी भाव कर गोट करी तो आज धान जो है 2190 रुपये प्रति क्विंटल, कोदो ची 3250 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों कर गोट करी तो 5655 रुपये प्रति क्विंटल, तिल रही 6000 रुपये प्रति क्विंटल। और मौसम कर जानकारी कर गोट करी देखी तो आज न्यूनतम जो है 26.5 डिग्री रही और अधिकतम जो है 40.8। और कल कर जो अनुमानित संभावना है 26.5 न्यूनतम रही और अधिकतम जो है 41.8 रहकर संभावना है। तो हमला ध्यान रखना है किसान भैया बहनी हो, बदलत मौसम में अपन ध्यान, लड़का छुआ मनक ध्यान, हमर मवेशी मनक ध्यान, दुधारू पशु मनक ध्यान देना बहुत जरूरी है। और वही संदेश कर साथ देखिए अब घड़ी कंटा कहता है चौपाल ले विदा लेहल जाए। तो मोला दा विदा, राम राम, जय जोहार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। मीडियम वेव 238.09 मीटर यानी 1260 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। रात के 8 बजे हैं। प्रस्तुत है सोशल मीडिया आधारित फरमाइशी कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश।

नमस्कार श्रोताओं, मीडियम वेव और एफएम वैन पर आकाशवाणी अंबिकापुर के इस सुरीले मंच पर मैं आपकी अपनी रेडियो साथी प्रियंका आप सभी श्रोताओं का दिल से स्वागत करती हूँ। संगीत जो दिलों को जोड़ता है और हर एहसास को सुरों में पिरो देता है, तो तैयार हो जाइए गीतों और आपकी पसंद से सजी एक खूबसूरत सफर के लिए। जी हाँ, पेश है आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश। कार्यक्रम के पहले गीत के लिए हमें फरमाइश मिली है ग्राम पोस्ट गीतका जिला सूरजपुर से संजय सिंधराम, टेकराम सिंधराम, विवेक कुमार, उमेश कुमार, अर्जुन सिंह टेकाम, अरविंद सिंह और परिवार के सभी सदस्य सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से, पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके, श्रव्या रामटेके, ग्राम बोझा पोस्ट सोनगरा तहसील प्रतापपुर सूरजपुर से खगेश कुमार राजवाड़ी, ग्राम रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से उदयभान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और परिवार के सभी सदस्य यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से, ग्राम चरौदा नवापारा जिला बलौदा बाजार से नंद कुमार ठाकुर, प्रमीला ठाकुर, प्रियंका, दीपक, खुशबू और ज्योति ठाकुर, दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकीब और परिवार के सभी सदस्य, विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले और प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन, चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप, कालका से सुभचंद बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज, नवापारा लखनपुर से मुनेशराम, सालिनी, रुचिका, अनिका, मनीष, सुचिता, चांदनी, दीपांशु और परिवार के सभी सदस्य, अड़ार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश और दीपेश वर्मा, मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान, शेख हबीबुर रहमान, ज्योतिनगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़ गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन धरा, घनश्याम और परिवार के सभी सदस्य, ग्राम पंचायत सिरकोतंगा महादेवपारा पोस्ट लहपटरा जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ से योगेश कुमार राजवाड़े, श्याम राजवाड़े, परमान राजवाड़े, लल्लू बल्लू, घनु अमित, अभिजीत गोविंद और परिवार के सभी सदस्य। आप सभी सुनना चाहते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में समीर का लिखा ये गीत। फिल्म है आपको पहले भी कहीं देखा है।

वाह, क्या खूबसूरत गीत था। उम्मीद है ये प्रस्तुति आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही अपनी फरमाइशें और प्यार हमें सोशल मीडिया के जरिए भेजते रहिए। और बढ़ते हैं अगले गीत की ओर।

कार्यक्रम के अगले गीत की फरमाइश मिली है हमें कोप्पल कर्नाटका से, लक्ष्मी पवार, चैत्राली पवार, पल्लवी पवार, पड़ौली पोस्ट, धौरपुर विकासखंड लुंड्रा, जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ से प्रथम प्रफुल्ल खंडा, कैरो खंडा, गर्वी खंडा, अनुज खंडा, सुनैना दास और वेद कुमार, ग्राम राजापुर, जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से खेलसाई मरकाम, नयन प्रकाश मरकाम, शारदा मरकाम, सीताराम मरकाम, सितंबर मरकाम, अमरनाथ, मंगलमूर्ति रोशन, राजवाड़े, राहुल राजवाड़े, हीरालाल प्रजापति, पांडेराम राजवाड़े, नूरसाय राजवाड़े, कविता मरकाम और आरती मरकाम, रायगढ़ से रोहित जयलक्ष्मी, सूरजपुर से

चंद्रभान राजवाड़ी, बबीता राजवाड़ी, धिया राजवाड़ी, काव्या राजवाड़ी और मंजू राजवाड़ी। ये श्रोता हमारे अनुजनगर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से हैं। सुपर स्टार रेडियो श्रोता संघ सारस ताल सोनगरा जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से प्रेम साय राजवाड़ी, सोमार साय, मीर साय, श्री भगत, हेमंत कुमार, राम खेलावन सिंह पैकरा, ग्राम सिधमा बाजार जिला बलरामपुर छत्तीसगढ़ से धनीश्वर निषाद, दीपिका निषाद, शिवांश निषाद, राम भरोस पैकरा, नरेश सिंह और परिवार के सभी सदस्य। पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा। दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। गदकबेट गेरी कर्नाटक से लक्ष्मी चंद्रकला, काशीनाथ बड़ी, श्वेता तपस्या, माही रेणुका पल्लवी,

दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। गदकबेट गेरी कर्नाटक से लक्ष्मी चंद्रकला, काशीनाथ बड़ी, श्वेता तपस्या, माही रेणुका पल्लवी, अन्नपूर्णा बड़ी, सावित्री लक्ष्मी चंद्रकला। कृष्णा कॉलोनी गदक कर्नाटका से हरसिद्धि, लक्ष्मी हरसिद्धि और परिवार के सभी सदस्य। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू, राजेंद्र सिंह ओबेराय। सरोचौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीमिया बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आफिया और परिवार के सभी सदस्य। भवानीपेठ सोलापुर महाराष्ट्र से विष्णु मिस्किन, ऋतिका मिस्किन, वानी आरव, चंद्रकला, गणेश काशीनाथ, संगीता मिस्किन, आरोही और प्रियांशी सोनी। जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रीतेश संघई और परिवार के सभी सदस्य। वीर सिंहपुर पाली जिला उमरिया मध्य प्रदेश से संतोष कुमार राव, भारती राव बेला बाई, विकास सिंह, ओम प्रकाश और शुभम विश्वकर्मा। ग्राम पंचायत खोंधला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी पैकरा, करिश्मा पैकरा, सोमार साय, कलेश्वर, सुखराम, हीरामणि, ऐश्वर्या पैकरा। जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू और परिवार के सभी सदस्य। देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार, नेभवानी, संगीता, आकाश, आयुषी, सागर, यसी, हनी, पूजा, सीता और परिवार के सभी सदस्य। आप सभी सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में हम आपके हैं कौन फिल्म का ये गीत। गीतकार हैं देव कोहली और संगीत निर्देशन है राम लक्ष्मण का।

कार्यक्रम के अगले गीत के लिए हमें फरमाइश मिली है कुंजनगर पोस्ट जयनगर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से। प्रेमलता देवांगन, अमीर तांजी, महिमा देवांगन, श्रेया देवांगन, अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, जयपाल यादव और विनोद पुरी, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा, चरडोगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जय किशन, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी माया और छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा, इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से चंद्रकांत सीमा साहू, सूर्यकांत राकेश साहू, शुभम शिखा और शेफाली। कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू कश्यप, सुरेश राजपाल, पंकज काजल, सीमा मानवी, तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू, बेरडी मध्य प्रदेश से हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, हार्दिक करमकर, प्राची और तनु, जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेरडी से नानाजी लामसे, मीना लामसे, तेजस जय लामसे, जिला यमुनानगर हरियाणा से विनय मोहन खार, वन मीनाक्षी प्लोमा व डॉक्टर ईशानी, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार, सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, बेबी हिमांश, हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा, बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जय प्रकाश और परिवार के सभी सदस्य, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता किशु तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, बोहड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। आप सभी सुनना चाहते हैं जसपाल सिंह और हेमलता की आवाज़ों में नदिया के पार फिल्म का ये गीत। गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश का अगला गीत है अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजों में फिल्म है चोरी चोरी चुपके चुपके, गीतकार है समीर। इस गीत के लिए हमें इंस्टा फरमाइश भेजी है बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद माखीजा, काफिर भाई श्रीमती सविता माखीजा, बेबी स्वाति माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा और परिवार के सभी सदस्य। मिट्टू मोड़ा दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास, कौशल श्रीवास, कृष्ण कुमार यादव, लक्ष्मण वाधवानी और गेंदू भाई। राजापुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से मानिकराम प्रजापति, श्रीमती सविता प्रजापति, घनश्याम राम हरिशंकर, रत्नेश कुमार प्रजापति। ग्राम कालापारा से रामचंद गुप्ता और पांडे राम राजवाड़ी। मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन। पिपरिया से कमल कांत गुप्ता। हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम और परिवार के सभी सदस्य। ग्राम लसोड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला रायगढ़ से, माफ कीजिएगा, जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका रमेश चंद्र डांगी। मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार।

बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी, नंदिनी और परिवार के सभी सदस्य। बटीना रोड मड़ी डबौली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग। मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार। आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश के लिए अगली फरमाइश मिली है हमें। अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना, आफिया, जावेद अंसारी और परिवार के सभी सदस्य। मऊ उत्तर प्रदेश से राजेंद्र यादव भारती, उषा देवी भारती, दीपांजलि, अनुराग दीप,

जिला करनाल हरियाणा से बिजेंद्र कुमार जय जान, कांता रानी, गुंजन साहिल और वाणी, हिंगोली महाराष्ट्र से साहजी बोड़खे, श्रीमती नंदा बोड़खे और हनुमान बोड़खे, अम्बेडकर चौक वाकोडी से उत्तम जमदाड़े, स्वराज और परिवार के सभी सदस्य, पद्मा टॉकीज नेपा नगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति सूरभी, अश्विनी और मंगला बेन साह, महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, प्रतीक्षा लोखंडे, स्वप्निल लोखंडे, रक्षता लोखंडे, यशोदा हमारे यवतमाल महाराष्ट्र से हैं। साधुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़, मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरविंदर सिंह चावला और परिवार के सभी सदस्य, अनूपपुर मध्य प्रदेश से श्रीमती जयमंत्री कीवट, फुआवरा चौक वार्ड नंबर 6, सिरसला चूरू राजस्थान से संदीप सिंह, सोनगरा प्राची, सोनगरा सोमल, सोनगरा कार्तिक और परिवार के सभी सदस्य। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षर परिवार के सभी सदस्य, बोरखेड़ा पीरामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मुड़त, नेहा जैन, दीपक और परिवार के सभी सदस्य, वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती, पंजाब खेड़ा परिवार, भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा और परिवार के सभी सदस्य, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास और आशा देवी, अमरगढ़ सादुल शहर से कुलवंत मान, लखविंदर कौर मान, खुशप्रीत कौर मान, गुरमीर और परिवार के सभी सदस्य, रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी और हेमलता, गांव खोखरा वाली श्रीगंगानगर से विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास रोशनी और शगुन, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नोहानकर, निर्मला नोहानकर, विशाल नोहानकर, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे और आशीष, इजरानैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू। आप सभी सुनना चाहते हैं अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म का ये गीत आतिफ असलम और अलीसा चिनॉय की आवाज में, गीतकार हैं आशीष।

श्रोताओं, कार्यक्रम इंस्टा फरमाइश के अगले गीत के लिए हमें फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं रायपुर से विनोद वंडलकर, वीरा वंडलकर और विविधा वंडलकर, मजनू कटिल्ला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, शिवन्या गोस्वामी, अन्नु गोस्वामी, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा, मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान और परिवार के सभी सदस्य, खंडवा से अब्दुल गफ्तार डावर खुश नसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी, सिद्धार्थ नगर दरियापुर बाबली से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, कंचन येले, कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार हैप्पी, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल, बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी और परिवार के सभी सदस्य, चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, सहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी और परिवार के सभी सदस्य, पहंदा पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन, लखन लाल देवांगन, सावित्री बाई देवांगन और परिवार के सभी सदस्य, नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, बुंदेलखंड यूपी से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव और परिवार के सभी सदस्य, लोहडडा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, अर्जुन भारती, आप सभी सुनना चाहते हैं यशुदास की आवाज में दादा फिल्म का ये गीत, गीतकार हैं कुलवंत जैन।

कार्यक्रम के आखिरी गीत के लिए हमें इंस्टा फरमाइश भेजने वाले हमारी श्रोता हैं मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर, राहीर श्रीमती सरिता गवाड़कर, प्रणीता सिद्धांत गवाड़कर, अर्जुन गवाड़कर और टुकटुक, गुजरात पाटन से धीरज वीर अबारी, हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां, हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार और परिवार के सभी सदस्य, गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊ नाथ, भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक और आर्यन, जनकपुरी सहारनपुर से डिकेस्ट्रो रोजी, डिकेस्ट्रो पर्ल, डिकेस्ट्रो विलिस, गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत, शाहूनगर यवतमाल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल और चेतन, अकोट से विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडी, विजय शुभम, आप सभी सुनना चाहते हैं फिल्म अंदाज का ये गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में।

इसी गीत के लिए हमें फरमाइश मिली है बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। ग्राम पीपल रोड सारगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश शर्मा, पूनम वर्मा और ज्योति। डोंगर गांव से राजपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबिया निष्का और तन्मय गजभिये। छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले, पाटिल राजदीप, राजेश राशि, राजेश श्रीमती शीतल, राजेश। संभाजीनगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोटके, वैशाली अनिल और परिवार के सभी सदस्य।

0: समय अभाव के कारण हम आपको ये गीत पूरा नहीं सुनवा पाए। तो साथियों, आप दीजिए इजाजत अपनी रेडियो साथी प्रियंका को, फिर मुलाकात होगी गीतों और आपकी फरमाइशों के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। नमस्कार। आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। रात के 8:45 होने को है। कुछ ही पलों में समाचारों का अनुप्रसारण हम दिल्ली केंद्र।
1: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने

0: की संभावना व्यक्त की। भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में आयोजित सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीते और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर जोर दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ आज उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: दोनों देशों ने एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। ये एक इम्पोर्टेंट कदम है जो दोनों देशों के बीच सिक्योरिटी कॉपरेशन को एक फॉर्मल ढांचे में डालता है। साथ ही स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन किया गया और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सप्लाई के लिए एक अलग एग्रीमेंट भी। ये दोनों कदम वेस्ट एशिया में जारी टेंशन के बीच भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सीधा एड्रेस करते हैं। दोनों देशों ने वडनगर में एक शिप रिपेयर क्लस्टर स्थापित करने के लिए भी एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर यूएई ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर आरबीएल बैंक और सम्मान कैपिटल में $5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह भी एम्फसाइज किया कि भारत और यूएई के बीच कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कई सेक्टर्स में लगातार मजबूत होती जा रही है। विनोद कुमार, आकाशवाणी समाचार, अबू धाबी।
0: आकाशवाणी से बातचीत में यूएई में भारत के दूत दीपक मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग को गहरा करने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं।
3: प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान कई रणनीतिक घोषणाएं की गई। भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और भारत तथा संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक निर्णय लिए गए। आज नेताओं के बीच हुई चर्चाओं में प्रौद्योगिकी के विषय पर भी बातचीत हुई। भारत में 8 एक्साफ्लॉप सुपर कम्प्यूट सुविधा स्थापित करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही भारत के वादिना में जहाज मरम्मत इकाई विकसित करने में साझेदारी करने का यूएई का निर्णय भी शामिल है।
0: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में शुक्रवार देर रात नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा न केवल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि हाल ही में संपन्न इंडिया यूरोप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के संदर्भ में पूरे यूरोप पर असर डालने वाली साबित होंगी। व्यापार की दृष्टि से नीदरलैंड्स भारत का 11वां बड़ा साझेदार है। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार गत वर्ष $27.8 बिलियन का रहा है। निवेश के मामले में भी नीदरलैंड्स चौथा बड़ा निवेशक है। प्रधानमंत्री अपने इस महत्वपूर्ण दौरे के दौरान नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यतिन के साथ पक्षीय वार्ता करेंगे एवं डच राजा विलियम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी शिष्टाचार भेंट करेंगे। शनिवार को प्रधानमंत्री नीदरलैंड्स में कम्युनिटी इवेंट को संबोधित करेंगे एवं नीदरलैंड्स की प्रतिष्ठित कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। नीदरलैंड्स से आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बेहतर और प्रभावी बहुपक्षीय व्यवस्था के लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सभी साझेदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन आज एक सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये बातचीत इस महत्व को उजागर करती है कि सभी नेता तेजी से बदलते विश्व में बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के पक्ष में हैं। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही गई। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनीतिक उपायों के

0: जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसमें संघर्ष के मूल कारणों को संबोधित करना भी शामिल है। मंत्रियों ने बहुपक्षवाद को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर बल दिया। नई दिल्ली में बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध मामलों के सचिव सुधाकर दलेला ने कहा कि ब्रिक्स के सभी सदस्य सहयोगी देशों ने स्थिरता के निर्माण के लिए भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं का समर्थन किया।
1: ब्रिक्स के सभी सदस्य और साझेदार देश लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के निर्माण की थीम पर भारत की अध्यक्षता की प्राथमिकताओं की सराहना और उनका समर्थन करते हैं। पिछले दो दिनों में हुई चर्चाओं और इन विचार विमर्श के आधार पर हमने एक अध्यक्षता वक्तव्य और एक परिणाम दस्तावेज जारी किया है। इसमें ब्रिक्स की रणनीतिक साझेदारी के तीन स्तंभों के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी विषयों पर ब्रिक्स सदस्यों की साझा स्थिति को दर्शाया गया है।
2: Under the three pillars of BRICS strategic partnership.
0: ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि भारत पश्चिम एशिया में शांति स्थापना में बड़ी भूमिका निभा सकता है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में श्री अराक्ची ने कहा कि ईरान से जुड़े किसी भी मामले का सैन्य समाधान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ईरान हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सभी जहाजों को गुजरने में मदद करने के लिए तैयार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाश अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। इससे पहले गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों में से 3 जयपुर से, 1 गुरुग्राम से और 1 नासिक से है। सभी आरोपियों को दिल्ली की अदालत ने 7 दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया है। कई अन्य संदिग्धों से पूछताछ जारी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आज ही कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है।
2: फ्यूज जो होता है वह किसी भी गोला बारूद का सबसे यह इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, चाहे आर्टरी शेल हो, बॉम्ब हो या कोई भी युद्ध सामग्री हो। बिना भरोसेमंद इलेक्ट्रिक फ्यूज के सब बेकार है। यहाँ बनने वाले अत्याधुनिक फ्यूज हमारी सेनाओं को ताकत देंगे और यह प्रोजेक्ट हमारी एम्युनिशन मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का एक नया चैप्टर जोड़ेगा।
1: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने वर्चुअल माध्यम से आज राज्य में 400 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्ष में इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
3: इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में देश ने बहुत बड़ी छलांग लगाई है इन 12 वर्षों में। जहां मात्र 1-2 लाख करोड़ रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता था, आज भारत में 13 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, 6 गुना वृद्धि। और भारत से एक्सपोर्ट होने वाली कमोडिटीज में आज मोबाइल फोन सबसे पहली

0: कमोडिटी बन गई है और इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट्स इस पिछले दशक में 11 गुना बढ़े हैं।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज से ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें अलग अलग दिन वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कार पूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। ये निर्णय ईंधन की खपत कम करने के केंद्र सरकार के व्यापक प्रयासों के अनुरूप है। दिल्ली में विशेष ज्ञान पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया 30 जून से शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया 29 जुलाई तक चलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewzOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में लू की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा में मौसम के अत्यधिक गर्म और उमस भरे रहने का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान जताया है। अगले दो दिन केरल, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। विभाग ने कहा है कि केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई तक आने की संभावना है। केरलम में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 1 जून है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.2% की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 161 अंक फिसलकर 75,238 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 46 अंक डूबा और 23,644 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.97 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
1: भारतीय वुशु टीम ने मकाऊ में 11वें सांडा विश्व कप में 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीतकर कुल 5 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा। अपर्णा दहिया और शिवानी ने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इससे पहले एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी में भारत ने 9 स्वर्ण 6 रजत और 12 कांस्य सहित कुल 27 पदक जीते। IPL क्रिकेट में लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 127 रन बना लिए हैं। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा सुरक्षा के लिए होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध नौवहन के लिए भारत के समर्थन की फिर पुष्टि की। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने लोकतांत्रिक वैश्विक शासन और शांति तथा जलवायु चुनौतियों पर मजबूत बहुपक्षीय कार्रवाई का आह्वान किया। CBI ने नीट UG 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में मुख्य सरगनाओं में से एक को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज ही कर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म और हत्या मामले में 3 IPS अधिकारियों को निलंबित किया। मौसम विभाग ने झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू चलने की संभावना व्यक्त की। और ताशकंद में भारत ने एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reaffirms India's support for safe and uninterrupted navigation through Strait of Hormuz for regional stability and energy security. BRICS foreign ministers call for democratic global governance and stronger multilateral action on peace and climate challenges. CBI arrests one of the kingpins in NEET UG 2026 paper leak case. West Bengal government suspends 3 IPS officers in connection with RG Kaur rape and murder case. Met department forecasts heat wave conditions in Jharkhand, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh and Vidarbha till tomorrow. इंडियन वुशु

कार्यक्रम चित्रपट संगीत का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म राजा हिंदुस्तानी से। गायक कलाकार हैं अलका याग्निक और उदित नारायण। शब्द रचना है समीर की और धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति में लीजिए सुनिए कसूर फिल्म का ये गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। गीतकार है समीर।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम चितपट संगीत यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये अंबिकापुर केंद्र है। रात के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं के ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम ईमेल की गूंज।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी श्रोताओं का कार्यक्रम ईमेल की गूंज में। मैं हूं आपकी अपनी रेडियो साथी प्रियंका। कार्यक्रम के पहले गीत के लिए हमें ईमेल भेजने वाले हमारी श्रोता हैं तिलकनगर नई दिल्ली से RSVT और RK शुक्ला, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह और कुशल शाह। ये श्रोता हमारे पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से हैं। राम लसूड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से। गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन, कोमल परी, कृतिका और रमेश चंद्र दांगी गांधीनगर गुजरात से। सुरेश राठौर, मंजुला राठौर और विशाल

दिशा, अड़ार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी भूपेश, दीपेश वर्मा, राजकोट से प्रवीण सोनी, पूजा पायल कंचन, कलावती सोनी, जूली और जगदीश जौहरी। न्यू दिल्ली से गौरव अनिल मानसी और कविता अरोरा। लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद। गोविंदपुरा अहमदनगर से जुनैद मुजावर, सबीहा मुजावर, मिखाइल मुजावर और जैनब। देवीगंज रोड अंबिकापुर से राजकुमार नेभवानी, संगीता, आकाश, आयुषी, सागर, यसी हनी, पूजा, सीता और परिवार के सभी सदस्य। राजौरी गार्डन नई दिल्ली से ध्वनि और सानवी। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार। आप सभी सुनना चाहते हैं शैलेंद्र सिंह की आवाज़ में मजरूह का लिखा ये गीत। फिल्म है जमाने को दिखाना है।

कार्यक्रम ईमेल की गूंज में अगले गीत के लिए हमें ईमेल मिला है। जय जीरेन्द्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से रुपे संघई, महेश संघई, प्रज्ञे संघई, प्रदेश संघई और पूरा संघई परिवार। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। चांदनी चौक गणई पनरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र और रौनक सेन। दतरेंगी से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखी लाल वर्मा। आदर्श नगर मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान सौरभ, साइना और मैंडी शर्मा। जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और मुन्ना हिमाक्ष। ग्रामदुलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी। ग्राम पंचायत बठेना पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति और प्रहलाद वर्मा। लक्कड़ बाजार खंडवा मध्य प्रदेश से मोहम्मद रफीक पवार, बेंजिर कौसर, मोहम्मद शाकी पवार, अलमास और परिवार के सभी सदस्य। दिल्ली से स्वीटी और प्रतिभा, रोहतक से आशीष हेड़ा, सबीना हेड़ा, दरियापुर बाबरी से गजानन येले, नवदीप केले, विश्वदीप येले और अशोक येले। सहारनपुर से आशा नारंग, सोनाली और सुरेश नारंग। राजनांदगांव से लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू, रुद्रांश और प्रताप साहू। आप सभी सुनना चाहते हैं मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में। संगीत निर्देशन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

मीडियम वेव और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ईमेल की गूंज। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म फूल और कांटे से। गायक कलाकार है अलका याग्निक और कुमार सानू। गीतकार है रानी मलिक और संगीत निर्देशन है नदीम श्रवण का। इस गीत के लिए हमें ईमेल भेजने वाले हमारे श्रोता हैं ग्राम सौंगा मगरलोड से फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन और हियांश कुमार चंदन। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना पंखा रोड जनकपुर से पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबेराय। जेल रोड रायगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार तिवारी, बेबी जोई यामिनी तिवारी और उमा तिवारी। डेर पाटन गुजरात से धीरज वीर अबारी। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया और नमन ढींगिया। सदर बाजार कुरालवली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा। तो आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम ईमेल की गूंज में अगली फरमाइश मिली है हमें मोहल्ला हलवाइन शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम और नसरीन परवीन। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहुजा। वैष्णो कॉलोनी सनावत से मोहम्मद शादी मुस्ताक अहमद, मोहम्मद अल्तमस खत्री और मोहम्मद शादाब खत्री। बटीना रोड मड़ी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग। मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या कीर्ति और डीके साहू, इन श्रोताओं ने अपना पता नहीं लिखा है। पलारी से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन और लखन लाल देवांगन। आप सभी सुनना चाहते हैं कुमार सानू और लता मंगेशकर की आवाज़ों में फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से ये गीत। संगीत निर्देशन है जतिन ललित का।

कार्यक्रम ईमेल की गूंज में आखिरी गीत के लिए हमें फरमाइश मिली है। डोंडी लोहारा वालों छत्तीसगढ़ से देव शंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर। रामचंद माखीजा काफिर भाई, श्रीमती सविता माखीजा बेबी, स्वाति माखीजा, महेश कुमार कुकरेजा, संध्या कुकरेजा, माही पूजा छुटकी, शरद कुमार डोडवानी एवं परिवार के सभी सदस्य। ये श्रोता हमारे बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से हैं। पश्चिम बंगाल रानीगंज से

रेहान शर्मा और करणदीप। छत्री तालाब अमरावती से साधना रानी और किशोर गुप्ता। ग्राम बुड़गहन छत्तीसगढ़ से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण चंदेश कुमार, चंद्रकला शशिकांता प्रजापति। आप सभी सुनना चाहते हैं सरगम फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत निर्देशन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ईमेल की गूंज, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 10 बजे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय राग पर आधारित कार्यक्रम राग प्रधान। कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म मृग तृष्णा से। गीतकार और संगीतकार हैं शंभू सेन, गायक कलाकार हैं मोहम्मद रफी। ये गीत यमन राग पर आधारित है। ये एक संपूर्ण जाति का राग है। इसका वादी स्वर गंधार और समवादी स्वर निषाद है। इसमें तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है। इस राग का गायन समय रात्रि का प्रथम पहर है।

अगला गीत है मन्ना डे की आवाज़ में, फिल्म है बसंत बहार, शब्द रचना है शैलेंद्र की और धुन बनाई है जयकिशन ने। ये गीत काफी राग पर आधारित है, ये संपूर्ण जाति का राग है। इस राग में ग, नी और स कोमल लगते हैं, शेष स, रे, म, प, ध ये सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। इस राग का प्रयोग मुख्य रूप से होरी, दादरा और उपशास्त्रीय गायन की अन्य विधाओं में किया जाता है। ये रात्रिकालीन राग है।

कार्यक्रम राग प्रधान में प्रस्तुत है मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत मन्ना डे की आवाज़ में। फिल्म है बात एक रात की। संगीत निर्देशन है SD बर्मन का। ये गीत

0: राग पीलू पर आधारित है। इस राग का प्रयोग शास्त्रीय संगीत की अपेक्षा लोक शैली में अधिक पाया जाता है। चैती, कजरी और ठुमरी शैली में ये राग अधिक प्रयोग में आता रहा है। इसमें सभी शुद्ध तथा कोमल स्वर अर्थात 12 स्वर संगति से माधुर्य युक्त राग हैं।
1: अरे

अरे मेरे दिल ने तड़प कर, हाय मेरे दिल ने

पीएमवी और एफएम बैंड पर आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राग प्रधान। प्रस्तुत है मीरा साया फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार है राजा मेहंदी अली खां। संगीत निर्देशन है मदन मोहन का। ये गीत भीम पलासी पर आधारित है। ये राग काफी थाट से उत्पन्न होता है। इस राग में कोमल गंधार और निषाद का प्रयोग होता है। आरोह में रे और ध स्वर वर्जित है। इसकी जाति औड़ संपूर्ण है। वादी स्वर मध्यम और संवादी स्वर षड्ज है। इस राग का गायन समय दिन का अंतिम पहर है। तो आइए सुनते हैं भीम पलासी राग पर आधारित ये गीत।

कार्यक्रम राग प्रधान में प्रस्तुत है महबूबा फिल्म का ये गीत मन्ना डे की आवाज में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत निर्देशन है आरडी बर्मन का। ये गीत मेघ मल्हार राग पर आधारित है। काफे थाट से उत्पन्न ये एक वर्षाकालीन राग है। इसकी जाति औड़व है। आरोह में स रे म प नी शा और अवरोह में सा नी प म रे सा स्वर है। केवल नी स्वर कोमल है, बाकी सभी स्वर शुद्ध है। इसकी प्रकृति गंभीर है। यह बहुत ही लोकप्रिय राग है। इसका वादी स्वर मध्यम और संवादी स्वर ऋषभ माना जाता है।

कार्यक्रम राग प्रधान का आखिरी गीत है फिल्म घूंघट से लता मंगेशकर की आवाज़ में। संगीत निर्देशन है रवि शंकर शर्मा का और शब्द रचना है शकील बदायूनी की। ये गीत राग भैरवी पर आधारित है। ये भैरवी थाट से संबंधित संपूर्ण जाति का बहुत लोकप्रिय राग है। रे ग ध और नी इसके कोमल स्वर है माने जाते हैं। इसी क्रम में मध्यम और सड़जवादी समवादी होते हैं। इस राग की प्रकृति चंचल है।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम राग प्रधान, मीडियम वेव और एफएम बैंड पर हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 10:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों पर आधारित फरमाइशे फिल्म संगीत का लोकप्रिय कार्यक्रम मनभावन। नमस्कार, स्वागत है सभी श्रोताओं का कार्यक्रम मन भावन में। कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो साथी प्रियंका। कार्यक्रम का पहला गीत है फिल्म संग्राम से। गायक कलाकार हैं कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति। गीतकार हैं समीर और संगीत निर्देशन है नदीम श्रवण का। इस गीत के लिए हमें पत्र मिला है शहीद टेकराम चौक हथबंद करेली से, भाई रामाधार ध्रुव, संजय कुमार ध्रुव और संजू कुमार ध्रुव का। अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, बेबी गव्या, सुच्चा पाठक। चार मीनार चौक गंडई पंडरिया से दरियाना मल, अनीता मोटवानी, राजेश रेशम, अनिल राज मोटवानी। झूलेलाल चौक दिलदा से हरीश कमल, सेतपाल भूमिका और सुशीला। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां। अलीकार डबली से बसंत सिंह, राजकुमार, सुनीता और

जिला दुर्ग से पोषण बंछोर चंद्रकिरण प्रीति छाया बंछोर का, चांदनी चौक गंडई पनरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू, रविंद्र सेन, बेडी से हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, हार्दिक करमकर, प्राची करमकर और तनिया करमकर, पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक, सीमा साहू, इस्लामपुर सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुस्ताक अहमद, बेबी मंतसा, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री, नवागढ़ कटाई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा सारदा और दामिनी वर्मा। आप सभी सुनना चाहते हैं ताल फिल्म का ये गीत कविता कृष्णमूर्ति और सुखविंदर सिंह की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीत निर्देशन है AR रहमान का।

0: राहुल, ये अपनी डायरी में बार बार 230, 600 क्या लिख रहे हो? कोई लकी नंबर है क्या?
1: लकी ही समझो रिया, ये वो जादुई नंबर है जो मेरे बिजनेस को रातों रात पूरे अंबिकापुर में हिट कर देगा।
0: अच्छा, वो कैसे?
1: अरे बाबा, ये आकाशवाणी अंबिकापुर की पहचान है। यहाँ विज्ञापन देने का मतलब है अंबिकापुर का हर घर, हर दुकान और हर चौक चौराहा सिर्फ मेरी दुकान का नाम सुनेगा।
0: ओ, समझ गई। यानी 230, 600। पर इस पर कॉल कैसे लगेगा?
1: बहुत सिंपल है, अंबिकापुर का STD कोड लगाओ 07774 और मिला दो 230, 600।
0: अरे वाह, 07774 230 600, ये तो सच में लकी नंबर है। तो फिर देर किस बात की? अभी पधारो आकाशवाणी कार्यालय और अपने व्यापार को दो नई उड़ान।
1: बिल्कुल, आकाशवाणी अंबिकापुर मेरे और आपके व्यापार की सफलता का सच्चा साथी।
2: मीडियम वेव और FM बैंड पर आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन भावन। कार्यक्रम में प्रस्तुत है आशिकी फिल्म का ये गीत। शब्द रचना है समीर की और धुन बनाई है नदीम श्रवण ने। गायक कलाकार हैं उदित नारायण और अनुराधा पौंडवाल। इस गीत के लिए हमें पत्र मिला है आप सभी का, डोंगरगांव राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से। राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बिबिया निष्का और तन्मय गजभिये। लिवाई से गुलाब दास मानिकपुरी, दतरेंगी से भागवत प्रसाद वर्मा, शिवाजी चौक राजिम से अनिल कुमार अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष्ण श्रीवास्तव, अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवी श्रीवास्तव। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार। छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा सिंगरौल और बेबी वान्या सिंगरौल। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से कुमारी वंदना, परी गणेश मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, स्वाति प्रयाग चौधरी, ललिता खर्चे और नारायण भाऊ खर्चे। तो आइए सुनते हैं आप सबकी फरमाइश पर ये प्यारा सा गीत।

कार्यक्रम मन भावन का अगला गीत है कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। फिल्म है हम है राही प्यार की। शब्द रचना है समीर की और धुन बनाई है नदीम श्रवण ने। इस गीत के लिए हमें पत्र मिला है औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। परसा टोला जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी तुसारनी और खुमेंद्र मसिया। अंबागढ़ चौकी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयसा सबीहा, अनस और रेहान। भाटापारा से बचकामल मोती, लाल यादव, डॉक्टर बसंत भृगु और विनय ठाकुर। सोनाडी से सुब्रत चौधरी और बेबी अनीशा। सिद्ध बाबा भाटापारा से संतोष कुमार वैष्णव, संतोषी वैष्णव, वैभव कान्हा और शिवम वैष्णव। ग्राम भुरसुदा से भगवानी संतोषी, ज्योति गजेंद्र और चंद्र प्रकाश। पुणे से पंकज कुमार आर्या, प्रियंका, मीनाक्षी और चंद्र प्रभा वाडोदे। तो आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर ये प्यारा सा गीत।

मन भावन में आखिरी गीत के लिए हमें पत्र मिला है। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और बाबू रियांश ठाकुर, भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा और किशोर कुमार वर्मा, सिमंदर पार्क वीरमगाम से अजीत प्रेमिला, भावेश, सन्नी हेतल, कृष्णा और जैमिन भावसार, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश कुमार वर्मा और करुणा देवी वर्मा, इंदिरानगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम बेगम, परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम और आसिफ नईम राजा, मेहरनगर उमरखेड महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर राही, श्रीमती सरिता गवाड़कर, सिद्धांत गवाड़कर, प्रिंस एकांश गवाड़कर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गवाड़कर, श्रीमती वैशाली गवाड़कर, श्वेता सुमित गवाड़कर और कुमारी ध्वनि गवाड़कर, धरसीवा छत्तीसगढ़ से छेदूलाल यादव, श्रीता यादव, अर्चना अरुणा अनुराधा, अल्पना यादव, इकबाल कुरैसी, दुर्गापारा से संतोषी, छन्नूलाल यादव, पुष्पलता यादव और परिवार के सभी सदस्य। आप सभी सुनना चाहते हैं यश बोस फिल्म का ये गीत अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में। गीतकार है जावेद अख्तर और संगीत निर्देशन है जतिन ललित का।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन भावन मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। हम आकाशवाणी के अंबिकापुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 11 बजने को हैं। कुछ ही पलों में समाचारों का अनुप्रसारण हम दिल्ली केंद्र से करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हुरमुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया और क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने यूएई के लिए भारत के समर्थन की पुष्टि की और कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव आज पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। हॉर्मोन्स को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अबू धाबी यात्रा के दौरान भारत और यूएई ने ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, निवेश और व्यापार में सहयोग बढ़ाने के लिए कई रणनीतिक निर्णय लिए हैं। संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा संपन्न होने के बाद प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स के लिए रवाना हो गए। ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों ने वैश्विक शासन में सुधार और उसे बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जारी वक्तव्य में ये बात कही। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इन चुनौतियों और उनसे जुड़े सुरक्षा खतरों का जवाब राजनयिक उपायों

0: के जरिए देने का आह्वान किया। उन्होंने संघर्ष की रोकथाम के प्रयासों में शामिल होने की आवश्यकता पर भी बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ श्री सत्यसाई जिले के पुट्टपर्थी में उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान AMCA निर्माण इकाई की आधारशिला रखी। इस अवसर पर एक जनसभा में रक्षा मंत्री ने कहा कि आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया रक्षा दृष्टिकोण का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले में 3 आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त विनीत गोयल, पूर्व उपायुक्त इंदिरा मुखर्जी और अभिषेक गुप्ता को आज कर्तव्य में लापरवाही बरतने, पीड़िता के माता पिता को रिश्वत देने और सरकारी अनुमति के बिना मीडिया ब्रीफिंग आयोजित करने के आरोप में निलंबित किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया को बताया कि निलंबित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच कराई जाएगी। आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत महिला स्नातकोत्तर रेजिडेंट डॉक्टर की अगस्त 2024 में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। विधानसभा में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने प्रश्नकाल, बहस, विधेयकों और बजटों के सीधे प्रसारण की मांग की है। उन्होंने कहा कि इस राज्य की जनता को विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की गतिविधियों को देखने का पूरा अधिकार है और ये सत्र के सीधे प्रसारण के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी को पुणे से गिरफ्तार कर लिया है। कुलकर्णी रसायन विज्ञान के लेक्चरर हैं और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीआई की ओर से परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थे। एजेंसी ने पिछले 24 घंटों में देश भर में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया और कई आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और मोबाइल फोन जब्त किए। गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता में आज हरजिंदर कौर ने कांस्य पदक जीता। उन्होंने महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के स्नैच में 96 किलो का वजन उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भारतीय युवा मुक्केबाजों ने आज 2 स्वर्ण और 7 रजत पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने अंडर 17 वर्ग में 8 कांस्य पदक जीते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय पूर्णिमा सामंत कड़ाकोटी। Prime Minister Narendra Modi today reiterated India's support for safe and unimpeded navigation through the Strait of Hormuz, underscoring its importance for regional stability as well as global energy and food security. After high-level talks with UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan in Abu Dhabi, Prime Minister Modi strongly condemned recent attacks on UAE.
2: Hormuz ko free, open aur safe banaye rakhna ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इस विषय में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन आवश्यक है। ब्रदर, भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
1: Prime Minister Modi arrived in UAE this morning on the first leg of his five-nation tour covering the UAE and Europe. He was received by UAE President at the presidential airport and accorded a ceremonial welcome with UAE F-16 fighter jets escorting his aircraft as it entered Emirati airspace. Mr. Modi expressed gratitude to the UAE leadership for the warm reception, noting in a social media post that he looked forward to strengthening cooperation across key areas including energy, investment and supply chains. Concluding his UAE visit, the Prime Minister left for the second leg of his tour to Netherlands. Thereafter, Mr. Modi will visit Sweden, Norway and Italy during the six-day tour. Foreign ministers of BRICS have reiterated their commitment to reform and strengthen global governance. In the outcome document, the ministers called for a more equitable, democratic and accountable international and multilateral system. They noted rising global polarization.